0: करें, आओ सभी मिलकर योग करें। जी हाँ, जिसमें आपको सभी प्राणायामों की समुचित जानकारी व योग अभ्यास के साथ साथ करते हुए सभी आसनों को भी कराया जाता है और साथ में अष्टांग योग को भी विस्तार रूप से बताया जाता है। तो सुनना ना भूले रोजाना सुबह 6 से 7 अपनी आरजे समता के साथ। जी हाँ, योगशाला।
1: सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है, योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना। और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सकें, और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते ही हैं, जबकि हमारी मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। योगशाला में आप सभी के लिए हर बार कुछ न कुछ नया और कुछ न कुछ आप सभी के लिए बेहतर हम लेकर के आते हैं। जैसा कि शरीर को स्वस्थ कैसे बनाया जा सकता है, अपने व्यक्तित्व को कैसे निखारा जा सकता है, साथ ही साथ हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी डिजीज, ऐसी बीमारियां जो अनचाहे में लग जाती हैं। अनचाहे का मतलब है हमें पता ही नहीं चलता है। उनका निवारण सिर्फ और सिर्फ आजकल सभी को पता है कि एक योग के माध्यम से बताया जाता है। आप सभी को पता है कि हम कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास चले जाएं, कभी ये होता है कि जब हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे अगर हमें कान में दिक्कत है तो हम कान के डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें आँख में दिक्कत है तो हम आँख वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें दांत में दिक्कत है तो हम दांत वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। पर आपने कभी ये सोचा है कि पूरे संपूर्ण शरीर का एक डॉक्टर मात्र एक आयुर्वेदिक उपाय और इलाज योग है। योग से जुड़ना हम सभी के लिए फायदेमंद और उपयोगी माना गया है। योग हम हर प्रकार से, हर समय और अपनी सुविधा अनुसार, जिस भी समय आपको लगे कि हमें योग की आवश्यकता है, आप आसन बनाकर कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे 12 ऋतुएं होती हैं, हर बार हर ऋतु अपना एक नया रूप लेके आती है। सर्दियां आती हैं तो सर्दियों में ठंडक का एहसास, गर्मियां आती हैं तो गर्मियों में भीषण गर्मी, पसीना और चिपचिप होती है। हर एक मौसम हमारे शरीर के लिए जिस तरीके से उपयोगी है, वैसे ही योग हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, चाहे हम अपने लिए या फिर अपनों के लिए। योग से जुड़ना अति आवश्यक है। तो आज का जो टॉपिक है, हम जो योग एक साथ अभी सभी मिलकर करेंगे, वो है ऋतुओं के साथ योग का अभ्यास। यानी कि हर एक ऋतु के लिए, हर एक मौसम के लिए एक योग जुड़ा हुआ है। महीनों के हिसाब से हम आज आपको योग क्या है और किस तरीके से करना चाहिए और उन महीने में आपको क्या खान पान करना चाहिए, सब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए महीने के हिसाब से, वसंत ऋतु फरवरी से लेकर के अप्रैल तक, ये मौसम इतना सुखद और इतना प्यारा होता है, जिसमें ना सर्दी होती है और ना ही संपूर्ण रूप से गर्मी। ये वो एहसास होता है जिसमें हम कुछ भी खा लें, कहीं भी घूमने चले जाएं, हमारा मन प्रसन्न होता है। हल्की ठंड के बाद सुखद समय, प्रकृति में एक नयापन दिखने लगता है और जैसे जैसे गर्मियां अपना प्रकोप करने लगती हैं, फिर से हम परेशान होने लगते हैं। हल्की ठंडी के बाद ये सुखद समय प्रकृति में एक नयापन तो लाता ही है, साथ ही साथ हमारे व्यक्तित्व, हमारे हृदय और हमारी खुशियों में भी एक नयापन लाता है। तो ये तो रहा मौसम की जानकारी। अब योग अभ्यास, हमें इस महीने में यानी कि वसंत ऋतु में फरवरी से लेकर के अप्रैल तक कौन सा ऐसा योग अभ्यास है जिसे करना चाहिए। फरवरी से अप्रैल के बीच में सबसे उपयोगी हमारे शरीर के लिए सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए हमने कई बार आपसे बात करी है, हम सभी लोगों ने मिलकर के सूर्य नमस्कार को किया भी है। 12 आसनों से मिलकर एक आसन बना जिसका नाम है सूर्य नमस्कार। दूसरा आसन आता है कपालभाति, जो कि हमारी पेट के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। कपालभाति, हम सभी जानते हैं कि हमारी आंतरिक चीजों को
किस तरीके से डिटॉक्स करता है, यानी हमें अगर गैस, एसिडिटी, अपच, पेट में जलन या अगर हम कुछ भी खाते हैं, हमें तुरंत पेट में दर्द होने लगता है या हमें सौंच जाने की आवश्यकता होती है, तो कपालभाति नियमित रूप से करने से ये सारी परेशानियां दूर होती हैं। तीसरा अभ्यास आता है भस्त्रिका, जो कि हमारी पूरी शरीर को डिटॉक्स करता है। भस्त्रिका प्राणायाम श्वास से निर्मित और हमारी आंतरिक नलियों को साफ करता है। भस्त्रिका प्राणायाम को करने के लिए सर्वप्रथम हम किसी भी साफ और स्वच्छ स्थान पर बैठ जाएंगे, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा आसन है जो कि हमारे पूरे शरीर को डिटॉक्स करता है। अंदर की जितनी भी गंदगी होती है वह मल के माध्यम से बाहर आ जाती है। सक्रिय और तेज अभ्यास करें। ये महीना वो होता है यदि हम इसमें कुछ भी खा ले तो आसानी से पच जाता है, इसीलिए सक्रिय आप जिस भी दशा में अभ्यास करेंगे वह आपके लिए उपयोगी होगा। सक्रिय और तेज अभ्यास करने से हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का अभ्यास होता है। खानपान की बात अगर हम करें तो इस महीने में हल्का, गर्म और सुपाच्य भोजन ही करना चाहिए, और साथ ही साथ शहद हमारे लिए अत्यंत उपयोगी होता है, खास करके फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने में। शहद का उपयोग हम कई बार कई रूपों में कर सकते हैं। सुबह योग के बाद गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद कुप मिला करके पीने से जिन लोगों को लगता है हमारे शरीर में बहुत ज्यादा फैट है, चर्बी है, या फिर हमारा किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता है, हमेशा उदासी बनी रहती है, शरीर को तंदुरुस्त और चुस्त फुस्त करने के लिए शहद का उपयोग फायदेमंद है। आइए अब सावधानी की ओर चलते हैं। कफ की अधिकता न हो इसलिए भारी और ठंडा खाना न खाएं। फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने में हल्की ठंडी होती है और फिर हल्की सी गर्मी, जिसमें कफ की अधिकता बढ़ जाती है, इसीलिए भारी और ठंडा खाना न खाएं। तो ये था दोस्तों वसंत ऋतु, जो कि फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने तक के लिए एक आसन अभी हम लोगों ने मिलकर के किया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, वह है सूर्य नमस्कार और कपालभाति, भस्त्रिका जो डिटॉक्स के लिए। अगले ऋतु यानी अगले मौसम के लिए हमें क्या करना चाहिए और कौन सा अभ्यास, हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए करें योग, रहे निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। भाई आज मैं जिस पे बात करने जा रही हूँ ना, वो आप सभी को ये लगेगा कि हर किसी का सपना होता है, हर किसी एक लड़की का सपना होता है, हर एक औरत का सपना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी चीज है जो कि हर एक औरत हर एक लड़की का सपना होता है। ज्यादा पैसे, अच्छा घर, अच्छा हस्बैंड, नाना, ये सब तो सेकेंडरी है। पहली प्राथमिकता होती है अपनी सुंदरता, और सुंदरता का नाम जहां लिया जाए वो सबसे पहले बात होती है बालों की। बाल सभी के सुंदर होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, किसी के बड़े होते हैं, लेकिन एक ख्वाब जरूर होता है कि बाल हम सभी के बड़े हों, लहराते हुए बाल, चमकीले बाल, स्वस्थ बाल। लेकिन उसको पाने के लिए हम कितनी ज्यादा मशक्कत करते हैं, जिनके छोटे होते हैं, पतले होते हैं, काफी कुछ हम अपने बालों की सुंदरता को बरकरार रखने के लिए रेमेडीज का यूज करने लगते हैं, घर में बनाए हुए नुस्खों को अपनाने लगते हैं, बाहरी चीजों को जो केमिकल युक्त होती हैं उसको हम लेकर के बालों में लगाने लगते हैं, कई ऐसे ट्रीटमेंट्स लेते हैं जो कि महंगे महंगे पार्लर्स में जा कर के, और बहुत सारे अब तो ये हो गया है कि हॉस्पिटल्स में भी होता है, इंजेक्शंस लगाई जाती हैं, और ऐसे ऐसे महंगे ट्रीटमेंट बालों के लिए होते हैं जो कि हमारे लिए आगे चलकर, मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारे बालों के लिए वो नुकसानदायक भी होता है। थोड़े टाइम के लिए तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जब हमारी एज बढ़ने लगती है वो सब का सब वहीं धरा का धरा रह जाता है। तो क्यों ना हम ऐसी चीजों को अपनाएं
जो हमेशा से साथ रहने वाली है, एवरग्रीन होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। योगशाला में आकर मैं योग के बारे में ना बताऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। योगशाला में आकर के योग को अपनाएंगे तो हमारा संपूर्ण शरीर तो स्वस्थ होता ही होता है, साथ ही साथ हम सुंदर भी बनने लगते हैं। और सुंदरता, जैसा कि अभी मैंने बताया, बालों से। स्त्री की सुंदरता जो होती है वो वाकई में बालों से ही देखी गई है। तो आइए आज कुछ ऐसे आसन, कुछ ऐसे प्राणायाम मैं आपको बताने जा रही हूँ जो कि आपके बालों को घर बैठे बिना किसी खर्चे के सुंदर, चमकदार, मजबूत और लंबा कर सकता है। तो कुछ ऐसे आसन हैं जिसे हम अगर नियमित रूप से अपना लेंगे तो हमारे बालों की जड़ों पर यह जाकर के काम करेगा। सबसे पहला आसन मैं आज जो आपको बताने जा रही हूँ वो है अधोमुख श्वासन, जो कि सिर की ओर रक्त संचार बढ़ाता है, जड़ों तक पोषक तत्व को पहुंचा करके बालों की ग्रोथ में मदद करता है। दूसरा आसन है सर्वांगन यानी शोल्डर स्टैंड, हार्मोन संतुलित करता है और बालों की जड़ों को मजबूत करता है। तीसरा आसन जो है वो है शीर्षासन, इसे बालों का राजा आसन कहा जाता है। सिर में रक्त का संचार बढ़ता है जिससे बाल लंबे घने बनते रहते हैं। अगला आसन है वज्रासन, पाचन को सुधारता है जिससे पोषक तत्व शरीर को और बालों तक अच्छी तरह पहुंचते हैं। उसके बाद सूर्य नमस्कार, पूरे शरीर का व्यायाम करता है, यह तनाव को कम करता है और बालों के लिए आवश्यक ऊर्जा संतुलन बनाए रखता है। प्राणायाम बहुत जरूरी है, जिसमें कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जो कि अनुलोम विलोम, तनाव कम होगा, बाल झड़ना अपने आप रुकेंगे, बाल बढ़ना अपने आप होंगे। कपालभाति, शरीर से विषैले तत्व निकालता है और बालों में निखार लाता है। भ्रामरी प्राणायाम, दिमाग शांत करता है, हार्मोन्स को संतुलित करता है। साथ ही साथ में जब हमारा दिमाग शांत रहेगा, हार्मोन ठीक होंगे, तो हमारा संतुलित आहार अपने आप से हमारे पूरी बॉडी में काम करेगा। पोषक आहार, योग के साथ साथ हमें पोषक आहार भी लेना चाहिए जिसमें प्रोटीन, आयरन, विटामिन बी, ई, ओमेगा 3 बालों की सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए अब मैं आपको 15 मिनट का प्राणायाम रूटीन बालों के लिए बताने जा रही हूँ, जिसमें सबसे पहले आपको बालायम योग यानी नाखून रगड़ना, 3 मिनट यह आपको सुबह कंटिन्यू करना है। हाथों की चारों उंगलियों के नाखूनों को आपस में रगड़ें, अंगूठों के नाखून ना रगड़ें, धीरे धीरे लगातार अपनी उंगलियों को रगड़ें। इससे सिर की नसों और बालों की जड़ों में रक्त संचार बढ़ता है। यह आपको 3 मिनट करना है। दूसरा अधोमुख श्वासन, यह आपको 2 मिनट करना है। जमीन पर झुककर उल्टे वी के आकार में खड़े हो जाएं, सिर को नीचे की ओर रखें और रीढ़ सीधी रहेगी। सिर की ओर रक्त का प्रभाव बढ़ता है और बालों की ग्रोथ बढ़ती है। अधोमुख श्वासन 2 मिनट तक करना है। 2 मिनट में यह आसन आप 3 से 4 बार, 5 बार, जितनी बार भी आए आपको यह आसन करना है। तीसरा आता है वज्रासन, जो कि 2 मिनट आपको करना है। घुटनों के बल बैठें और रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, गहरी सांस लें और छोड़ें, जिससे पाचन सुधरता है, जिससे बालों को पोषण मिलता है। वज्रासन, यह आसन हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः खाना खाने के बाद में यह आसन जरूर करना चाहिए। चौथा अनुलोम विलोम प्राणायाम, यह आपको 3 मिनट करना है। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नौसिका बंद करें, बाईं नौसिका से गहरी सांस लें, फिर दाहिनी नौसिका से छोड़ें। इसी तरह यह क्रम बदल कर करते रहें पूरे 3 मिनट, जिससे तनाव घटता है और शरीर में ऑक्सीजन पहुंचता है। शरीर में ऑक्सीजन के साथ साथ हमारी बालों की नसों में भी ऑक्सीजन पहुंचता है,
जिसके कारण से हमारे बाल स्वस्थ रहते हैं। पांचवा आसन है कपालभाति, जो कि हमें 2 मिनट करना है। आराम से बैठें, गहरी सांस लेकर जोर से सांस छोड़ें। पेट की मांसपेशियों को भीतर खींचें, विषैले तत्व बाहर निकलते हैं और हार्मोन जो है वो संतुलित होता है। छठा प्राणायाम हमारा है भ्रामरी प्राणायाम, जिसे हमको 3 मिनट करना है। आंखें बंद करें, कानों को उंगलियों से बंद करें, गहरी सांस लेकर का उच्चारण करें, जैसे मधुमक्खी की ध्वनि होती है। तनाव और चिंता कम होती है, जिससे बाल झड़ना रुकता है। तो कुल मिलाकर के यह 15 मिनट हो गया। आप इसे रोज सुबह खाली पेट या शाम को भी कर सकते हैं। साथ ही साथ में पौष्टिक आहार, हरी सब्जियां, फल, मेवे, दूध, दही, दालें, बीज, ओमेगा 3 वाले फूड्स जरूर से लें। अगर आपने यह नियमित रूप से अपना लिया तो आपके बाल बहुत ज्यादा सुंदर होते जाएंगे और नियमित रूप से आपके बाल जो झड़ते हैं वो भी झड़ना बंद हो जाएंगे। इसी तरह अगले प्राणायाम और आसन में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूं। आज मैं आपको एक ऐसा प्राणायाम के बारे में बताने जा रही हूं, जो अमूमन सभी महिलाओं को, पुरुषों को, यहां तक कि बच्चों को भी अब होने लगा है। ज्यादा देर तक एक ही स्थान पर बैठना, काम करना, जॉब को लेकर के बैठने और एक साथ कई घंटों तक काम करने की वजह से पीठ दर्द की समस्या सभी को होती है। ठीक उसी तरह जैसे यदि हम कोई भी काम एक साथ 8-5 घंटे तक बैठ के करते हैं तो हमें एक आदत सी हो जाती है। हम ये सोचते हैं कि चलो ये काम भी निपटा लें, उसके बाद हम आराम कर लेंगे। बस इसी आदत के कारण से हमारी जो भी अवस्था होती है हम उसमें ढलने लगते हैं और ये आगे चल करके हमारी दर्द का कारण बन जाता है। पीठ दर्द अमूमन आजकल हम सभी घर में सभी किसी न किसी एक व्यक्ति को हम देखते आ रहे हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं पीठ दर्द को कम करने के आसान से योगासन। पीठ दर्द को कम करने और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाने में प्राणायाम बहुत ही ज्यादा सहायक सिद्ध होते हैं। नियमित अभ्यास से रक्त संचार सुधरता है और साथ ही साथ मांसपेशियों में भी तनाव कम होता है और साथ में मानसिक शांति भी मिलती है। पीठ दर्द के लिए बहुत सारे वैसे प्राणायाम हम पहले भी आपको बता चुके हैं, लेकिन आज कुछ मुख्य रूप से प्राणायाम की गिनती में आप सभी लोग मिलकर के करेंगे। सबसे पहला प्राणायाम अनुलोम विलोम। जी हाँ दोस्तों, अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जो सभी प्रकार के दर्द को दूर करने के साथ साथ हमें हमारे स्वस्थ शरीर को प्रदान करता है, जो कि रीढ़ की हड्डी को लचीलापन देता है और मानसिक तनाव को भी कम करता है। मानसिक तनाव को कम करने के साथ साथ हमारे दर्द को भी घटाता है। अनुलोम विलोम आप सभी को पता है कि हमको अनुलोम विलोम कितनी देर करना है, 5 से 7 मिनट। ये प्रारंभिक अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था में आप 3 से 4 मिनट भी कर सकते हैं। दूसरा प्राणायाम आता है कपालभाति। कपालभाति पेट और कमर की मांसपेशियों को मजबूत करता है, शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकालने में मदद करता है। साथ ही साथ कपालभाति रीढ़ की हड्डी को भी मजबूत करता है, इसीलिए हमें नियमित रूप से कपालभाति जरूर करना चाहिए। कपालभाति की भी समय अवधि स्टार्टिंग में 3 से 4 मिनट और हम समय के हिसाब से उसे बढ़ाते जाएंगे तो 5 से 7 मिनट भी कर सकते हैं। तीसरा प्राणायाम आता है भ्रामरी प्राणायाम, जो कि नसों को शांति देता है, दर्द और बेचैनी को भी कम करता है। भ्रामरी प्राणायाम जिसे हम विपरीत भी कहते हैं, यह हमारी मानसिक और हमारी शारीरिक नसों को इतना आराम देता है कि हमारे सारे दर्द को
दूर कर देता है। चौथा प्राणायाम दीर्घ प्राणायाम। गहरी श्वास लेने से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़कर पीठ की जकड़न को कम कर देती है। पांचवा प्राणायाम आता है उज्जयी प्राणायाम। गर्दन और पीठ की मांसपेशियों को आराम देता है, रीढ़ की सिधाई और ऊर्जा प्रवाह को संतुलित करता है। उज्जयी प्राणायाम, वैसे तो हम कई ऐसे प्राणायाम करते आ रहे हैं जिसमें गर्दन, पीठ, रीढ़ की सिधाई और भी हमारी नसों को आराम पहुंचाने के लिए करते हैं, लेकिन उज्जयी प्राणायाम विशेषतः गर्दन और पीठ की मांसपेशियों को आराम देता है। सुबह खाली पेट या सारे प्राणायाम करने से इसका लाभ हमें बहुत ज्यादा मिलता है। आरामदायक आसन में बैठ जाएं, यानी कि सुखासन, वज्रासन या फिर कुर्सी पर सीधा बैठना। 5 से 10 मिनट में शुरुआत करते करते धीरे धीरे समय को बढ़ाते जाना है। सबसे जरूरी है इसमें नियमितता, यानी कि हम नियमित रूप से प्राणायाम करते हैं तभी हमें इसका लाभ जरूर से मिलता है। या तीव्र पीठ दर्द, डिस्क या कोई गंभीर रीढ़ की समस्या है तो किसी योग और किसी भी योग से हम जुड़ सकते हैं, जैसे कि आज हमने आपको 5 योगासन बताए। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं कुछ ऐसे प्राणायाम की ओर जो कि हमारी पीठ दर्द के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। पीठ दर्द को कम करने के लिए बिल्ली, गाय, मुद्रा, घुटने से छाती तक खिंचाव करने के बाद में उसे उक्तासन जैसे योग आसन किए जा सकते हैं। अब आप सोचेंगे, बिल्ली, गाय, मुद्रा? जी हाँ दोस्तों, कई बार हमने अपनी सीरीज में आपको बताया है बिल्ली और गाय की मुद्रा। पीठ दर्द को कम करने के लिए आज मैं आपको बिल्ली, गाय, मुद्रा ही बताने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। हाथों और घुटनों के बल आ जाएं, कलाइयां कंधों के नीचे और घुटने कूल्हों के नीचे रखें। श्वास लेते हुए अपनी पीठ को मोड़ें, पेट को नीचे की ओर झुकाएं और सिर व टेलबोन को ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को गोल करें, हुड्डी को छाती से सटाएं और पेट को अंदर खींचें। यह है बिल्ली मुद्रा। इस प्रक्रिया को 6 से 8 बार हम दोहरा सकते हैं। घुटने से छाती तक जो खिंचाव होगा वही हमारा यह मुख्य उपाय होगा। पीठ के बल लेट जाना है, एक घुटने को अपनी छाती की ओर खींचें और कुछ सेकंड रुकें, फिर छोड़ दें। इस क्रिया को हम 5 बार दोहरा सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम करते हैं उत्तान आसन, यानी कि खड़े होकर आगे झुकना। पैरों को कूल्हों के बराबर दूरी पर खड़े होकर के रख करके खड़े हो जाएं। पैरों को कूल्हों के बराबर दूरी पर रखकर खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए अपनी बाहों को सिर के ऊपर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को लटका दें और कुछ सेकंड रुक जाएं। धीरे धीरे घुटनों को मोड़कर सीधे खड़े हो जाएं और इसे 3 से 5 बार दोहराएं। पीठ को सीधा रखने की कोशिश हमेशा से करें, यानी कि जब भी हम बोलें, बैठें, तब हम नियमित रूप से सीधे ही बैठने की कोशिश करें। क्या होता है दोस्तों कि कई बार हम कई घंटे एक जगह बैठे बैठे हमारी रीढ़ की हड्डी पर एक कसाव सा होने लगता है, जिसके कारण से हम झुकने लगते हैं। गर्म या ठंडी सिकाई करने से भी मांसपेशियों को आराम मिलता है, लेकिन मैं आपको जो आज अभी हम सब लोगों ने मिलकर आसन किए, यह आसन बहुत ही उपयोगी है और इन आसनों को जरूर से करना चाहिए। पीठ में जकड़न का इलाज करने के लिए हल्के व्यायाम जो आज हमने आपको बताए, स्ट्रेचिंग या गर्म ठंडी चिकित्सा का उपयोग हम कर सकते हैं। आराम करने से बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए, जबकि अगर आपको काम के दौरान भी 5 से 10 मिनट मिल रहा है तो जिनको भी पीठ में दर्द होता है वह जाकर के एक बार सीधा जरूर लेट जाए। स्ट्रेचिंग से मांसपेशियों की अकड़न दूर होती है और गर्म या ठंडी सिकाई से रक्त प्रभाव बढ़ता है और सूजन कम होती है। अपनी सारी मुद्राएं आराम से करने के बाद में तनाव मुक्त होकर के ही हम लेट जाएंगे।
स्ट्रेचिंग करने से हमारे शरीर की जितनी भी अकड़न होती है वह तो दूर होती है, साथ ही साथ मांसपेशियों को भी बड़ा आराम मिलता है। तो ये था दोस्तों आज का, यानी कि योगशाला में आज हमने बताया पीठ दर्द को कम करने के साधारण से उपाय और व्यायाम। आइए हम सभी मिलकर के करते हैं और मिलते हैं अगली योगशाला में सुबह 6 से 7, क्योंकि हम सभी मिलकर के जब योग करते हैं तभी हम स्वस्थ रहते हैं। तो इसीलिए करें योग, रहे निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि योग हमारे लिए हमारे शरीर

सुप्रभात साथियों, स्वागत है आपका पहली किरण में। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है प्रेम, आध्यात्म और सूफिज्म। प्रेम जो सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। आध्यात्म जो हमारे भीतर से प्रकाशित रहता है या हमारी भीतर की शक्ति को प्रकाशित करता है, और सूफिज्म जो प्रेम और ईश्वर को एक ही सूत्र में पिरो देता है। आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं एक सुंदर से गीत के माध्यम से।

श्रोताओं, सच्चा प्रेम वही है जिसमें मैं मिट जाए और केवल तू रह जाए। अध्यात्म यही सिखाता है कि जब हम अपने अहंकार को छोड़कर प्रेम में डूबते हैं तो वहीं से हमें परमात्मा का अनुभव होता है। तो आइए परमात्मा की ओर चलते हैं और उनका ध्यान करते हैं।

दोस्तों आज की कहानी है हजरत राबिया बसरी की। कहते हैं एक दिन लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए। वो एक हाथ में मशाल और दूसरे में पानी की बाल्टी लिए दौड़ रही थी। किसी ने पूछा, ये क्या कर रही हो? राबिया बसरी बोली, मैं इस मशाल से जन्नत को जलाना चाहती हूँ और इस पानी से जहन्नुम की आग बुझाना चाहती हूँ, ताकि लोग अल्लाह की इबादत सिर्फ डर या लालच से नहीं बल्कि सच्चे प्रेम से करें। ये है सूफी मार्ग, जहाँ प्रेम ही इबादत है।

श्रोताओं, अध्यात्म हमें ये सिखाता है कि ईश्वर बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जब मन प्रेम से भरता है तो द्वेष, नफरत और अलगाव की जगह ही नहीं बचती। सूफी संत कहते हैं, जब तू अपने भीतर के प्रेम को पहचान लेता है तब तुझे किसी और खोज की जरूरत नहीं रहती। प्रेम ही है जो इंसान से इंसान जोड़ता है और इंसान से भगवान तक पहुंचाता है। तो आइए फिर चलते हैं एक बार भगवान की खोज की ओर, मतलब अपने मन के भीतर के प्रकाश की ओर।

हजरत निजामुद्दीन औलिया। इनके बारे में मशहूर है कि उनसे मिलने वाला हर इंसान यही कहता था, जब औलिया हमें देखते हैं तो लगता है जैसे ईश्वर की नज़र से देख रहे हों। उनके पास आने वाला कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता, क्योंकि वो कुछ और नहीं, प्रेम बांटते थे। उनका मानना था अगर दिल में प्रेम है तो वही सबसे बड़ा दरबार है।

दोस्तों, अगर आप दिन की शुरुआत प्रेम और कृतज्ञता से करते हैं तो आपका मानसिक स्वास्थ्य और ऊर्जा दोनों सकारात्मक रहते हैं। सुबह उठकर 3 लोगों को दिल से दुआ देना या शुभकामना देना, ये एक छोटा सा सूफी अभ्यास है जो आपको भीतर से हल्का और शांत बना देगा और साथ ही साथ आप बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे। एक बार करके देखें, जीवन को सकारात्मक ऊर्जा की ओर अग्रसर करें।

श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, भक्त्या माम भी जानाति यवान्याश्चमी तत्वतः, केवल प्रेम और भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। और गीता का सार भी यही है, प्रेम ही आध्यात्म का सबसे सरल मार्ग है। तो आइए प्रेम की राह पर आगे चलें, अपने भीतर के प्रेम को निखारें, ईश्वर से जुड़ाव करें और हर इंसान में ईश्वर का वो अंश देखें जो हम सब में बसा हुआ है।

गौतम बुद्ध ने कहा, मैत्री भाव ही सबसे बड़ी साधन है। जब तुम सभी प्राणियों को अपना मानते हो तो वहीं से निर्वाण का मार्ग खुलता है। और बुद्ध का आध्यात्म कहता है, करुणा और अहिंसा के पथ पर चलो। श्रोताओं, अब मैं जैन धर्म पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगी। महावीर स्वामी ने कहा, अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा का आधार प्रेम है। जब हम किसी को चोट पहुंचाते हैं तो वो सबसे बड़ा पाप होता है, और जब हम किसी को चोट नहीं पहुंचाते तो हम सबसे बड़ा आध्यात्म जीते हैं। तो आइए आध्यात्म की ओर अग्रसर होते हैं और ध्यान करते हैं अपने गुरुओं की वाणी का।

गुरु नानक देव जी ने कहा, सब में जोत जोत है सोई, हर एक में वही ईश्वर है, यानी प्रेम और सेवा ही सच्चा आध्यात्म है। इस्लाम और सूफी परंपरा की बात करें तो हजरत मोहम्मद साहब ने कहा, अल्लाह रहमान और रहीम है। सूफी संतों ने कहा, इबादत का सबसे ऊंचा रूप है इंसान से प्रेम। राबिया बसरी, बुल्ले शाह और निजामुद्दीन औलिया, इन सभी का संदेश एक ही है, खुदा तक पहुंचने का रास्ता दिल से होकर जाता है, और वो दिल किसी आम दिल से नहीं, हर इंसान के दिल से। मतलब जब हम नेकी करते हैं तो खुदा अपने से हमें जोड़ के रखता है।

ईसाई धर्म की बात करें तो यीशु मसीह ने कहा, गॉड इज लव, ईश्वर प्रेम है। उन्होंने प्रेम, क्षमा और सेवा को आध्यात्म का सबसे बड़ा मार्ग बताया।

दोस्तों, अब चलने से पहले मैं एक आपको स्वास्थ्य सुझाव देना चाहूंगी। हर सुबह 5 मिनट शांति से बैठकर अपने शत्रु तक के लिए दुआ कीजिए। ये अभ्यास हर धर्म की शिक्षा है। दूसरों के लिए प्रेम और करुणा, ये न सिर्फ दिल को हल्का करता है, मानसिक स्थिति को भी बेहतर करता है, बल्कि आप में हर तरह का संतुलन स्थापित करता है। एक बार करके देखें, जीवन को सरल बनाएं और ईश्वर से जुड़ाव महसूस करें। दोस्तों, धर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनकी आत्मा एक ही है, प्रेम और आध्यात्म। सूफी संतों ने कहा, जब दिल में मोहब्बत हो तो वही खुदा है। गुरु नानक ने कहा, हर एक में वही ज्योति है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भक्ति से ही मुझे पाया जा सकता है। बुद्ध ने कहा, करुणा ही मुक्ति का मार्ग।

धार धार धाधा कृत कृत दिन दिन दिगत दि गंगाधर नीलकंठ विश्वनाथ त्रिकट धिकट डिम डिम डिम डमर हर हर महादेव शिव शंकर त्रिविधा त्रिकट दो शिव शंकर त्रिविधा त्रिकट दो शिव शंकर त्रिविधा।

धार धार धाधा कृत विकृत धिन दिन दिगत गंगाधर नीलकंठ विश्वनाथ त्रिकट धिकट डिम डिम डिम डमरु वचन हर हर महादेव शिव शंकर त्रिविधा त्रिकट दो शिव शंकर त्रिविधा त्रिकट दो शिव शंकर त्रिविधा

धान धान धाधा कृत कृत धिन धिन धिन धिगत गंगाधर नीलकंठ विश्वनाथ त्रिकट धिकट डिम डिम डिम डमरू हर हर महादेव शिव शंकर त्रिगुण शिव शंकर त्रिगुण शिव शंकर त्रिगुण।

धार धार धाधा कृत कृत धिन धिन धिन धिगत गंगाधर नीलकंठ विश्वनाथ त्रिकट धिकट डिम डिम डिम डमरु वचन हर हर महादेव शिव शंकर त्रिकट धिकट डोम शिव शंकर त्रिकट धिकट डोम शिव शंकर।

धार धार धाधा ग्रगत विग्रगत दे दे दिन दिन दिन दिगत दे दे गंगाधर नील कंठ विश्वनाथ त्रिकट धिकट डम डम डम डमरु वचन त्रिकट त्रिकट हर हर महादेव शिव शंकर त्रिकट धातक त्रिकट दोम शिव शंकर त्रिकट धातक त्रिकट दोम शिव शंकर।

0: आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ, नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात, आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।
1: सारे गामा कारवा डिजिटल ऑडियो प्लेयर। इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें।

जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियाँ यानी पानी से होने वाली बीमारियाँ जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियाँ हैं कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

0: मैं छाया पटवा रानी बाजार से, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।

0: बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की

एग्जैक्टली सलाम करना है, लेकिन उसके पहले मेरी छोटी सी शर्त है कि आप सभी लोग जल्दी से चैट बॉक्स में आ जाएं, क्योंकि सभी की एंट्री होनी अनिवार्य है और आज आ गई है आपकी आज क्षमता। इस ब्यूटीफुल से सॉन्ग के बाद आएंगे सीधे थॉट ऑफ द डे एंड रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है एप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन,
2: गोंडा शहर की धड़कन।
3: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज क्षमता और फटाफट चलिए शुरू करते हैं आज का थॉट ऑफ द डे। तो जिंदगी बदलने वाला, जिंदगानी बदलने वाला, मॉर्निंग में प्यारी प्यारी बातों को बदलने वाला, और हम ये कह सकते हैं कि सुबह की शुरुआत करने वाला। एक्चुअली मैं जब अभी चाय पी रही थी घर पे, तो मैं और मम्मी साथ में बैठे थे, तो मेरे जहन में एक बात आई जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैंने उनकी मोबाइल उठाई और ऐसे ऑन किया, तो उसमें बीके शिवानी जो एक गुड मोटिवेशनल है, जो स्पिरिचुअल आध्यात्म को लेकर के वो बहुत सारे ऐसे थॉट्स, ऐसे बहुत सारे वीडियोस वो बनाती हैं, खुद भी वो एक ब्रह्मचारिणी है। मुझे उनकी करनी से कोई मुझे नहीं है, वो मतलब मुझे नहीं है, मतलब है कि वो क्या रहती हैं, कैसे रहती हैं, क्या करना है, कुछ नहीं। बट जब मैंने ऊपर और स्क्रॉल किया तो उन्हीं का थॉट एक मुझे आज मिला कि अगर आप मॉर्निंग में 5 मिनट, केवल 5 या 2 मिनट जो आपकी सुविधा के हिसाब से हो। अब जो लोग जॉब में होते हैं, जल्दी उठते हैं, तो उन्हें सुबह के 2 मिनट लाइक मी बहुत ज़्यादा लगते हैं। मतलब लगता है यार 2 मिनट, ओ माय गॉड, 2 मिनट में तो मेरा नाश्ता बन जाएगा, 2 मिनट में तो मैं रेडी हो जाऊँगी, 2 मिनट में तो मैं यहाँ से अपनी ऑफिस तक की जो दूरी है वो तय कर लूँगी। तो सुबह के 2 मिनट जो होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो कन्वीनियंट के हिसाब से आपको जो कितना भी समय हो, कुछ ऐसे उन्होंने थॉट बताए कि आप जब उठते हैं तो बेड पे बैठ करके सिर्फ और सिर्फ 2-3 ऐसी लाइनें बोलनी है ना, जो अगर जॉब में भी है ना, तो वो आपकी पूरे दिन की पावरफुल एक जैसे कहते हैं ना, हम मोबाइल कहीं लेके जाते हैं तो पावर बैंक होता है, तो वही पावर बैंक हमारा काम करने लगता है। वो पावर बैंक हमको चार्ज करना होता है मॉर्निंग में उठ करके। क्या बोलना होता है कि अगर हम जैसे भी ऑफिस में हैं यार या कहीं जॉब में, सभी के साथ कुछ ना कुछ ऐसे खटपट या कुछ भी ऐसे मन में होता रहता है, तो उस पावर बैंक को हमें चार्ज करना है। सबसे पहले उठ करके ईश्वर का धन्यवाद, अपने खुदा का धन्यवाद और अपने अल्लाह का धन्यवाद, अपने वाहिगुरु को एक अरदास करते हुए, अपने हर धर्म के लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि अपने अपने ईश्वर को एक प्यारा सा मैसेज गुड मॉर्निंग का, और उनको हाथ जोड़ करके धन्यवाद कि आज की इस प्यारी सुबह को फिर से दिखाने के लिए आपका शुक्रिया। दूसरा कि हमेशा से 2 लाइन का आपको ये बना लेना है कि आई एम अ पीसफुल सोल, मैं शांत हूं, मैं स्थिर हूं। आपको पता है इसको ये बोलने से ही, मात्र कंटिन्यूअसली बोलने से ही, आप जहां पे हैं, आप शॉप पे हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप जॉब करते हैं, आप घर पे हैं, आप धीरे धीरे ना वो आपकी जो एक माइंड कॉन्शियस में ना वो फिट होने लगेगा, और धीरे धीरे आपकी जो अंतरात्मा है, जो आपकी सेल्फ जो कॉन्फिडेंट है, वो और बढ़ने लगेगा। आप धीरे धीरे ना शांत होते जाएंगे। शांत का मतलब ये नहीं होता है कि बिल्कुल चुप हो जाना। जब हम पीसफुल हो जाएंगे, आप जब हम काम हो जाएंगे ना, तो हम जहाँ काम करते हैं ना, वहाँ के लोग भी हमसे प्रभावित होते हैं, हमारे झगड़े कम होते हैं, हम बहस कम करते हैं, पीसफुली काम करते हैं। और जब हम पीसफुल हो जाएंगे तो हमारे झगड़े भी नहीं होंगे, हमारा बीपी भी सही रहेगा और हमारे दिल की शुरुआत जो होती है वो ही इस 2-3 शब्दों से होती है। तो आज मैंने सुना और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने सोचा कि आज मॉर्निंग का हमारा शो भी है तो मैं आपके साथ ये जरूर शेयर करूंगी कि मॉर्निंग में उठ करके यार 2-3 मिनट अपने भगवान को दिया करो। बस 2-3 मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट, जो आपको ठीक लगे, जितना सही लगे, बाकी अपनी दिनचर्या फिर शुरू किया करो। तो आज का थॉट भी फिर मुझे वही मिला, जैसा कहते हैं ना जैसी सोच वैसा फिर वो, तो आज का थॉट भी मुझे वही मिला है कि जीवन में कभी किसी को बेकार मत समझना, जीवन में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। भाई देखिए, अगर आपकी घड़ी 2:10 पे बंद हो गई है, 1:05 पे बंद हो गई है, तो घूम फिर के वो दिन में 2 बार तो समय आएगा ना जहां वो रुकेगी, है ना। तो बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है, इसीलिए कभी भी किसी को बेकार नहीं समझना चाहिए, कभी किसी के साथ ना इस भावना से नहीं सोचना चाहिए कि मतलब मैं हूं और कोई नहीं यहाँ पर, और कुछ भी नहीं, सब बेकार है ना। एंड दूसरा थॉट जो है कि सफलता की सबसे खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है, इसलिए मेहनत करने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे वो रिश्तों को सही करने के लिए हो, पढ़ाई करने के लिए हो, बिजनेस करने के लिए हो, या फिर किसी भी क्षेत्र में हो, मेहनत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। ये तो बहुत ही सिंपल सा स्लोगन हम सभी लोग सुनते आ रहे हैं बहुत बार, है ना, लेकिन मेहनत करने वालों पर खुद सफलता फिदा हो जाती है। और वो ये कहती है यार इसको तो असफलता अब हम लोग दे ही नहीं सकते हैं, कोई कारण ही नहीं बनता है सफल होने का, है ना। तो क्यों नहीं हम जी जान से लग जाएं किसी एक मुकाम को पाने के लिए, किसी एक लक्ष्य को पाने के लिए, और फिर उसकी सफलता का जो परचम लहराएगा ना, जब सफलता मिलेगी ना और फिर जो वो सुकून मिलेगा ना, ओह माय गॉड, मजा आ जाएगा। तो आज का थॉट आपके लिए, सफलता ऐसी करिए, मेहनत ऐसी करिए कि सफलता भी फिदा हो जाए। और कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए, कभी भी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। आज का थॉट आपके लिए, चलिए एक ब्यूटीफुल सा सॉन्ग मुझे मिला है अभी, तो मैं सोच रही हूँ कि आपको सुना दूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद ना ये गाना मुझे दिखा है स्क्रीन पे। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से ब्यूटीफुल से सॉन्ग को, और अपने अपने मोबाइल को अपने अपने घर के सिस्टम पे लगा दीजिएगा, जो सो रहे हैं ना वो उठ जाएंगे और जो उठे हुए हैं वो नाचने लगेंगे, आई प्रॉमिस। ये इतना ब्यूटीफुल सा गाना है, आइए साथ में एंजॉय करते हैं। एंड नेक्स्ट लेके आ रही हूँ बहुत ही प्यारा सा फैक्ट्स ऑफ लाइफ, एंड उसके बाद आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है कि बारिश के टाइम पर हमें क्या सावधानियां करनी है। ऐसा मौसम आ रहा है कि हमें सेफ्टी करनी है अपनी, अपनों की और अपने बच्चों की। टॉपिक जरूर सुनिएगा, मैं आती हूँ, बस यूं गई यूं आई।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अन इंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं फैक्ट्स ऑफ लाइफ और आज का टॉपिक। भाई फैक्ट्स ऑफ लाइफ में मैं सिर्फ आपको आज एक ही मूल मंत्र देना चाहती हूँ, है ना, कि हर किसी को खुश रख पाना संभव नहीं है। ठीक है, हर किसी को खुश रख पाना संभव नहीं होता है एंड ज़्यादा उम्मीदें अक्सर दुख देती हैं। दोनों रियल फैक्ट्स हैं और आपकी लाइफ को अगर आपने इस फैक्ट को अपना लिया तो मैं बता रही हूँ आपको कि आप ना जिंदगी के बादशाह बन जाओगे। सच्ची बता रही हूँ, ज़्यादा उम्मीदें दुख का कारण। ज़्यादा आपने किसी से उम्मीदें रख ली, वो उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं तो सबसे ज़्यादा दुख आपके दिल को पहुँचता है कि मैंने उनसे ये बोला था, मैंने ये सोचा था, ये नहीं हुआ। तो दुख का कारण आपकी बीमारी का घर, ठीक है। और हर किसी को आप खुश नहीं रख पाएंगे जिंदगी में, घर में, ऑफिस में, कार्यस्थल पर, आपके फ्रेंड सर्कल पे, कहीं पे भी कोई एक ना एक आपसे नाराज जरूर होता है। आपने वो कहावत सुनी है ना कि शादी में फूफा नाराज होते हैं, सुना है ना आपने? तो बस वही है कि अगर घर की शादी हो तो कोई ना कोई एक बंदा नाराज होता ही है। आप उसी को एक मोटिवेट करके आप सोचो कि आपके पास आपके कार्य क्षेत्र में बहुत सारे लोग हैं लेकिन कोई भी, मैं बता दूं कि आप सबको खुश नहीं रख पाते हैं। सब लोग यही सोचते हैं कि हमने तो उसको खुश कर लिया, हमने तो उसको ये कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम सभी को खुश नहीं रख पाते हैं, ये बिल्कुल फैक्ट है। ठीक है, चलिए आज के रियल फैक्ट्स में आपने जाना और हमें ज़रूर से फीडबैक दिया करिए प्रोग्राम का। आरके जी आज आप आए हैं, मुझे अब मुझे लग रहा है कि आज आप आए हैं क्योंकि कल वाले तो मुझे नहीं ला। लो आरके जी ने क्या कर दिया है कि अपनी आधार कार्ड की फ़ोटो ही लगा दी है कि वो, मतलब मुझे लगे कि ये उनकी आइडेंटिटी है। मैंने कल बोल दिया था ना कि आप मुझे वो आरके जी नहीं लग रहे हैं, तो आज आपने अपने आधार कार्ड की फ़ोटो ही लगा दी है। थैंक यू सो मच। तो मैं ना अभी चैट बॉक्स में आऊँगी, अभी नहीं आ रही हूँ, मैं आऊँगी तब तक सभी लिसनर्स भी आ जाएं एंड शो ऑफ द मिड ऑफ द शो, क्योंकि तब तक सभी लोग आ जाएंगे और फिर सभी के मैसेजेस को हम रीड करेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात करनी है, वो ये करनी है कि बारिश के मौसम में अभी हमारे मतलब जो एक मालवीय नगर में गुरुद्वारा है और गुरुद्वारे के पास में एक घटना हो गई, वो मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ। और वो घटना साझा करने का उद्देश्य कुछ और है, उस उद्देश्य को भी मैं बताऊँगी आपसे। वो घटना ये थी कि अभी जब लगातार एक दिन बहुत तेज़ बारिश हुई थी एंड वो वीडियोस भी वायरल हुए थे, है ना, तो हुआ ये कि रात भर जब बारिश हुई बहुत ज़्यादा वाले मतलब आए थे, बहुत ज़्यादा वाला बारिश और तूफान आया था रात में, तो कहीं से अर्थिंग हो रही थी, मतलब कहीं से अर्थिंग हो रही होगी, तो गुरुद्वारे के पास में एक पोल आ रहा था बड़ा सा, मतलब जैसे नहीं पाइप का पोल होता है वो आ रहा था, उसमें अर्थिंग आ गई। अब वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पर सुबह हर कोई जाता है गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए, बच्चे जाते हैं, बूढ़े जाते हैं, और वहीं पर एक पानी की मशीन लगी हुई है जहाँ से लोग पानी भी भरते हैं। तो आप इसमें ईश्वर का मैं क्या कह लूँ, तो सुबह का टाइम था, 7-8 बजे का टाइम था और सुबह उधर से एक बैल और दो गाय आ रही थी, दो गाय पीछे थी और एक बैल आगे था। उसने क्या किया, वो आया बेचारा और वो पोल से बिल्कुल हल्का सा टच हुआ और इतना ज़्यादा उसमें करंट था कि वो तुरंत गिरा और वहीं वो मर गया। और उसके बाद से मोहल्ले के सारे लोग ने देखा और दो गाय थी वो तो फिर उसे हटाया गया, पूरा वीडियो आया है क्योंकि कैप्चर हुआ है वीडियो उसमें कैमरा में। उसके बाद में ये हुआ कि बताइए, वहीं पर लोग पानी भर रहे थे, वहीं से लोग होते हुए गुरुद्वारे जा रहे थे, तो कहने का सेंस मेरा केवल इतना है कि जो सावधानी हम सभी को बरतनी चाहिए, खास करके बारिश के मौसम में, वो क्या सावधानी है? वो ये सावधानी है कि आपके घर में, आपके बाथरूम में गीजर है, प्लग लगा हुआ है, सबके घर में प्लग ऑलरेडी लगा रहता है ना? आप बारिश के टाइम पर, क्योंकि अभी तो वैसे भी गर्मियां हैं तो गीजर की कोई आवश्यकता नहीं होती है, उस प्लग को हटा दें, ठीक है, उस प्लग को हटा दें सबसे पहली बात। और जहां पर आप कपड़े डालते हैं वहां लोहे की एंगल होती है, लोहे की एंगल पर कुछ लोग कुछ घरों में कपड़े डालते हैं, और कहीं ना कहीं अगर कोई वायर कहीं से भी टच अगर हो गई तो वो पूरी लोहे की एंगल पर करंट आ सकता है। तीसरा, जब आप कहीं भी जाते हैं तो रास्ते में बहुत सारे बिजली के पोल मिलते हैं, तो आपकी ये ड्यूटी बनती है, हर एक नागरिक की ये ड्यूटी बनती है कि एटलीस्ट हम उसे देखें और समझें कि कहीं से कोई तार तो नहीं खुली हुई है। अगर रास्ते में भी तार गिरी पड़ी हुई है तो एक बार प्लीज आप बिजली विभाग को जरूर कॉल कर लें, इससे आपके साथ साथ कई लोगों की जान बच सकती है। अगर आपको लग रहा है कि कोई पोल से कोई तार गिरी हुई है, लटकी हुई है, या फिर बिल्कुल पोल से चिपक के चलने का जो एक प्रोसेस होता है, गाड़ी बिल्कुल बगल से निकाल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं तो बच्चों की आदत होती है ना, वो हाथ ऐसे पोल पे मारते हुए चलते हैं, तो बारिश के दिनों में या वैसे भी आप इसका बिल्कुल सही से ध्यान दिया करिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जान नहीं पाते हैं, और बारिश का मौसम वैसे भी चल रहा है, कभी भी तूफान आ रहे हैं, कभी भी बारिश हो रही है, तो प्लीज आप अपने घरों पे। एंड एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, जब भी ऐसा तूफान आए, जब भी ऐसी बारिश आए, मतलब बहुत ज्यादा वाली, तो आप अपने घरों के जो फैन होते हैं ना उसे आप ऑफ कर दें। कारण बता रहे हैं कि अर्थिंग जो होती है ना वो फैन के माध्यम से ज्यादा आपकी छतों पे फैल सकती है, इससे बिजली तो खराब होएगी होएगी, लाइट तो जाएगी ही जाएगी, साथ ही साथ में घर के जितने फैन है ना उन सबकी पावर उड़ सकती है और फैन खराब हो सकते हैं। क्योंकि ऐसा हमारे घर में हुआ, इसीलिए मैंने मैं चाह रही थी कि आप सभी को भी मैं इसके लिए सचेत करूं। और ये चीज़ जो है ये आप अपने घर में हर एक मेंबर को बता दें कि पानी जब बारिश हो रही है तो ऐसी जो चीज़ें हैं उसको हम थोड़ा सा सतर्क रखें। महिलाएं जो किचन में हमेशा से मिक्सी का प्लग लगा रहता है ना, हैंड मिक्सर का लगा रहता है, वॉशिंग मशीन का लगा रहता है, वॉशिंग मशीन बाहर रहती है और अचानक से उसको छू लिया और हमें पता ही नहीं है प्लग लगा हुआ है, तो ये भी चीज़ें थोड़ी सी सही नहीं है। थोड़ा सा सिक्योर होके रहें क्योंकि हर घर में बच्चे हैं और बड़े बुजुर्ग भी हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें, आप खुद स्वस्थ रहें, खुद सचेत रहें, सावधान रहें। चलिए तो अब सुना देती हूँ गाना, उसके बाद सीधे मैं आऊंगी आपके पास चैट बॉक्स में, क्योंकि तब तक हमारा टाइम जो है ना वो चैट बॉक्स वाला हो जाएगा, चैट बॉक्स में आने वाला, ठीक है। ये वाला गाना जो है ना, ये मुझे गाना बहुत पसंद है भाई, और आइए, और आई थिंक आप लोगों को भी बहुत पसंद है, आइए सुनते हैं इस प्यारे से गाने।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840 3395 84 88 40 35 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्त्री 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता। तो आइए फटाफट एक बहुत ज़्यादा वाली ज़रूरी वाली आपको इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है। वो ये है कि आजकल ना साइबर क्राइम जो है, जो साइबर ठग जो है, जिसको हम कह सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। तो ऑनलाइन नौकरी का लालच दे करके और आपको बना रहे हैं बेवकूफ़। तो क्या करना है, कैसे करना है, ये बताते हैं कि आजकल ना ये चीज़ों को रोक लगाने के लिए भी भारतीय नागरिकों को अच्छी नौकरी का लालच देकर दक्षिण एशियाई देशों में साइबर जो है वो गुलाम बनाने के मामले में बुधवार को 4-9 जगहों पर छापे मारे गए। और जिसको अधिकारियों ने बताया है कि इस मामले की जो जांच हो रही है वो कुछ शहरों में हुई है और वहां से लोग पकड़े भी गए हैं। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं, जिसमें सीबीआई ने भी इसकी जांच की हुई है। लैपटॉप के जरिए, आपके फोन के माध्यम से, ओटीपी के माध्यम से आपको ये झांसा दे रहे हैं और पैसे ले करके एजेंट बना रहे हैं। एजेंट जो आप बन जाते हैं और उसके बाद में ये जो साइबर ठग है ये शुरू होता है, साइबर क्राइम शुरू होता है। और उसके बाद में आपके अकाउंट में जितने भी पैसे हैं वो तो जाते ही हैं। सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है कि आप अपनी फेसबुक पर, आप अपनी इंस्टाग्राम पर एक ऐड देखते हैं कि अगर आपने, आपकी सैलरी अगर 20,000 है, 25,000 है, तो आप घर बैठे कमा सकते हैं इतने इतने इतने, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि आपसे कहा जाएगा कि आपसे एक रुपए भी नहीं लिए जाएंगे। आपको सिर्फ क्या करना है कि आपको इस कंपनी में आप ज्वाइन हो जाइए। इस कंपनी को आपने केवल आपको रन करना है। आप मतलब हम सभी लोग भी, हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग उसमें उस कंपनी को ले लेंगे, हम लोग उसमें आ जाएंगे। और उसके बाद में क्या होगा कि धीरे धीरे वो हमें बहलाने फुसलाने लगेंगे, हमारे अकाउंट्स की जानकारी लेने लगेंगे। साथ ही साथ फिर क्या होगा, हमसे ये कहा जाएगा कि आप एजेंट बन गए हैं, अब हमें आपका आपको सैलरी देनी है और जिसके कारण से हमें आपका अकाउंट नंबर चाहिए। जब आप अपना अकाउंट नंबर देंगे तो आपसे ये कहा जाता है कि उसको अब हमारे कंपनी में ऐड करने के लिए आपके फ़ोन पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी जब आप उसको देखेंगे, बोलेंगे, और उसी समय आपके अकाउंट से सारे पैसे गायब। नौकरी का झांसा दे करके ये जो ठग हैं ये काफ़ी हद तक पकड़े जा चुके हैं कुछ शहरों में। तो इसीलिए अगर आपके पास भी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है, चाहे वो फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, व्हाट्सएप पे हो, तो आप प्लीज उन सारी इंफॉर्मेशंस को ओपन ना करें। कुछ तो साइबर जो क्राइम है, जो साइबर ठग जो बने हुए हैं, उनकी इतनी ज़्यादा उन्होंने ये चीज़ को आगे करके रखा हुआ है कि जैसे हम लोग के पास में कोई भी एक पोस्ट आती है, ठीक है, तो हम लोग ना क्या करते हैं कि काफ़ी के मोबाइल में ये लगा रहता है कि हम ऑटो क्या कहते हैं डाउनलोड, तो अगर वो अपने आप से डाउनलोड हो गया तो फिर तो गया काम। लेकिन अगर ऑटो नहीं लगा है, आपने आपको आपका मन होता है कि हमें ये डाउनलोड करना है, ये नहीं करना है, और ईश्वर ना करे आपने अगर उसको डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करते ही आपके फ़ोन की सारी डिटेल्स, आपके आधार कार्ड की, आपके अकाउंट्स की सारी डिटेल्स उनके पास पहुंच जाती है, और फिर तो आप जानते ही हैं कि क्या होता है। तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी ना करें, सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि ऐसा हमारे आसपास की सिटीज़ में भी देखा गया है। मैं बता दूं आपको कि सभी आजकल बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, हालांकि किसी से ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी हम खुद मूर्ख बन जाते हैं। वो इसीलिए बन जाते हैं क्योंकि हमें ना झांसा देने वाले सक्सेस हो जाते हैं। यार आप, आपकी शॉप है ना, आप इतना कितना कमा लेते हैं, आप कितना कमा लेते हैं, महीने का 30,000 कमा लेते हैं, 20,000 कमा लेते हैं, चलो हम 50 मान लेते हैं, हम आपको 70-80,000 रुपए महीने में कमा करके दिखाएंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको हमारी कंपनी ज्वाइन कर लेनी है। अब आप खुद सोचो कि 70-80,000 का कोई झांसा देगा और आपसे बदले में स्टार्टिंग में कोई रुपए नहीं मांग रहा है तो कौन नहीं जाना चाहेगा। तो इसीलिए इन सारी चीजों से सतर्क रहें, सावधान रहें। साइबर क्राइम को, साइबर कैफे में बहुत सारे ऐसे लोग बैठे रहते हैं फर्जी की, हाँ क्या कहते हैं, डाटास जो है ना वो लोग अपने में लेते रहते हैं। तो इन सब चीजों पर भी आपको नजर डालनी है, इन सब चीजों पर भी हो सके तो आप रोक लगाएं, नहीं तो आप सेफ रहें, आप अपने अकाउंट्स को सेफ रखें और आप अपने मोबाइल के जितने भी आपके एप्स हैं उस पर लॉक लगा कर रखें, तभी हम सतर्क रह पाएंगे। चलिए तो अब मैं आती हूँ सीधे चैट बॉक्स में, क्योंकि टाइम भी अभी होने वाला है गेम का एंड राशिफल का, ठीक है। लेकिन अभी हम आपको देने वाले हैं एक हेल्थ टिप जो कि बहुत ज्यादा वाला कारगर होने वाला है, ठीक है। तो हेल्थ टिप जरूर से सुनिएगा, लेकिन उसके पहले मैं आ जाऊं चैट बॉक्स में। तो चैट बॉक्स में सविता जी, श्रीनाथ पटेल जी, आरके जी, नागेश्वर जी, आरके जी ने लिखा है बहुत बढ़िया, अभी मैसेज किए हैं, तो हाँ अब मुझे लग रहा है कि आप ही हैं, है ना। तो ओके सविता जी, आरके जी लिख रहे हैं, समता मैम आकांक्षा बिटिया को भी साथ में ले आती तो मजा आ गया होता, आकांक्षा बिटिया भी बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत करती है। आरके जी तो उसको ट्रेंड किसने किया, आप ये भी तो देखे ना, मेरे साथ रहती है ना, मैंने ट्रेंड किया है उसको, तो क्रेडिट गोज टू मी। मैसेज कांशा बेटा की तरह आप भी सारे मैसेज शामिल किया करो, सारे मैसेज स्पीड में पढ़ा करो और आप बहुत धीरे मैसेज पढ़ती हो इसलिए अटक अटक कर बोलती हो। अच्छा जी ठीक है, घर का काम अब आकांक्षा, ओके आकांक्षा बेटिया बहुत अच्छा प्रोग्राम करती है। तो नमस्ते जी, घर का सब काम हो गया, यहाँ पर समय का कोई, यहाँ पर इस समय कोई ऐसा शख्स है जो दूसरों की आईडी लॉगिन करके आ रहा है, भगवान जाने कौन है। धर्मेंद्र जी नमस्ते जी एंड गुड मॉर्निंग आपको भी। दीपांशी जी कैसी हैं आप, गुड मॉर्निंग। एंड नीरज बाबू गुड मॉर्निंग, आप सभी कैसे हैं। एंड नियति, अदनान सर नहीं है आज, मैं हूँ यानी आपकी आरजे समता। नागेश्वर जी

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: अरे सुना?
4: क्या?
3: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
4: वाओ!
3: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
5: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
6: गोंडा शहर की धड़कन।
7: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज क्षमता। तो चलिए भाई, हेल्थ इज़ वेल्थ की ओर चलते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, वाकई में हमारा शरीर ही हमारे लिए सब कुछ है। तो भाई, शरीर हमारे लिए सब कुछ है तो हम उसे कैसे भूल सकते हैं और कैसे हम उसे इग्नोर कर सकते हैं? तो आज मैं आपको कुछ ऐसे उपचार बताऊंगी, ऐसी कुछ चीज़ें बताऊंगी जो कि हमारी पेट के लिए लाभकारी हैं। तो आप क्या जानना चाहते हैं, मतलब पेट के लिए मुझे बताइएगा, ठीक है? जो जिन्होंने भी कोई अगर प्रॉब्लम होती है ना, तो आप मुझे बताएं कि आपके पेट के लिए क्या लाभदायक है, क्या आपको मतलब जानना है। तो सबसे पहले तो मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आज आपको बताऊंगी, कुछ ऐसे सुपर फूड के लिए जो आपके पेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। देखिए, ऐसे कई घरेलू चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग हमेशा से लेते आते हैं, मतलब अगर एसिडिटी है, कब्ज है, या फिर पेट में दर्द हो रहा है, या कुछ भी है, मतलब कोई भी चीज़ है, तो हम क्या करते हैं, अजवाइन ले लेते हैं, कुछ ऐसा खा लेते हैं जिसकी वजह से हमें हमारा पेट दर्द ठीक हो जाता है और हमारी एसिडिटी भी ठीक हो जाती है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ आज समझा देना चाहती हूँ कि अगर आप कोई भी चीज़ को, कोई भी चीज़, जब तक आप उसे दर महीना 20 दिन 25 दिन कंटिन्यूसली नहीं करेंगे, वो असरदार नहीं होने वाला है। चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे वो आपके पेट के लिए हो, आपकी आँखों के लिए हो, आपके बालों के लिए हो, आपके किसी भी बॉडी पार्ट के लिए हो, क्योंकि जब हमारे शरीर को ये पता चलने लगता है, ये मैसेज आने लगता है कि हमारा इस चीज़ को हमें रोज अब ये चीज़ मिलने वाली है, तो धीरे धीरे वो चीजें ठीक होने लगती हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे सुपर फूड बताऊंगी जो आपके पेट के लिए फायदेमंद है। सबसे पहला तो पपाया, यानी कि पपीता। ये हमारे जो डाइजेस्टिंग सिस्टम को एंजाइमों से भर देता है, जो हमारे पाचन एंजाइमों से ये उन सोर्स को भर देता है जो खाना पचाने में मदद करता है और कब्ज से राहत दिलाता है। इसीलिए पपीता को आप ना क्या करना है, आपको डेली रूटीन में इसको शामिल ही शामिल करना है। मतलब एक ऐसा रूटीन बना लो कि दिन में आपको पपीता खाना ही खाना है, और उसके बाद में शाम को, मतलब जैसे 7-8 बजे तक, या फिर अगर 7-8 बजे कोई, अगर आप लोगों में से कोई खाना खाते हैं, क्योंकि अमूमन सभी के घरों में 9 बजे तक खाना खाते हैं, 8:30-9 बजे तक खाते हैं, तो 6-7 बजे आप सेब खा सकते हैं, सेब की आदत डाल सकते हैं। ये दोनों सुपर फूड हैं जो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छे हैं। उसके बाद आता है दही। दही में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो आंतों को स्वस्थ रखते हैं और पाचन क्रिया सुधारने में हमारी मदद करते हैं। अदरक, पेट की खराबी, अपच और गैस के लिए अदरक का फायदेमंद, ये जो सेवन है ना, जो उसका जो सेवन है वो फायदेमंद है। एंड एक चीज और बता दूं कि अजवाइन और सौंफ, जिन्होंने ये प्रॉब्लम होती है कि आपने पेट फूलना, गैस की समस्या, पर अजवाइन और सौंफ का पानी अगर आपने लेना शुरू कर दिया, कैसे लेना है मैं बताती हूँ। रात में एक चम्मच सौंफ और एक चम्मच अजवाइन को आपने ग्लास में भिगो के रख देना है, ठीक है। सुबह उठ करके खाली पेट आपने इसको ले लेना है, आपको इसको पी लेना है। और जो सौंफ और अजवाइन होगी वो आप सब्जी में डाल दीजिए, ठीक है। उसको अगर आप चबा करके खा सकते हैं तो ठीक है, वरना उसका जो पानी है वो बहुत फायदेमंद होता है। तो ये पानी आप लेना शुरू कर दें। साथ ही साथ में पेट के लिए किशमिश, मतलब रात में अगर आपने 8 से 9 दाने किशमिश को भिगो के रख दिया और सुबह किशमिश को चबा के खाइए और उसका फिर पानी पी जाइए, ये जानिए सुपर फूड आपके पेट के लिए। इससे आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, आपके बाल अच्छे होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी और पेट, जिन्होंने बहुत ज्यादा कब्ज की समस्या है, कम से कम 1 महीना कंटिन्यू आपको करना है और फिर किशमिश की पानी की आपको आदत हो जाएगी और आपका कब्ज जो है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। तो ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको हमें आपको बताना था। एंड साथ ही साथ में दो बहुत ही और भी जो आपकी डेली रूटीन में आ सकता है पेट की सेहत के लिए रूटीन टिप्स, जो क्या है कि आप रोज रोज मतलब बिन नागे पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए। रोजाना पर्याप्त पानी पीना कब्ज से बचने का सबसे अच्छा और सरल तरीका है। सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पाचन तंत्र को सक्रिय करता है। बिल्कुल, ये तो समझ लीजिए कि रामबाण है ये चीज तो, ठीक है। अब आते हैं हम अपने शरीर की कुछ एक्टिविटीज पर, जिसमें आता है योग, पवन मुक्तासन, वज्रासन और भुजंग आसन। ये अगर आप अपने पेट के लिए करते हैं तो ये जान लीजिए कि आप जब तक आयु है तब तक आपकी शारीरिक गतिविधि जो है वो सामान्य रूप से चलने वाली है, बढ़िया चलने वाली है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, 15 मिनट की सैर, हल्की कसरत और पाचन क्रिया को सक्रिय करने के लिए ये काफी है। तो ये था आज का हमारा एक हेल्थ इज वेल्थ का टिप, क्योंकि हमारी अगर हेल्थ अच्छी होती है तो सब कुछ अच्छा होता है, हमारा मूड अच्छा होता है, पता है काम करने में मन लगता है। फिर अगर हमारा अगर हेल्थ अच्छी नहीं होती है ना तो फिर काम करने का मन भी नहीं करता। एग्जैक्टली मैं बताऊं सच्चाई में, अपने आप से मैं अपने लिए भी बता रही हूं कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी होती है ना तो हमारा काम करने का मन करता है, घूमने फिरने का मन करता है, और अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो कुछ नहीं, चुपचाप बैठे रहो, है ना। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का टिप जरूर से बताइए। और तब तक के लिए मैं सुना देती हूँ आपको ये बहुत ही प्यारा सा गाना जो कि है हमको आजकल है इंतजार, बहुत ही प्यारा सा गाना है। और इस गाने के बाद में सीधे आएंगे हम राशिफल की ओर और आज के गेम। तो फटाफट सभी लोग बने रहिए गेम के लिए, आज मैं आपको देने वाली हूँ वर्ड। तो फटाफट आप सभी लोग इस गाने को खत्म होने का इंतजार करें, मैं आऊंगी राशिफल लेकर के और साथ में गेम।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45। अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

वेलकम बैक दोस्तों, आगे आपकी आज समता और शो चल रहा है गुड मॉर्निंग गोंडा। तो भाई गुड मॉर्निंग गोंडा में चलिए फटाफट हम गेम शुरू करते हैं। और हाँ जी, मुकेश यादव जी, प्रीति जी गुड मॉर्निंग, एंड अंबर जी गुड मॉर्निंग। तो चलिए, हमने सबसे पहला वर्ड आपको दिया है आज, द फर्स्ट वर्ड इज, आपको पता है क्या दिया है मैंने, सुन। तो सबसे पहला वर्ड दिया है मैंने आपको सुन। तो सुन से गाना लिखिए फटाफट, तब तक हम चलते हैं राशिफल की ओर। तो भाई चंद्र राशि के अनुसार 7 मई 2026 और चंद्र राशि के अनुसार जो है वो मेष राशि। आइए जानते हैं कि क्या है पॉजिटिव। पारिवारिक स्तर को बेहतर बनाने के लिए परिजनों के साथ सकारात्मक विचार विमर्श होगा। किसी प्रिय मित्र की परेशानी में मदद करने से आपको दिल की खुशी मिल सकती है। रोजगार प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे युवाओं को कोई उम्मीद मिल सकती है। लव लाइफ आपका बता रहा है कि घर का वातावरण खुशनुमा भरा और सुकून भरा रहने वाला है। परिवार के साथ मनोरंजन में समय बीतेगा आज आपका। स्वास्थ्य बता रहा है कि खांसी जुखाम या गला खराब रहने जैसी दिक्कत आपको हो सकती है, नजरअंदाज ना करें, तुरंत इलाज करें। भाग्यशाली रंग है सफेद एंड भाग्यशाली अंक है 3 मेष राशि वालों। दूसरी राशि हमारी आती है वृष राशि वालों के लिए। चंद्र राशि के अनुसार पॉजिटिव क्या है आइए जानते हैं। मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना आपको नया नजरिया देगा। कोई खुशखबरी भी मिलने वाली है। युवा वर्ग को अपने किसी काम में सफलता मिलने से राहत रहेगी। मानसिक सुख के लिए एकांत या धार्मिक स्थल पर जाकर के कुछ समय बिताएं। और लव लाइफ आपको बता रहा है कि जीवन साथी और परिवार के लोगों के आपसी सामंजस्य से घर की व्यवस्था उचित बनी रहेगी। प्रेम संबंध भी सुखद रहने वाले हैं। स्वास्थ्य बता रहा है कि संतुलित आहार के साथ व्यायाम और योग पर भी ध्यान दें। इससे आपकी इम्यूनिटी बनी रहेगी और मजबूत रहेगी। भाग्यशाली रंग है आसमानी एंड भाग्यशाली अंक है 6। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन देखते हैं कि कैसा है। लेकिन उसके पहले मैं देख लूं कि मैंने दिया था फर्स्ट वर्ड सुन। तो सबसे पहला जो आंसर किया है वो किया है प्रीति जी ने, सुन सुन मेरे मुन्ने सुन। ओके। एंड नागेश्वर ने सुन साहिबा सुन, सुन जरा सोनिए सुन जरा। तो प्रीति जी का चला देते हैं सबसे पहले सॉन्ग, लेकिन मिथुन राशि वालों के लिए सुनने के बाद में। पॉजिटिव है आज का दिन, खास तौर पर महिलाओं के लिए उपलब्धियों वाला रहने वाला है। कई नई जानकारियां और अनुभव भी सीखने को मिलेंगे। रुके हुए कामों में गति आएगी। किसी पॉलिसी या प्रॉपर्टी आदि निवेश में करना उचित होगा। लव लाइफ आपका बता रहा है कि घर में व्यवस्थित और सुख शांति भरा माहौल रहने वाला है। प्रेम संबंधों में भी एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। स्वास्थ्य बता रहा है कि मौसम के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखना जरूरी है। आयुर्वेदिक चीजों का अधिक से अधिक सेवन करें। भाग्यशाली रंग है सफेद एंड भाग्यशाली अंक है 9 मिथुन राशि वालों। तो आइए फटाफट सुनते हैं हम गाने को, क्योंकि गाना भेजा है प्रीति जी ने। ठीक है, तो प्रीति जी, नागेश्वर जी का भी गाना बहुत बढ़िया था, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले आपके गाने को चलाऊंगी और उसके बाद में फिर नेक्स्ट जो नागेश्वर जी भेजेंगे ना, हम उनको सुनेंगे। ठीक है, तो सुन सुन सुन मुन्ने सुन, बहुत ही प्यारा सा गाना है। आइए सुनते हैं इस गाने को और नेक्स्ट वर्ड चैट बॉक्स में।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: वेलकम बैक दोस्तों। चलिए गेम के अंतराल में फिर से आ जाते हैं हम तीन राशियों को बताने के लिए। तो फटाफट रेडी हो जाएं, जो कि हम बताएंगे कर्क, सिंह और कन्या। ठीक है, तो कर्क राशि वाले हो जाएं तैयार। उसके बाद गेम का हमने वर्ड दिया था सौदा। तो सौदा से मुझे लग रहा है आशु जी ने उस सॉन्ग को लिखा है, तो मैं फटाफट आशु जी के सॉन्ग को भी सुनाऊंगी, लेकिन पहले हम बताएंगे तीन राशियां। तो चंद्र राशि के अनुसार कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। कोई रुका हुआ इनकम सोर्स दोबारा शुरू हो सकता है। प्रॉपर्टी या घर की सुख सुविधाओं से जुड़ी चीजों की खरीदारी में अधिकतर समय बीतेगा। बच्चों को आपके मार्गदर्शन में कोई फैसला लेने में आसानी होगी और उनका मनोबल भी बढ़ेगा। एंड लव लाइफ बता रहा है कि पति पत्नी के बीच आपसी नजदीकियां बढ़ेंगी। दोस्तों के साथ पिकनिक या मूवी आदि का प्रोग्राम भी बन सकता है। स्वास्थ्य बता रहा है कि घर के बुजुर्गों की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी को लापरवाही में ना लें, तुरंत इलाज करवाएं। भाग्यशाली रंग है जामुनी एंड भाग्यशाली अंक है 4। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन है कि पिछले कुछ समय से आप जो योजनाएं बना रहे थे, अब उन्हें लागू करने का उचित समय है। प्रयासरत रहें, अगर कहीं पैसा उधार दिया हुआ या फंसा हुआ है तो आज उसका हिस्सा वापस मिल सकता है। किसी राजनीतिक संपर्क से भी आपको फायदा होने की उम्मीद है। एंड लव लाइफ बता रहा है कि पति पत्नी के प्रयासों और असमंजस से पति पत्नी के प्रयासों और सामंजस्य से घर में सुखद माहौल बना रहेगा। प्रेम प्रसंग बदनामी और अपयश का कारण बन सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। स्वास्थ्य बता रहा है कि स्वास्थ्य ठीक रहेगा। महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। इस समय किसी तरह के इन्फेक्शन की आशंका है। भाग्यशाली रंग है हरा एंड भाग्यशाली अंक है 7। सिंह राशि वालों, कन्या राशि वालों के लिए है आज का दिन, आइए जानते हैं कैसे। आज आप मानसिक और शारीरिक स्तर पर खुद को स्वस्थ और प्रसन्न महसूस करेंगे। उचित फैसले लेने में भी सक्षम रहेंगे। किसी रिश्तेदार से जुड़ी शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। अगर बंटवारे से जुड़ा कोई काम चल रहा है तो उसे किसी मध्यता के हल से आज आपको प्रयास करेंगे और उसे आपको हल मिलेगा। लव लाइफ बता रहा है कि घर की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों को विवाह के लिए पारिवारिक स्वीकृति मिल सकती है। स्वास्थ्य बता रहा है कि आप किसी मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं तो ज्यादा सोच विचार और तनाव से बचें। भाग्यशाली रंग है केसरिया एंड भाग्यशाली अंक है 1। कन्या राशि वालों, तो भाई मुझे मिला था गाना आशु जी का, क्योंकि नागेश्वर जी का मैंने सॉन्ग प्ले किया है। एंड नहीं, आशु जी के पहले मुझे अंबर जी का मिला है, जो कि लिखा हुआ है सौदा खराखर। तो आइए अंबर जी आपके गाने को सुनते हैं और उसके बाद हम आपको वर्ड देंगे चैट बॉक्स में। जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करिए ताकि सभी के सॉन्ग्स हो सकें बारी बारी। तो फटाफट देर ना करिए, जल्दी से मैं आती हूँ चैट बॉक्स में आपको नेक्स्ट वर्ड देने।

नेक्स्ट वर्ड इज आपको, तो जल्दी से आ जाएं, जल्दी से आ जाएं। हेलो अनुष्का जी, और जल्दी से आ जाएं सभी लोग, क्योंकि सभी पार्टिसिपेट करिए। नेक्स्ट वर्ड है आपको, ऐसे आपका इंतजार। ओके

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगर बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
3: वेलकम बैक दोस्तों। चलिए तो बाकी राशियों के बारे में भी जान लेते हैं और नेक्स्ट सॉन्ग हम चलाने वाले हैं दीपांशी का, ठीक है? तो दीपांशी आप रेडी हो जाएं और नेक्स्ट जो कि हम राशि बताने वाले हैं वो है तुला, वृश्चिक और धनु। तो तुला राशि वालों के लिए आइए जानते हैं कि कैसा है दिन। तो तुला राशि वालों के लिए है आज का दिन आपको यादगार पल देने वाला है। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात बहुत लाभदायक रहने वाली है। आपके दिमाग में नई नई योजनाएं आएंगी जो घर और बिजनेस दोनों के लिए उचित साबित होंगी। परिवार के साथ शॉपिंग आदि करने में अच्छा समय बीतेगा। लव लाइफ बता रहा है कि व्यवहारिक और प्रेम संबंध दोनों में उचित भावात्मक नजदीकियां बनी रहने वाली है। मित्रों के साथ गेट टुगेदर से जुड़ा प्लान भी बन सकता है। स्वास्थ्य आपका असंतुलित खान पान की वजह से पाचन संबंधी समस्या बढ़ सकती है। अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें। भाग्यशाली रंग है बादामी एंड भाग्यशाली अंक है 9 तुला राशि वालों। नेक्स्ट आती है राशि हमारी वृश्चिक राशि वालों के लिए। आइए जानते हैं कौन सा क्या है दिन आज का। इस राशि के लोगों की सक्रियता और आकर्षक व्यक्तित्व भरपूर बना रहेगा। अपनी योजनाओं को वास्तविक रूप देने का अनुकूल समय है। युवा वर्ग अपने लक्ष्य को फोकस करेंगे। कुछ समय रचनात्मक और मनपसंद कार्यों के लिए भी जरूर निकालें, इससे मानसिक सुकून मिलेगा। लव लाइफ बता रहा है कि व्यवहारिक मधुर संबंध रहेंगे। परिवार के साथ किसी मनोरंजक स्थान पर जाने का अवसर मिलेगा आज। स्वास्थ्य बता रहा है कि खान पान पर नियंत्रण रखें वरना सेहत बिगड़ सकती है। कब्ज और गैस जैसी समस्या ना बनने दें। भाग्यशाली रंग है लाल एंड भाग्यशाली अंक है 2 वृश्चिक राशि वालों। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन है कि दिन की शुरुआत की में बहुत व्यस्तता वाली रहने वाली है, लेकिन अंत में परिणाम बेहतर मिलेंगे। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात लाभदायक होने वाली है और किसी विशेष मुद्दों पर विचार विमर्श भी होगा। सोसाइटी से जुड़े किसी विवादित मामले में आपका प्रस्ताव निर्णायक रहने वाला है। लव लाइफ बता रहा है कि घर का माहौल सुखद और शांतिपूर्ण रहने वाला है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होंगी और मधुर यादें भी ताजा रहने वाली हैं। स्वास्थ्य बता रहा है कि सर्वाइकल और जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए व्यायाम और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल जरूर करें। भाग्यशाली रंग है बादामी एंड भाग्यशाली अंक है 2। तो नेक्स्ट सॉन्ग आइए सुनते हैं, उसके बाद में आपको देती हूँ नेक्स्ट वर्ड एंड बाकी बची 3 राशियों को हम आपको सुनाएंगे इस ब्रेक के बाद। नागेश्वर जी कहाँ जा रहे हैं? आपको कहीं नहीं जाना है। दीपांशी आइए आपका सॉन्ग सुनते हैं और उसके बाद मैं देती हूँ आपको वर्ड।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88 40 33 95 84 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: वेलकम बैक दोस्तों, आ गए हैं प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे। तो मैं पहले दे देती हूँ चैट बॉक्स में एक अच्छा, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए और रब करे तुझको भी प्यार हो जाए। तो आशु जी ने एंड अनुष्का जी ने भेज दिया है, तो मुझे लग रहा है कि लास्ट बट नॉट लीस्ट ये दोनों सॉन्ग होने वाले हैं। तो आइए पहले हम जान लेते हैं बाकी बची राशियों के बारे में, जो कि हैं मकर, कुंभ और मीन। तो मकर राशि है, चंद्र राशि के अनुसार दिन व्यस्तता भरा रहने वाला है। किसी महत्वपूर्ण काम के पूरा होने से राहत मिलेगी। किसी निजी और खास योग्यता को निखारने का अनुकूल समय है। लोगों की परवाह न करके अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें, नई उपलब्धि मिलेगी। लव लाइफ बता रहा है कि व्यस्तता के बावजूद जीवन साथी के लिए कुछ समय जरूर निकालेंगे, इससे आपसी संबंधों में मधुरता आएगी, प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी। स्वास्थ्य बता रहा है कि गलत खान पान की वजह से पेट खराब हो सकता है, अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखना जरूरी है। भाग्यशाली रंग है पीला एंड भाग्यशाली अंक है 5 मकर राशि वालों। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन है, दिन की शुरुआत किसी सुखद समाचार से होगी। अगर पैतृक प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई गतिविधि चल रही है तो आज आपसी तालमेल से उसका समाधान हो सकता है। नजदीकी संबंधों में चल रहे गिले शिकवे भी किसी की मध्यस्थता से दूर होंगे। ओके, लव लाइफ बता रहा है कि घर में चल रही अव्यवस्थता की वजह से व्यवहारिक जीवन में तनाव पैदा हो सकता है, इसलिए सावधान रहें, प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। स्वास्थ्य बता रहा है कि गर्मी भरे मौसम की वजह से सिर में भारीपन और बुखार जैसी समस्या रह सकती है, दिनचर्या संयमित रखना जरूरी है। भाग्यशाली रंग है आसमानी एंड भाग्यशाली अंक है 4 कुंभ राशि वालों। लास्ट बट नॉट लीस्ट मीन राशि वालों के लिए है कि आज आपकी कोई पारिवारिक समस्या हल होने वाली है, जिससे चिंता दूर होगी और आप अन्य कामों पर ध्यान दे पाएंगे। जरूरतमंद लोगों की मदद करके मानसिक सुकून मिलेगा। काफी समय बाद नजदीकी रिश्तेदारों से मेल झोल होने से मन प्रसन्न रहने वाला है। लव लाइफ बता रहा है कि परिवार के लोगों का आपसी सामंजस्य घर में उचित व्यवस्था बनाए रखेगा। परिवार के साथ घूमने का प्लान भी बन सकता है। स्वास्थ्य बता रहा है कि स्वास्थ्य कुछ नरम गरम रहने वाला है। माता पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। भाग्यशाली रंग है ऑरेंज एंड भाग्यशाली अंक है 9। तो भाई ये थी आज का राशिफल और आज के प्रोग्राम का फीडबैक देना ना भूलिएगा जरूर से। एंड मुझे 3 गाने मिले हैं, ओहो रब ने बनाया मुझे तेरे लिए। तो मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि मैं भले एक लाइन ही सही मैं सुना के जाऊँ, और बाकी अगर किसी का भी सॉन्ग अगर नहीं होता है ना तो मैं सुन सहेली में कोशिश करूँगी कि आपको सुनाऊँ, ठीक है।

तो अनुष्का जी एंड सबलू जी, हम आपका सॉन्ग जो है ना, आप सुन सहेली में आइएगा और सुन सहेली में मैं आपके सॉन्ग को ज़रूर पूरा कर दूंगी। और अभी क्योंकि टाइम जो है ना वो हमसे भागा जा रहा है, तो अभी टाटा बाय बाय करने का वक्त है। सुन सहेली में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत ऑल्टर्स किप्स ले चलो।
5: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
6: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
7: अरे सुना?
8: क्या?
7: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
8: वाओ!
7: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
9: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
0: नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त समता, गांव की गूंज का एक नया एपिसोड हम सभी मिलकर ला रहे हैं, जिसमें हर बार की तरह मधुर मधुर गीतों की जो माला पिरोई गई है वह श्रीमती किरण पांडे जी की मधुर आवाज में है, और उसका साथ देने आ रहे हैं जिमी, श्वेता और समता। आज हम आपको ले चलने वाले हैं हमारे गोंडा के ही एक पर्यटक स्थल यानी कि बलरामपुर की ओर, जहां पर आप सभी को पता है कि पर्यटक स्थल होने के साथ साथ वहां पर एक माता जी का भव्य मंदिर भी है। तो आइए दोस्तों, हम गांव की गूंज का जो ये एपिसोड है, इस बार हम आपको ले चलने वाले हैं एक नए और एक बहुत ही प्यारे से पर्यटक स्थल की ओर। अरे बाप रे बाप, कितनी गर्मी है। उफ, श्वेता भी अभी नहीं आई है, गांव भी जाना है। किरण दी तो अभी आते ही बस शुरू हो जाएंगी। चलो चलो, क्या कर रही हो सब?
10: राधे राधे समता जी, क्या हाल है? बहुत गुस्से में दिख रही है, आखिर बात क्या है?
0: अरे पूछो मत श्वेता, देख नहीं रही कितनी गर्मी है और इतने पसीने गिर रहे हैं। मैं तो इस गर्मी से परेशान ही हो गई हूँ।

0: अरे सब लोग रेडी हो भाई, किरण भी आती होंगी। और आओ सब लोग रोटी सब्जी खा लो, बस अभी गरम गरम बनाई है।
1: मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है, पर किरण दीदी आ जाती तो सब एक साथ मिल के खा लेते और मजा ही आ जाता।
2: सच्ची कहा श्वेता, पर किरण दी आज कहाँ रह गई भला, गांव भी तो निकलना है। श्वेता देखो जरा फोन लगा के किरण दी को।
1: ओके।
3: हाँ श्वेता, मैं रास्ते में हूँ, बस 5 मिनट में पहुँच रही हूँ। और सुनो, ड्राइवर भैया रास्ते में मिल गए हैं, तो मैं गाड़ी से ही आ रही हूँ, और सब बिल्कुल मुझे तैयार मिलो।
0: हाँ दी, आप आइए तो, हम सब बिल्कुल रेडी हैं। किरण दी आइए, आज मैंने रोटी और कटहल की सब्जी बनाई है, चलिए सब मिलकर खा लें, फिर सब चलते हैं।
3: ठीक है, आओ सब कटहल की सब्जी और रोटी खाते हैं।

0: किरण दी, इस बार हम लोग बलरामपुर चल रहे हैं ना? बलरामपुर के किस गांव में?
1: हम लोग चल रहे हैं बलरामपुर के बैरिया सुरजनपुर गांव में, और पता है जहां पर जिम्मी की नानी रहती हैं और उनकी नई नई बहू आई है, उसी को देखने चल रहे हैं। चलो सब लोग।
2: और जानती हैं समता दी, हमारी नानी जी अपने बहू बेटे दोनों से बहुत प्यार करती हैं। अभी आप जैसे उनके सामने पड़ेंगी वो अपने बहू के गुणगान गाने लगेंगी।
3: जो बहुओं के गुण गाती है वो

0: अभी कितनी दूर है गांव? जिमी, तुम्हारी नानी का घर तो बहुत दूर है।
1: अरे श्वेता दी, बस आने वाले हैं ड्राइवर भैया, थोड़ा आराम से चलिए, इधर का रास्ता बहुत खराब है।
2: पर काफी हद तक सड़कें अच्छी हो गई हैं अब।
3: जिमी, यही है ना बैरिया सुरजनपुर गांव? जरा बताती हुए चलो, रमेश को रास्ता पता नहीं है।
1: हाँ किरण दी, मैं बताते हुए ही चल रही हूँ, इसीलिए तो मैं ड्राइवर भैया के बिल्कुल बगल वाली सीट पे बैठी हूँ। भैया इधर से दाहिनी मोड़ लीजिए, और वो देखिए भैया, सामने वाला जो दो मकान है पीले रंग का, आगे छप्पर छाया हुआ है, बस वही है नानी का घर।
2: वो जो चारपाई पर बैठी है वही है क्या तुम्हारी नानी, वो जो बूढ़ी सी है?
1: हाँ हाँ समता दी, वही है हमारी नानी जी। चलिए सब लोग उनको राम राम बोलते हैं।
4: राम राम नानी जी।
3: कैसी हैं आप नानी जी, क्या हाल चाल है? नानी जी, भैया और भाभी सभी ठीक है ना? कहाँ हैं सब लोग?
5: सबका राम राम बहनी, जियो नी के रहाओ, कहाओ बहनी जिम्मी, काओ हाल है? तोहरे मम्मी पापा केर का हाल है बहनी? आज नानी कहाँ याद कैली हो बच्चा हमार? ये सब तोहार के हो सखी सहेलर हो? आओ आओ सभे जने बैठो, आओ बैठो।
1: हाँ हाँ नानी, ये सभे हमरे साथे काम करतीं, सखी सहेली समझो नानी।
2: जिमी, तुम्हारी भाभी आ रही है क्या? वो देखो सामने, और शायद भैया भी साथ में हैं।
6: लगता है नानी अपने बहू और बेटे से बहुत प्यार करती हैं।
5: नानी, ज्यादा लाड प्यार ना करो अपने बेटे का, नहीं तो बिगड़ जाएंगे भैया।

0: अरे बच्चा यक्के जने हैं ये, तब मोहित है इनका, अब का करी बहनी, यक्के तो हमार बिटीवा बाटे।
1: किरण दी, हमारा मन कह रहा है कि नवरात्रि चल रही है तो हम लोग इधर से ही देवी पाटन मंदिर के दर्शन करते हुए चले।
2: हाँ दी, हम लोग दर्शन करके ही चलेंगे, चाहे जितनी देर हो जाए। नानी जी आप भी चलिए और भैया भाभी आप भी चलिए, गाड़ी तो हमारे पास है ही, बहुत मजा आएगा।
0: अब ये दुल्हन कहाँ जाई है दादा, घाम बहुत है और तनी ये पैदल चले, मैं कमजोर ही बच्चा हमार, डरात ही कि घमाम चली तो करिया ना हो जाई।
2: अरे नाही अम्मा, ये बात ना है, हम कहाँ करिया हन, हमसे ज्यादा तो तहारी बिटिया करिया ही।
0: हे दुल्हन खबरदार, जो हमरे बिटिया के यहाँ करिया कहे तो

0: अरे नानी जी, अब बहू और बेटी में कोई फर्क वर्क नहीं करता है और न करना चाहिए। आपकी बेटी भी तो किसी के घर की बहू बनेगी। बहू को बेटी की तरह ही रखिए और प्यार करिए।
1: हाँ नानी जी, बहू तो घर की लक्ष्मी होती है और लक्ष्मी जी को खुश रखने के लिए ही घर में लक्ष्मी जी आती हैं। अब दिवाली आ रही है, लक्ष्मी जी आने ही वाली हैं।
2: अरे हमारी नानी जी बहुत अच्छी हैं। देखो कितनी सुंदर हैं और बहू को बहुत प्यार करती हैं। अरे इतनी पढ़ी लिखी बहू मिली है आपको, तो आपको किस बात की चिंता है, क्यों नानी?
3: अरे बहनी, हम तो इनका बहुत मोहाई ले, लेकिन ये जब देखो तब यह कहत ही कि तोहार लड़कवा हमारे साथ है बहुत मनमानी करत है, हमार कौनो कदर नाई की हिस। आप बताओ का करी।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
3: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
5: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: Dinner,

आफ्टरनून एवरीवन. भाई वक्त हो चुका है 12 यानी आपके अपने शो ज्ञानसी लाइव का. जी हाँ, ज्ञानसी लाइव, जिसमें आप इंजॉय करते हैं ऐसे कंटेंट जो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आते हैं. और भाई अभी आप इंजॉय कर रहे थे माधुरी दीक्षित का एक बहुत ही फेमस सॉन्ग आजा नष्ट, जिसमें आवाज़ थी सुनिधि चौहान की और इसमें वर्क किया था सलीम सुलेमान ने. और भाई सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने सोचा कि आप सबको थोड़ा आपके टाइप के कंटेंट दिया जाए, आपके टाइप के यानी चुलबुले चटपटे मसालेदार. अब भाई देखिए, मैं तो आज लेकर आई हूँ बहुत सारी चीज़ें, यानी कि ऐसी ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली. अब देखिए, हम सभी का दिमाग कहीं ना कहीं गॉसिप में, चटपटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा लगता है. और भाई क्योंकि हम इंडियंस हैं, इसीलिए बॉलीवुड में कुछ ज़्यादा ही मन लगता है. तो आप भी अगर बॉलीवुड के दीवाने हैं और बॉलीवुड की गॉसिप को सुनना चाहते हैं, तो भाई आपका रेडियो रेडियो ज्ञानसी 89.6 FM में मैं आपकी RJ आयुषी आपकी थर्सडे वाले ज्ञानश्री लाइव में लेकर आ चुकी हूँ आपका फेवरेट चीज, यानी कि कई सारी न्यूज और गॉसिप जो कि बॉलीवुड से है. तो भाई चलते हैं एक एक न्यूज को समझते हैं कि आखिर बॉलीवुड में चल क्या रहा है. गाइस देखिए, बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान इस बार अपने बेटे जुनैद खान और साई पल्लवी की एक मूवी जिसका नाम है एक दिन को लेकर फुल सपोर्ट मूव में दिख रहे हैं. भाई मूवी की एडवांस बुकिंग जो है वो 29 दिन पहले ही रिलीज कर दी गई है. इंडस्ट्री में लोग इसे एक बहुत ही स्मार्ट मूव कह रहे हैं कि इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि नए स्टारकास्ट को ऑडियंस तक पहुंचाने और पूरा टाइम मिले, साथ ही साथ थिएटर में भी इसका अच्छा रिस्पांस बन सके. सीरियसली ये मूव काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा चर्चित भी है. तो दोस्तों रेडी हो जाइए, क्योंकि एक दिन 1 मई, एक दिन यानी कि मूवी का नाम है एक दिन, 1 मई 2026 को रिलीज़ हो चुकी है और इस थिएटर में ये रिलीज़ हो चुकी है. और फिल्म की वाइब और हाइप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि भाई पूरा सोशल मीडिया, पूरी ऑडियंस इंडिया की इसलिए बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड है, क्योंकि साई पल्लवी की ये पहली हिंदी डेब्यू मूवी है. तो दोस्तों आई होप आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे. और अगर आप साई पल्लवी को देखना चाहते हैं, उनकी पहली हिंदी डेब्यू मूवी आप देखना चाहते हैं, तो जल्दी से जाइए थिएटर में और उनकी ये मूवी को इन्जॉय करिए, क्योंकि भाई इसकी सोशल मीडिया पर तो बहुत ही हाइप बन चुकी है. ऑडियंस इनकी स्टोरी और केमिस्ट्री को देख के बहुत ज़्यादा खुश, और जिन्होंने नहीं देखी वो तो भाई सुपर एक्साइटेड है. अब चलते हैं भाई हमारे खान्स की तरफ. भाई बॉलीवुड अगर आप जानते हैं तो आप खान्स को भी जानते हैं, कहीं ना कहीं आधे बॉलीवुड पे खान की हुकूमत चलती है. भाई मैं बात कर रही हूँ हमारे किंग खान यानी किंग शाहरुख खान की. हमारे बॉलीवुड के दो खान, जिसमें से एक किंग शाहरुख खान है और सैफ अली खान का इंटेंस लुक शेयर करते हुए फिल्म कर्तव्य की रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है. वैसे ही इसका जो इंटरनेट पे बज है वो शुरू हो चुका है. फैंस इस पावरफुल कॉम्बो को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं और मूवी को सीरियसली एक वॉर ड्रामा है. तो अगर आपको भी दोस्तों मार धाड़ वाली मूवी बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो ये मूवी आप ही के लिए. और भाई हमारे किंग खान है तो जो लड़कियाँ इनको बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, ये बिल्कुल उनके क्रश हैं, तो वो तो भाई जाएंगी ही जाएंगी इस मूवी में. एक्शन, इमोशन और एक्टिंग की बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है. ये एक सॉलिड मिक्स है आपकी हर एक एक पसंदीदा चीज़ का, जिसके लिए बॉलीवुड फेमस है. तो भाई इंतज़ार किसका, एक मूवी रिलीज़ होने वाली है और एक हो चुकी है, तो जल्दी से जाइए और उसको देखिए. और उसको देखने के बाद आइएगा अपने थर्सडे वाले ज्ञानश्री लाइव में और रिव्यू जरूर दीजिए कि आपको वो मूवी कैसी लगी. फिलहाल हम चलते हैं भाई हमारे सॉन्ग पे, क्योंकि भाई हमने अपने सॉन्ग को बीच में ही ब्रेक कर दिया था. लेती हूँ छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आऊँगी और भी बॉलीवुड की खबर आपसे शेयर करूँगी.

आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

आ चुकी हूँ वापस। मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम ज्ञानश्री लाइव। भाई आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी का आनंद भी उठा रहे होंगे। और भाई आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के न्यूज़ की। भाई बातें तो काफ़ी सारी चटपटी हैं और काफ़ी ज़्यादा आपको खुश करने वाली है। देखिए गाइस, अगर आप डायरेक्टर अनुराग बसु को जानते हैं तो आप ये जानते हैं कि अनुराग बसु ने जितनी मूवीज़ बनाई है वो सारी ही रोमांटिक मूवीज़ में काउंट होती है और कहीं ना कहीं ऑडियंस को वो बहुत ज़्यादा पसंद भी आती है। बिल्कुल उसी तरीके से हमारे डायरेक्टर अनुराग बसु की नेक्स्ट रोमांटिक मूवी को लेकर के वो आ चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस को एक्साइटमेंट भी उनमें देखने को मिल रही है। फिल्म में कार्तिक आर्यन और श्रीलीला की फ्रेश पेयरिंग फैंस को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। साथ ही साथ शूटिंग भी बहुत ही ज़्यादा स्मूथली चल रही है और मेकर्स इसे 2026 में ही रिलीज़ करने की सोच रहे हैं। देखिए भाई, ऑडियंस को लग रहा है कि ये मूवी बहुत ज़्यादा क्यूट, इमोशनल और फुल ऑन रोमांटिक वाइब लेकर आने वाली है। उसके बाद चलते हैं हमारी नेक्स्ट रिलीज्ड मूवी की तरफ। भाई देखिए, हम लोग जब अक्षय कुमार को देखते हैं ना तो हमें याद आता है एक उनकी बहुत ही अच्छी मूवी। मुझे तो पर्सनली भाई, जब भी मैं अक्षय कुमार को देखती हूँ तो मुझे वही पुराने वाले आदित्य याद आते हैं जो कि भूल भुलैया में थे। भाई उनका वो रोल आज भी कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और भूल भुलैया वन का क्रेज़ तो बहुत ही ज़्यादा है। बिल्कुल उसी तरीके से अक्षय कुमार आ चुके हैं हमारे बीच एक और भूतिया मूवी को लेकर के, जिसका नाम है भूत बंगला। दोस्तों, अक्षय कुमार और डायरेक्टर प्रियदर्शन की जोड़ी फिर से ऑडियंस को हंसाने आ चुकी है। मूवी है भूत बंगला और उसके साथ इन्होंने एंट्री ली है नई मूवी के साथ। ये हॉरर कॉमेडी फिल्म अप्रैल में ही रिलीज़ हो चुकी है और ये मोस्ट टॉक अबाउट थ्रेटिकल रिलीज़ में शामिल हो चुकी है। देखिए, मूवी में फन, लाइट हार्टेड और फैमिली एंटरटेनमेंट बताया जा रहा है और फैंस आमतौर पर अक्षय की कॉमेडी को लेकर के बहुत ज़्यादा खुश हैं और काफ़ी ज़्यादा उनकी ऑन स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ज़्यादा सराही जा रही है। तो अगर आप भी कॉमेडी लवर हैं तो भाई ये मूवी आपके लिए। जल्दी से जाइए, मूवी देखिए और रिव्यू आके हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं भाई स्मॉल स्क्रीन लवर यानी कि OTT लवर्स की। देखिए, OTT लवर्स के लिए भी एंटरटेनमेंट की फुल डोज रेडी है। तू या मैं, ओ रोमियो और दो दीवाने शहर में जैसी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म की चर्चा बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। रिपोर्टर्स के मुताबिक ये मूवी नेटफ्लिक्स और दूसरे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो सकती है। यंग ऑडियंस के लिए खासकर ये लाइट रोमांटिक स्टोरी और फन कैरेक्टर्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। मतलब आने वाले कुछ दिनों में OTT पर प्यार, कॉमेडी और एंटरटेनमेंट सब कुछ मिलने वाला है। तो दोस्तों, इंतज़ार किस बात का है, जल्दी से अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें क्योंकि भाई बॉलीवुड काफ़ी सारी चीज़ें ला चुका है हमारे लिए और मूवी लवर्स के लिए ये बहुत बड़ी न्यूज़ है कि इतनी हाइप्ड मूवी, या फिर हम कहें कि भाई एक ऐसी मूवी जो हम लोग, देखिए बॉलीवुड हमारा पहले से ही बहुत ज़्यादा फेमस है वर्ल्ड वाइड। उनकी स्टोरी, उनकी मूवी, उनके कैरेक्टर्स, एक्टर्स, एक्टिंग, डांस, सॉन्ग, भाई किस किस की चर्चा नहीं होती है। सब कुछ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से नज़र आने वाला है। कुछ मूवी रिलीज़ हो चुकी है जिसको शायद अभी आपने मिस कर दिया, तो जल्दी से जाइए उसको देखिए। और हम फिर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आपको डिस्टर्ब किया मैंने इस गाने में, लेकिन इस गाने के बाद आती हूँ और आपसे बात करती हूँ और भी ज़्यादा चटपटी, क्योंकि अब बात होने वाली है बॉलीवुड गॉसिप की। तो भाई गॉसिप के लिए रेडी हो जाइए और आपको छोड़ती हूँ इस बहुत ही प्यारे सॉन्ग के साथ।

वेलकम बैक लिसनर्स, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके आपका अपना ज्ञानस्त्री लाइव, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं बॉलीवुड न्यूज की। भाई आज हम बात करेंगे बॉलीवुड गॉसिप की भी, जो कि बहुत ज्यादा हॉट ट्रेंडिंग है पूरे इंडिया में। क्या क्या चीजें हैं उस पर बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सी और न्यूज की तरफ हम चलते हैं। देखिए, अगर हम और न्यूज की बात करें तो OTT लवर्स के लिए काफी सारी चीजें हैं मेरे पास। देखिए गाइज, OTT लवर्स के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि मामला लीगल टू एक मूवी का नाम है, और साथ ही साथ वध 2 जैसी स्क्वील मूवी जल्द ही OTT पे आने वाली है। आपके फेमस भोजपुरी एक्टर रवि किशन की मामला लीगल 2 और संजय मिश्रा की वध 2 को लेकर ड्रामा और कॉमेडी फैंस में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है, खासकर वो ऑडियंस जो सिंपल लेकिन एंटरटेनिंग इंडियन स्टोरी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके लिए ये रिलीज़ फुल पैसा वसूल मानी जा रही है। साथ ही साथ OTT के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। देखिए, मई 2026 की OTT लिस्ट सबसे ज़्यादा चर्चा में है। अगर हम बात शोज़ की कर रहे हैं तो प्रियंका चोपड़ा जोनस की सिटाडेल 2 इस सीरीज को हाई एक्शन और सस्पेंस से भरपूर बताया जा रहा है। ग्लोबल ऑडियंस पहले सीजन को ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पसंद कर चुकी है, और अब दूसरे सीजन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। लोग नेक्स्ट लेवल पे खुश हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और ये OTT प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल छाई हुई है। उसके बाद बात करते हैं हम मई 2026 में OTT लाइनअप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें ड्रामा, सस्पेंस, एक्शन और इमोशनल स्टोरी सब कुछ देखने को मिलेगा। अलग अलग मूड और टेस्ट वाले व्यूअर्स के लिए अलग अलग कंटेंट भी रेडी है। मेकर्स ने अब OTT की और भी वैरायटी बढ़ा दी है। ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है OTT लवर्स के लिए। ज़्यादा ये फोकस कर रहे हैं इसलिए क्योंकि भाई हर एज ग्रुप के लिए OTT पर सारी चीज़ें नहीं होती थी पहले, लेकिन अब ये वैरायटी और भी ज़्यादा बढ़ गई। यानी आप किसी भी एज के हो, अगर आप OTT देखना पसंद करते हैं तो आपके लिए आपके एज के अकॉर्डिंग कोई भी वीडियो, कोई भी कंटेंट वहाँ पे ज़रूर लाया जाएगा। फिलहाल ये थी न्यूज़। इसके बाद हम चलेंगे गॉसिप पे। भाई देखिए, गॉसिप बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग होने वाली है, जो कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक सब पे छाई हुई है, और आजकल पूरे बॉलीवुड में भाई बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है। आपके फेवरेट स्टार्स के साथ क्या हो रहा है, ये आप सुनना चाहते हैं? बिल्कुल, आपको ज़रूर इंटरेस्ट होगा इन चीज़ों में, क्योंकि हमारे अंदर इंटरेस्ट हो चाहे ना हो, दूसरों के गॉसिप में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, क्योंकि भाई आगे आने वाली वाली टाइम में हम भी तो किसी की पड़ोस वाली आंटी हो सकते हैं ना, तो हमारे इंटरेस्ट को अभी से बिल्ड करते हैं। लेकिन एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग को इन्जॉय करने के बाद चलते हैं हम नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ। आई होप आपको पसंद आएगा, और साथ ही साथ हमें ये भी बताएं कि भाई आपके फेवरेट सेलिब्रिटी कौन है।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
0: वेलकम बैक लिसनर्स, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके आपके अपना प्रोग्राम यानी कि ज्ञान अस्त्री लाइव, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, भाई गॉसिप कर रहे हैं, वो भी किसकी, हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी की। भाई देखिए, अब हम बात करते हैं गॉसिप की, जिसमें आप सभी को, इवन मुझको खुद, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। भाई ऐसी ऐसी खबर है कि आप भी सुन के कहेंगे कि भाई आखिर ये बॉलीवुड में चल क्या रहा है। अब देखिए, स्मृति मंदाना को तो हम सभी जानते हैं भाई, उनके दोस्त पलाश मुच्छल पे चीटिंग और कास्ट अब्यूज का केस डाल दिया गया है। बोल रहे हैं कि उन्होंने 40 लाख लूट लिए और शादी से पहले किसी और लड़की के साथ पकड़े गए हैं। हालांकि ये सभी न्यूज NDTV ने खुद अपने पेज पे डाली है, और साथ ही साथ ये भी लिखा है कि पलाश के लॉयर बोल रहे हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और 6 महीने से अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो 6 महीने बाद आखिरकार कंप्लेंट क्यों हुई। साथ ही साथ पलाश ने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली, और साथ ही साथ पोस्ट डालने के बाद उन्होंने कमेंट भी डिसेबल कर दिया, जिसलिए काफ़ी ज़्यादा लोगों का डाउट बढ़ता जा रहा है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। साथ ही साथ रणबीर आलिया ड्रामा भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में। अब ये ड्रामा क्या है भाई? ये ड्रामा कोई मूवी नहीं है, ये ड्रामा रियल लाइफ ड्रामा है। भाई देखिए, रणबीर कपूर ने पैप्स को बहुत ही जोर से डांटा आलिया भट्ट को मॉप करने के लिए दादी की शादी स्क्रीनिंग पे। देखिए, बैक बोला कि बैक ऑफ करो और प्रॉपर फोटोज लीजिए। देखिए, जैसा कि आप सारी पैप्स को जानते हैं कि ये फोटोज बहुत ज़्यादा क्लिक करते हैं और हर एंगल से फोटो क्लिक करते हैं, इसीलिए रणबीर कपूर ने बहुत ही जोर से डांटा हमारे पैप्स को और ये कहा कि आप बैक शूट नहीं करेंगे, आप प्रॉपर फोटो क्लिक करेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरनेट पे वायरल हो रहा है, साथ ही साथ काफ़ी सारे नेटिजन ने रणबीर कपूर को सपोर्ट भी किया है कि ये इन्होंने बिल्कुल सही किया है। देखिए, ये काफ़ी सारे स्टार्स की कंप्लेन आ रही थी कि जो पैप्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अभद्र फोटो क्लिक करते हैं और फिर इसको वायरल करते हैं। हालांकि ये न्यूज़ रिपब्लिक वर्ल्ड की तरफ से है, ये कितना सच है कितना झूठ है ये सब तो आप ही बताएंगे और खुद पैप्स या फिर हमारी मीडिया बता सकती है। साथ ही साथ भूत बंगला पेमेंट, जी हाँ, वही भूत बंगला जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, जो एक बहुत ही अच्छी और बहुत ज़्यादा फनी मूवी अक्षय कुमार की रिलीज़ हुई है, उसके लिए भी काफ़ी सारी गॉसिप बन रही है। जैसे कि अक्षय कुमार की भूत बंगला मूवी ने 211 करोड़ कमा लिए हैं, लेकिन वेंडर्स बोल रहे हैं कि इनको अभी तक सिर्फ और सिर्फ 50 लाख इनका ड्यू रखा गया है। हालांकि इस मूवी का सक्सेस सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुका है, एकता कपूर ने इस मूवी को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया है, लेकिन बालाजी ने इसको पूरी तरीके से इस क्लेम को डिनाई कर दिया है कि ऐसी कोई भी पैसे नहीं है जो अभी अक्षय कुमार के रोके हुए हैं। अभी कितना सच है कितना नहीं सच है ये तो खुद अक्षय कुमार और उनका CA ही बता पाएगा। हालांकि चलते हैं हमारी नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा चटपटा है। जी हाँ, चटपटा सॉन्ग है गेंदा फूल, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जिसमें स्क्रीनिंग हो रही है हमारी सोनम कपूर की और अभिषेक बच्चन की। इन्जॉय करते हैं, बहुत ही प्यारा सा गाना, और इस गाने के बाद आएंगे लेकर और भी सारी गॉसिप, जिसको सुन के आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है।

वेलकम बैक लिसनर्स, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी होस्ट आयुषी ले गया आपका अपना प्रोग्राम ज्ञान असली लाइव, जिसमें हम बात कर रहे हैं आज आपके बॉलीवुड स्टार की गॉसिप के। भाई देखिए, गॉसिप तो बहुत सारी है मेरे पास, लेकिन भाई पॉइंट ये है कि हम एंजॉय भी तो कर रहे हैं अपने बहुत सारे गानों को। अब देखिए, ये गाना जो आप सुन रहे हैं इश्क चुनरिया, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस सॉन्ग है, और अगर आप सल्लू भाई लवर हैं यानी कि हमारे सलमान खान को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, तो ये गाना आपको तो ज़रूर याद होगा। भाई ये आवाज़ में है हमारी अलका याग्निक और उदित नारायण जी की आवाज़ में, और इसमें स्क्रीनिंग हुई है हमारे सल्लू भाई की यानी कि हमारे सलमान खान की। चलते हैं हम गॉसिप की तरफ। देखिए भाई, गॉसिप बहुत ही ज़्यादा हॉट है। बात खबर आ रही है हमारी दीपिका पादुकोण, जी हाँ, मॉमी टू बी, सेकेंड टाइम मॉमी टू बी, भाई बहुत ज़्यादा चर्चा में है। देखिए, दीपिका पादुकोण प्रेग्नेंट होकर SR के यानी कि शाहरुख खान के साथ केप टाउन में किंग की शूटिंग कर रही हैं। लीक्ड इमेज में वो फ्लोई ड्रेस पहन के नज़र आ रही हैं, और ये उनकी 6th फिल्म साथ सॉन्ग सीक्वेंस का शूट हो रहा है। साथ ही साथ भाई हमारी जो बेबो हैं यानी कि हमारी करीना कपूर खान, वो भाई बिल्कुल बहु मूड में आ चुकी हैं। वो अपने इंस्टाग्राम पे तैमूर के साथ पतौड़ी पैलेस में घूमती हुई नज़र आ रही हैं। उन्होंने फैमिली के साथ बहुत सारी फ़ोटो शेयर की है और पूरी की पूरी बहु वाइब में नज़र आ रही है। वेल भाई, हमें ये देख के थोड़ा सा ऐसे लगता है कि भाई हमारी करीना कपूर यानी कि हमारी पू कहाँ पू से लेकर के पार्वती बन गई। जी हाँ, बनना भी चाहिए, ज़िंदगी में कई रंग होते हैं, आप भी कई रंग को आजमाइए, कभी पू कभी पार्वती बनिए। और अब चलते हैं हम नेक्स्ट खबर की तरफ। अब भाई आप सेलेना जेटली को तो जानते ही होंगे, वो बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं खासकर हमारी सोशल मीडिया पे। सेलेना ने ऑस्ट्रेलिया में अपने बेटे की कब्र पर गई हैं और उसको साफ सुथरा किया है और बैठ के वहाँ पे खूब सारा रोई हैं। ये उन्होंने क्लेम किया है कि उनके एक्स ने उनके दूसरे बच्चे से नहीं मिलने दिया, तो वो अपने मरे हुए बच्चे की कब्र पर आकर रो रही हैं। ये पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, साथ ही साथ फैंस भी इनके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं। अब भाई काफ़ी सारी गॉसिप हो रही है, कौन सी सच है कौन सी नहीं सच है भाई, ये तो वो खुद ही सेलिब्रिटी बता पाएंगे कि आखिर हो क्या रहा है। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी अर्चना पूरन सिंह की। वही अर्चना भाई जो हमारे कपिल शर्मा शो में हंसती हुई नज़र आती है, और उनकी हंसी हमें कुछ ज़्यादा ही हंसा देती है। देखिए, अर्चना के बेटे आयुष्मान ने गर्लफ्रेंड को घर लेकर आए हैं और मूव इन के लिए बोला है। देखिए, स्वीट जेस्चर से उनकी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हुई हैं और उनको सपोर्ट भी कर रही हैं। कहीं ना कहीं ये सारे जेंजीज ये चीज़ें अपनी मम्मी को दिखा रहे हैं कि मम्मी आपको भी इतना सपोर्ट करना चाहिए। भाई हमारी मम्मी तो हमें चप्पल फेंक के मारेंगे अगर ऐसा हुआ। क्या चीज़ कितनी सही है कितनी नहीं हमें क्या पता भाई, हमें तो मतलब है सिर्फ और सिर्फ गॉसिप से। चलते हैं हमारे इस सॉन्ग को एंजॉय करते हैं जो कि हमने बीच में ड्रॉप कर दिया था।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट

पिघलाती है, बल खाती है, तन का चंदन वो छलक छलक झलकाती है, वो नैन द्वार से तन में आके मन में ज्वाला जगाती है, वो चंद्रमुखी है, वो मृगनैनी है, वो चंद्रमुखी है, वो मृगनैनी है, वो रूपवती है।

वेलकम बैक लिसनर्स, आ चुके हैं वापस में आपकी होस्ट आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम ज्ञानश्री लाइव, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं बॉलीवुड की और बॉलीवुड की हॉट ट्रेंडिंग गॉसिप की, जिसमें हमने कई सारी गॉसिप पे बात की। और फिलहाल आप अभी इंजॉय कर रहे हैं सॉन्ग खई के पान बनारस वाला। भाई इस गाने को देख के ना मुझे अपने यूपी में बहुत ज़्यादा गर्व होने लगता है और यूपी की सारी चीज़ें मेरे दिमाग में ना फिर से रिकॉल होने लगती हैं। जैसे भाई अगर हम बात करें तो हमारे यूपी की ना बात ही कुछ अलग है। हमारे यहाँ अगर हम देखें तो हमारे यहाँ अगर हम नॉर्मल एग्जाम्पल

लेते तो हमारे यहाँ टैटू नहीं होते, हमारे यहाँ गुदना होता है, और हमारे यहाँ बल्कि प्लाव नहीं बनते, हमारे यहाँ तहड़ी बनती है। साथ ही साथ हमारे यहाँ की लड़कियाँ अगर थोड़ी सुंदर हो जाए और थोड़ा सा सज संवर के बाहर निकल जाए तो वो सुंदर लड़की नहीं होती, वो होती हैं हीरोइन। और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारी यूपी की बहुत ज़्यादा फेमस है। और भाई यूपी की फेमस चीज़ों की बात करें तो हमारी गर्मी स्पेशल चीज़ों को कहाँ भूल सकते हैं। अरे वही देखिए, लोग लगाते होंगे बहुत ही महंगी महंगी सनस्क्रीन, छाता लेके चलते होंगे, टोपी लगा के चलते हैं, लेकिन भाई इन सभी को फेल कर देता है हमारे यूपी बिहार का गमछा, जिसे हम गमछा भी कहते हैं, अंगोछा भी कहते हैं। ये एक देसी सनस्क्रीन है जो हर एक इंसान लेता है। भाई अगर गमछा ना हो आपके पास तो आप शायद समर्स को बिताने का सोच भी नहीं सकते, और हमारे यूपी की पहचान ही है। या आप जैसे किसी दूसरे शहर से हमारे यूपी में एंटर करेंगे, आप देखेंगे जैसे आपको कोई भी दिख जाएगा ना गमछा लपेटे, आप जान जाइए कि भैया हम यूपी में प्रवेश कर चुके हैं। भाई हमारे यूपी की ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी शान है, जिसमें हमारी अवधि भी आती है। चलते हैं हम नेक्स्ट गॉसिप की तरफ। देखिए हम यूपी में तो बहुत ज़्यादा प्राउड करते हैं, लेकिन हमारी गॉसिप भी बहुत ज़्यादा है, उसको भी शेयर करते हैं। अब देखिए भाई, हमारी रिद्धिमा कपूर को आप जो जानती होंगे, अरे रिद्धिमा कपूर भाई ऋषि कपूर की बेटी। देखिए नीतू जी और ऋषि कपूर की ये बड़ी बेटी जो है रिद्धिमा, ये 45 साल की उम्र में दादी की शादी नामक एक मूवी से बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं। ये कपूर फैमिली की सबसे बड़ी एज वाली डेब्यूएंट साबित हुई हैं। ये जो न्यूज़ है वो हिंदुस्तान टाइम्स में छपी है, भाई मुझे लगा कि आपको ये ज़रूर बतानी चाहिए। साथ ही साथ फैंस ये भी पूछ रहे हैं और मीडिया भी ये पूछ रही है कि आखिर इतना लेट डेब्यू करने के पीछे का राज क्या है। उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो अमीषा पटेल भी आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चे में। अमीषा पटेल मिडिल ईस्ट टेंशन की वजह से दुबई एयरपोर्ट पर 24 घंटे फंसी रहीं और उनकी आखिरकार फ्लाइट भी कैंसिल हो गई। फाइनली वो मुंबई वापस आ गई हैं और सोशल मीडिया पे उन्होंने अपडेट भी दिया है कि वो अभी फ़िलहाल रिलीफ में है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे स्टार के साथ, सारी चीज़ें शेयर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हो चुका है वक्त हमारे जाने का। आशा करती हूँ कि आपको आज के इस नए अंदाज को आपने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा, आपको पसंद आएगा, और पसंद आया है तो जल्दी से फीडबैक में आइए, हाँ जल्दी से चैट बॉक्स में आइए और फीडबैक दीजिए, और ये बताइए कि आपको आज का शो कैसा लगा, आपने इन्जॉय किया कि नहीं, और क्या सुधार की जरूरत है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक हम लोग ट्राई नहीं करेंगे, आपको अपना काम दिखाएंगे नहीं, तो भाई हमें पता कैसे चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। फिलहाल लेती हूँ आपसे विदा, छोड़ जाती हूँ आपको इस बहुत ही प्यारे से सॉन्ग के साथ। तो एंजॉय करते रहिएगा अपना रेडियो ज्ञानसी 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। अरे सुना?
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल, फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।

0: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, आ गई 1 फरवरी जब सुन पाएंगे आप ये नई कड़ी। सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपका अपना आरजे अदनान। आज से हमारी इस श्रृंखला की बहुत अहम कड़ी शुरू हो रही है। दरअसल हम बात करेंगे एक बहुत ही खास अभियान की जिसका नाम है 8वां राष्ट्रीय पोषण माह 2025। यानी इस विषय पर विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे स्वास्थ्य साथी समुदाय के अपने सेहतिया भैया। सो सेहतिया जी, आपका स्वागत करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आरजे अदनान जी, और सभी श्रोताओं का स्वागत है। मुझे खुशी है कि आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं जो हर घर से जुड़ा हुआ है, पोषण और सेहत।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि राष्ट्रीय पोषण माह होता क्या है और इसे मनाया क्यों जाता है।
1: देखिए, राष्ट्रीय पोषण माह पहली बार 2018 में शुरू हुआ था। हर साल सितंबर से एक महीने तक इसे मनाया जाता है। इसका मकसद है लोगों को पोषण के बारे में जागरूक करना, स्वस्थ आदतें अपनाना और सही व्यवहार में बदलाव लाना। अब तक देश भर में 130 करोड़ से ज्यादा पोषण से जुड़ी गतिविधियां हो चुकी हैं। इस साल 12 सितंबर से 11 अक्टूबर तक 8वां पोषण माह मनाया जा रहा है।
0: वाह, यानी ये तो एक बड़े जन आंदोलन की तरह लग रहा है।
1: जी हाँ, यही नहीं, इसमें हर साल कुछ थीम भी होती है। इस बार कुछ खास विषय रखे गए हैं, जैसे मोटापे पर रोकथाम, मतलब कम तेल, कम चीनी और कम नमक का इस्तेमाल, पोषण भी पढ़ाई भी, जिसमें आंगनवाड़ी केंद्रों पर छोटे बच्चों को पोषण के साथ साथ शिक्षा भी दी जा रही है, एक पेड़ माँ के नाम, यानी पोषण के साथ पर्यावरण की भी रक्षा, और इसी प्रकार शिशु और छोटे बच्चों के खाने की सही पद्धतियाँ ताकि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को सही खान पान मिले, और एक बहुत जरूरी बात, पुरुषों की भागीदारी, ताकि घर के पुरुष भी बच्चों और परिवार की पोषण व देखभाल में आगे आए।
0: क्या बात है सेहतिया भैया, और बहुत ही प्रेरणादायक विषय है, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन सेहतिया भैया, इस पोषण माह की अहमियत इतनी ज्यादा क्यों है?
1: देखिए, अच्छा पोषण ही सही सेहत का राज है। अगर माँ, बच्चा और किशोरी लड़कियां स्वस्थ और पोषित होंगी तो देश भी मजबूत होगा। पोषण माह का मकसद है समुदाय को जागरूक करना, सरकारी सेवाओं को और बेहतर बनाना और सही जानकारी हर घर तक पहुंचाना। यह सिर्फ खाने पीने की बात नहीं, बल्कि इसमें पर्यावरण, समानता और सबके सशक्तिकरण की भी बात है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और मुझे पता चला है कि अलग अलग राज्यों में नए नए प्रयोग भी किए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी बता दिए हमारे श्रोताओं को।
1: जी बिल्कुल, जैसे अपने उत्तर प्रदेश को ही ले लीजिए। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के अभिलाषी ब्लॉक जमनहा में सरकार और समुदाय ने मिलकर एक अच्छा मॉडल तैयार किया है। वहां आंगनवाड़ी और आशा बहनों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया, पोषण ट्रैकर जैसे ऐप का इस्तेमाल हुआ, और इससे गंभीर कुपोषण और मध्यम कुपोषण के मामले घटे। इसी तरह स्कूलों में ईट राइट अभियान चल रहा है, इसमें बच्चों को सुरक्षित और पोषित खाना मिलता है। स्कूलों में सेहत क्लब बन रहे हैं, पोषण बगीचे तैयार किए जा रहे हैं, बच्चे खुद सीख रहे हैं कि स्वस्थ रहने के लिए कैसा भोजन जरूरी है। संदेश पहुंचाने के लिए दीवार पर चित्रकारी, स्वस्थ डायरी, कैलेंडर और खेल तक का सहारा लिया जा रहा है।
2: वाह, यानी जो संदेश हम रेडियो पर सुनाते हैं वही धरातल पर भी लोगों की जिंदगी बदल रहा है।
1: बिल्कुल अदनान जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सिर्फ एक महीने का कार्यक्रम नहीं है। इसके जरिए ऐसा माहौल तैयार होता है जिसमें हर घर और हर व्यक्ति अपनी सेहत और पोषण को महत्व देता है।
2: बहुत खूब, आज की बातचीत से मुझे ये समझ आया कि राष्ट्रीय पोषण माह 2025 सिर्फ एक अभियान नहीं बल्कि एक जन आंदोलन है जो हमें सुपोषित भारत की ओर ले जा रहा है।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही। हम सबका ये फर्ज है कि घर घर तक पोषण का संदेश पहुँचाएं। छोटी छोटी आदतें बदलकर हम अपने बच्चों, माताओं और पूरे समुदाय का भविष्य बेहतर बना सकते हैं।
2: पोषण तो जरूरी है ही, लेकिन असल जीवन की शुरुआत होती है माँ की गोद और उसकी देखभाल से। और इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है जो वैज्ञानिक रूप से भी साबित हो चुका है, कंगारू मदर केयर यानी KMC। जरा इसके बारे में बताइए भैया।
1: ये तो एकदम सही बात बोली आपने। KMC, कंगारू मदर केयर, एक खास देखभाल की विधि है, खासकर उन बच्चों के लिए जो समय से पहले पैदा होते हैं या जिनका जन्म वजन कम होता है। इसमें माँ का देखभाल करने वाला व्यक्ति बच्चे को सीधे अपने सीने से चिपकाकर स्किन टू स्किन लगाकर रखता है। इसके फायदे बहुत बड़े हैं। बच्चे के शरीर का तापमान ठीक रहता है, संक्रमण और ठंड लगने का खतरा घटता है, बच्चा माँ का दूध अच्छे से पी पाता है और माँ का रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। यही वजह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसे छोटे या प्री टर्म बच्चों की देखभाल के लिए जरूरी मानक बताया है।
2: सचमुच ये जानकारी तो हर माँ बाप तक पहुँचनी चाहिए। और इसी विषय पर और विस्तार से बात करने के लिए हम सुनेंगे डॉक्टर मनोज पाल जी को, जो कि हमें KMC के बारे में अहम जानकारियाँ देंगे।
3: आज हमारे साथ डॉक्टर मनोज पाल मौजूद हैं, जो कि द फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया में जॉइंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर पाल एक मेडिकल डॉक्टर और पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञ हैं। उन्होंने सुरक्षित ऑपरेशन, मातृ स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आपातकालीन देखभाल और लैंगिक हिंसा जैसे कई अहम मुद्दों पर बड़े स्तर पर कार्यक्रम चलाए हैं और सरकार को तकनीकी मार्गदर्शन भी दिया है। उनकी खासियत है कि वे कार्यक्रम में क्वालिटी और समावेशन का ध्यान रखते हैं, चाहे बात महिलाओं की हो, युवाओं की हो या पूरे समुदाय की हो। उन्होंने विभिन्न स्तरों पर डॉक्टर और मनोचिकित्सज्ञ के रूप में भी काम किया है। लोग उन्हें पीपल्स पर्सन भी कहते हैं क्योंकि वे कठिन परिस्थितियों में भी शांत और सहज बने रहते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर पाल मौजूद हैं और वो हमारे साथ कंगारू मदर केयर पर कुछ बातचीत करेंगे। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
4: बहुत बहुत धन्यवाद
3: सर। हमारा और हमारे समुदाय का पहला सवाल ये रहेगा कि कंगारू मदर केयर आखिर है क्या और इसे भारत के जननी सुरक्षा कार्यक्रम में कैसे जोड़ा गया है।
4: जी, तो आप जानेंगे कि जैसे हमारे यहाँ बहुत से बच्चे समय से पूर्व यानी प्री टर्म पैदा होते हैं या उनका वजन जितना होना चाहिए उससे कम होता है, जिसको हम लो बर्थ वेट कहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कंगारू मदर केयर एक तरीका है जिसके द्वारा बहुत सारा इन्फेक्शन या बच्चों में होने वाला तापमान की कमी हाइपोथर्मिया से बचा जा सकता है। ये बहुत ही लो कॉस्ट, जिसमें कोई कॉस्ट नहीं लगती है, एक तरीका है जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा मान्यता प्राप्त है और भारत सरकार भी इसे अपने कार्यक्रम में लगभग 2014 से शामिल कर चुकी है, जिसकी गाइडलाइंस भारत सरकार द्वारा पहले दी जा चुकी है।
3: सर, दूसरा सवाल ये है कि माँ की छाती से नवजात को चिपकाकर रखने के क्या फायदे हो सकते हैं और ये नवजात मृत्यु को कैसे कम करता है।
4: जी, तो माँ की छाती से नवजात को चिपकाना के बहुत सारे फायदे हैं। अमूमन जब भी बच्चा पैदा होता है तब भी बच्चे को माँ की छाती पे रखा जाता है, जबकि वो अगर वो स्वस्थ होता है तब भी, यानी अगर बच्चा लो बर्थ वेट नहीं है, बच्चा प्रीटर्म नहीं है, तब भी उसे माँ की छाती से चिपकाने के बहुत लाभ होते हैं। लेकिन ऐसे बच्चों में जहाँ वजन कम हो या वो समय से पूर्व पैदा किए हो, यहाँ ये बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे बच्चे हाइपोथर्मिया से, यानी उनका जो शरीर का तापमान है वो गिर जाता है, इस चीज का बहुत संभावना ऐसे बच्चों में रहती है जिसको जिसके लिए ये जरूरी है कि वो माँ के स्तन के पास जो है वो चिपके रहे। इससे माँ का टेम्परेचर और बच्चे का टेम्परेचर बराबर रहता है, तो बच्चे में हाइपोथर्मिया नहीं होता। दूसरा, इससे इन्फेक्शन होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। माँ के शरीर पर जो कीटाणु, जो विषाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो ही बच्चे में जाते हैं और वो बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए बहुत कारगर होते हैं। तीसरा, इससे माँ के साथ बच्चे की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि वो माँ के साथ चिपका रहता है तो वो माँ को ही देखता है, माँ को ही सुनता है, माँ का ही दूध पीता है, तो इस वजह से बच्चे और माँ की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा इसी वजह से ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि माँ का दूध जो है वो बच्चे को ज्यादा मिल पाता है, अमूमन ही देखा गया है। और हम सभी जानते हैं कि सरकार ने बहुत कोशिश जरूर की है, लेकिन अभी भी ब्रेस्ट फीडिंग जल्दी शुरुआत में ही होना तथा पूरे कार्यकाल तक, यानी 6 महीने तक होना, ये संभव नहीं हो पाया है। तो शुरुआती तौर पे ब्रेस्ट फीडिंग करने से माँ और बच्चे दोनों को बहुत फायदा होता है। इसके अलावा अगर लॉन्ग टर्म देखें तो ऐसे माँ को बच्चे, माँ और बच्चे जब साथ साथ रहते हैं कंगारू मदर केयर में, तो बच्चे के न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज जो होते हैं वो कम होते हैं। आगे जाके बच्चे में, ऐसे भी स्टडीज हैं जो कहती हैं कि आगे जाके बच्चे में ओबेसिटी, मोटापा और डायबिटीज जैसी बीमारियां कम होती हैं। तो ये सभी के लिए फायदेमंद चीज है।
3: सर, जैसे आपने बताया कि प्रीटर्म बच्चे के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कंगारू मदर केयर, तो इसे स्पेशल न्यूबॉर्न SNCU यानी स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट और आशा आंगनवाड़ी सेवाओं से कैसे जुड़ता है, मतलब जोड़ा गया है?
4: जी, तो प्रीटर्म बच्चों को कई बार इंक्यूबेटर की जरूरत महसूस होती है। ये वहां के डॉक्टर निर्धारित करेंगे कि उसको इंक्यूबेटर में रखा जाए या माँ की छाती से चिपकाया जाए। अगर मान लीजिए बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है तो उसको कंगारू मदर केयर नहीं दिया जा सकता। लेकिन जहां पर SNCUs हैं, जहां बच्चा स्टेबल है, उसका सांस ले पा रहा है, वैसे दिल की धड़कन सही चल रही है, लेकिन प्रीटर्म है, ऐसे बच्चों को अगर SNCU के साथ कंगारू मदर केयर की सुविधा प्राप्त हो जाए तो ये बच्चों के मोर्टैलिटी को बहुत कम कर सकती है। तो इसलिए सरकार ने भी अभी ये शुरू किया है, मुहिम शुरू की है कि SNCUs के आजू बाजू जहां तक संभव हो पाए वहां पर कंगारू मदर केयर के वार्ड्स बनाए जाएं, जहां महिलाओं को एक प्राइवेसी मिले कि वो अपने बच्चे को छाती से लगा पाए और उनको इस तरह का प्रशिक्षण दिया जा सके कि कैसे कंगारू मदर केयर करना है। तो ये अभी मुहिम चल रही है और जहां नए अस्पताल बनेंगे वहां पर ये SNCU के साथ साथ ही होगा।
3: सर, आपने बताया कि शिशु का वजन और स्वास्थ्य तो कैसे सुधरता है कंगारू मदर केयर से, मगर इसे पोषण अभियान से कैसे जोड़ा गया है?
4: देखिए, जहां लो बर्थ वेट बच्चे की बात होती है तो वहां पर ये संभावना हमेशा रहेगी कि जैसे ही वो अपने न्यूबॉर्न पीरियड से, 28 डेज के पीरियड से बाहर निकलेंगे तब भी वो कुपोषित रहेंगे अगर उन्हें सही पोषण नहीं दिया गया, और कुपोषण की संभावना उनके लाइफ लॉन्ग रहेगी अगर उनके शुरुआती तौर पर उनको सही पोषण ना दिया जाए। तो कंगारू मदर केयर में शुरुआती तौर पे गाइडलाइंस में बताया गया कि शुरुआती तौर पे कैसे बच्चों को पोषण दिया जाए, यानी माँ का दूध ही दिया जाए, और अगर संभव नहीं है तो फिर माँ का एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क दिया जाए, अगर वो भी संभव ना हो तभी फॉर्मूला फीड पे जाया जाए। लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े होंगे तो उनका पोषण नियमित रहे, इसके लिए जरूरी है कि पोषण अभियान के साथ वो बच्चे जुड़े।
3: सर, क्या कंगारू मदर केयर सिर्फ माँ दे सकती है या पिता या अन्य परिवार जन भी किसी भी तरीके से मतलब दे सकते हैं?
4: जी, तो कंगारू के मदर केयर कोई भी दे सकता है। माँ के साथ इसको इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि इसमें एक कंपोनेंट जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग का है, क्योंकि माँ दूध पिला सकती है तो माँ को तो करना ही करना है। लेकिन ये प्रैक्टिकल ये संभव नहीं हो पाता कि सारे टाइम सिर्फ माँ ही बच्चे को लेके मतलब माँ ही बच्चे को चिपका के रखे, तो इसके लिए जरूरी है कि जो परिवार के दूसरे लोग हैं वो भी कंगारू मदर केयर कैसे देना है इसके बारे में जानकारी रखें और दें। एक चीज जो इसमें गौर करने लायक है कि प्रीटर्म बच्चों को ज्यादा हैंडलिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब अलग अलग लोग अलग अलग हैंडल करें, ये ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए परिवार के लोग दो या तीन, जैसे कि सासू माँ हो गई या माँ हो गई, वो अगर इसको, और पिता हो गए, वो अगर इसको करेंगे तो उसके कई बेनिफिट्स हैं, क्योंकि ये होगा फिर प्रैक्टिकली होगा। हम कहते हैं कि मदर के साथ कई बार एक्सटेंडेड कंगारू मदर केयर 8 से 12 घंटे करना पड़ता है, तो प्रैक्टिकली कई बार माँ के साथ ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर इसमें पिता को शामिल किया जाए तो उसके दो फायदे होंगे, एक तो कंगारू मदर केयर हो पाएगा, दूसरा बॉन्डिंग कि जहां हम बात कर रहे हैं, अगर मदर के साथ टच होने पर बच्चे की बॉन्डिंग होती है तो फादर के साथ भी टच होने पर बच्चे की बॉन्डिंग होगी, और ये दो तरफा होगा, बच्चे की भी होगी और फादर की भी होगी। तो ये जरूरी है कि इसमें परिवार के जनों को जोड़ा जाए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए।
3: और अगर मदर कंगारू केयर करें, कंगारू मदर केयर करें, तो क्या वो 12 घंटे तक ही करना होता है? मतलब क्या समय, कितने समय तक करना चाहिए इसको?
4: मैं कह रहा हूँ ये डिपेंड करता है कि 12 घंटे तो कंटिन्यूअस होगा, कि अगर बच्चा मान लीजिए बहुत प्रीटर्म है लेकिन हीमोडायनेमिक स्टेबल है, 32 वीक से कम का है, और उसकी कंडीशन क्या है, 4 से लेकर 12 घंटे तक कहीं भी हो सकता है, शॉर्ट पीरियड होता है, एक्सटेंडेड होता है, तो कहीं तक बच्चे की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा वो कि कितनी देर करना है। लेकिन अगर बच्चे को मान लीजिए एक्सटेंडेड भी करना है, तो जब परिवार होता है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सिर्फ माँ के ऊपर नहीं रहा, माँ बाप और सासू माँ ध्यान रखना पड़ता है उसमें कई बार, क्योंकि अगर आप एक से ज्यादा केयर गिवर के पास जा रहे हो तो ऐसा ना हो कि अगर केयर गिवर साफ सुथरे नहीं है, अगर वो नहा के नहीं आए हैं या कपड़े वैसे हैं, तो उसका उल्टा असर भी हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ केयर गिवर हो और वो इस बात को समझें, इसीलिए शायद फैमिली काउंसलिंग कंगारू मदर केयर में बहुत इम्पोर्टेंट है। जहां तक बात आशा की है, डिस्चार्ज होने के बाद कंगारू मदर केयर कंटिन्यू रहना चाहिए, आशा की विजिट होती है, तो उस विजिट में अगर आशा उनको काउंसल नहीं कर पाएगी या उनके क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाएगी, फॉलो अप नहीं कर पाएगी, तो कंगारू मदर केयर कम्युनिटी में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आशा आंगनवाड़ी को सही ट्रेनिंग देना और उनके फॉलो अप में शामिल करना दो कारगर तरीके होंगे जिससे कंगारू मदर केयर को कम्युनिटी में भी करा जा सकता है। जी
3: सर, ग्रामीण इलाकों में इसे अपनाने में क्या दिक्कतें आती हैं? जैसे CHC, PHC, इनका क्या हल निकाल सकते हैं?
4: देखिए, कई बार दिक्कतें कम्युनिटी में किस तरह की सोच है और किस तरह के वहां पर वैल्यूज हैं उस पे बहुत डिपेंड करता है। अभी भी हमारे यहाँ कई कम्युनिटीज में, कई ग्रामीण इलाकों में ऐसा होता है कि वो अभी भी मदर और चाइल्ड को सेपरेट रखने की कोशिश की जाती है, कि एक बार दूध पिला दिया और बच्चे का डायपर चेंज हो गया तो उसको सेपरेट करने की कोशिश की जाती है। प्री टर्म लो बर्थ वेट में ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन उनको समझाना ये चीज कि ये क्यों जरूरी है और कैसे जरूरी है, ये बहुत अभी आप आज की डेट में बहुत जरूरी है। दूसरा, एक हमारे यहाँ कभी भी अगर हम थोड़ा सा जेंडर रोल्स की बात करें तो कभी भी फादर को बहुत टच नहीं करने देते, खासकर प्री टर्म बच्चा या जब बच्चा छोटा होता है, लो बर्थ वेट होता है, तो लोगों को बहुत डर होता है कि हम इसको पकड़ेंगे कैसे, बच्चे की गर्दन के नीचे हाथ रखना होता है या बच्चे को स्ट्रेट पकड़ना होता है, तो वो डर जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन से या जब आशा या आंगनबाड़ी उनको बताएगी तभी निकाला जा सकता है, और उनको इन्वॉल्व करने से, यानी कि अगर हम KMC की काउंसलिंग कर रहे हैं सिर्फ मदर की करेंगे या सिर्फ मदर और मदर इन लॉ की करेंगे, सासू माँ की करेंगे, तो शायद वो वहीं तक रह जाएगा, वो ज्ञान जो है वहीं तक रह जाएगा। तो जरूरी है कि फादर को, खासकर फादर को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, उनको सिखाया जाए। ऐसा नहीं है कि फादर पकड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन डर, उस डर को कैसे निकाल सकते हैं।
3: जी बिल्कुल। सर, SDG 3 के लक्षणों को पूरा करने में कैसे मदद करता है ये?
4: देखिए अभी SDG 3 का अगर आप देखें तो मैक्सिमम मॉर्टैलिटी जो है हमारी न्योनेटल पीरियड में ही हो रही है अभी भी। भारत सरकार तो अर्ली न्योनेटल मॉर्टैलिटी को लेस देन 10 करने पे काफ़ी जोर दे रही है, बट अभी भी लगभग लगभग 45% जो हमारी मॉर्टैलिटी है वो न्योनेटल पीरियड में होती है। तो हमारा एक गोल्डन रूल होता था कि 1-1-1, यानी सबसे ज़्यादा मॉर्टैलिटी फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट मंथ में, फर्स्ट डे पे, है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न उसमें प्री मैच्योरिटी है और लो बर्थ वेट है। तो अगर हम प्री मैच्योरिटी और लो बर्थ वेट दोनों को एड्रेस कर पाएंगे तो SDG का लक्ष्य जो है वो हासिल करने में हमें बहुत आसानी होगी। तो ये दो मेन रीज़न है न्योनेटल मॉर्टैलिटी।
3: सर आई थिंक सारे सवालों का आपने जवाब दे ही दिया है। बस एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपने बता दिया है कि कैसे माँ बाप और मतलब परिवारजन सहयोगकर्ता बन सकते हैं, लेकिन आप समुदाय को कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि जन्म के तुरंत बाद माँ को, फैमिली को, पिता को क्या करना चाहिए, मतलब कैसे सहयोगकर्ता बनना चाहिए?
4: देखिए जन्म के तुरंत बाद मैं तो यही बोलूंगा कि बच्चा उनका है, वही सबसे बढ़िया देखभाल कर सकते हैं। ये साइंस भी कहती है, ये हमारा कल्चर भी कहता है। तो जन्म के तुरंत बाद बच्चे को मैक्सिमम प्रोटेक्शन देना, उनको माँ के करीब रखना, माँ और बाप के करीब रखना, है ना। ये एंश्योर करना कि उसको फीडिंग मिल रहा है और नेचुरल फीडिंग मिल रहा है। नेचुरल फीडिंग से मेरा मतलब है ब्रेस्ट फीडिंग हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। और ये एंश्योर करना कि बच्चा किसी भी तरीके से हाइपोथर्मिया में, यानी बच्चे को कभी ठंड ना लगे। और इसका सबसे बेहतर उपाय है कि बच्चा स्किन के कांटेक्ट में रहे। इसका एक सिंपल रीजन ये है कि हमारा टेम्परेचर 37, बच्चे को चाहिए 37, स्किन पे टेम्परेचर आया 37, इन्वायरमेंट में टेम्परेचर कुछ भी चल रहा, इसलिए स्किन सबसे बेहतर तरीका है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो उसको मेंटेन करें, साफ सफाई, यानी कि बच्चे, खासकर प्रीमेच्योर बच्चे, बहुत उनका इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं होता है, तो इन्फेक्शन होने की बहुत संभावना रहती है। और इन्फेक्शन रोकने के बड़े सिंपल तरीके होते हैं, आपके शरीर जिससे आप चिपका रहे हैं वो साफ होना चाहिए, बच्चे के कपड़े साफ होने चाहिए, और ज्यादा, बहुत ज्यादा हैंडलिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं हो कि बहुत ज्यादा बच्चे। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। तो जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे तब तक ये बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा होना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा एक चीज और, ऐसी परिस्थितियों में क्लिनिकल डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी होता है, किस बच्चे को कितनी देर के लिए रखना है। किसी को 4 घंटे चाहिए, हमने अभी बात की, किसी को 4 घंटे चाहिए, किसी को 6 घंटे चाहिए, किसी को 12 घंटे चाहिए, किसी को डायरेक्ट ब्रेस्ट मिल्क दे सकते हैं, कहीं नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति में अपने डॉक्टर, अपने नर्स पे विश्वास भी करें कि वो आपके बच्चे के लिए ही सारे काम कर रहे हैं
3: जी।
4: ये इसमें विश्वास करना बहुत जरूरी है।
3: तो सर इसकी अवेयरनेस अभी कम है, इसकी अवेयरनेस और लोगों में फैलाने की ज्यादा जरूरत है।
4: इसकी अवेयरनेस बहुत, अभी बहुत कम है। हम देखते हैं अभी बहुत सारे लोग इस चीज को समझ नहीं पाते, खासकर जब हम बोलते हैं कि 4 घंटे 6 घंटे, तो उनको लगता है कि इसकी क्या जरूरत है।
3: अवेयरनेस कम है तो क्या कुछ मिथ्स भी हैं लोगों के दिमाग में इसको लेके?
4: मिथ्स हैं, मिथ्स, लोग इसके जो इम्पोर्टेंस है वो समझ नहीं पाते। तो जैसे ही मान लो कंगारू मदर केयर आपने अस्पताल में शुरू भी करवा दिया और ये बोल के भेज दिया कि आप घर पे कर लेना, लेकिन क्योंकि उसकी इम्पोर्टेंस लोग समझ नहीं पाते इसलिए वो घर पे जाके करते नहीं है, और बच्चा फिर वापस लैंड करता है OPD में कि बच्चे को इन्फेक्शन हो गया, है ना, बच्चा का वजन कम हो गया। तो इस, ये थोड़ा सा लोगों को शायद समझाने की जरूरत है। इसका नेगेटिव मिथ्स नहीं है बट इसके पॉजिटिव मिथ्स भी नहीं है।
2: सेहतिया भैया और डॉक्टर मनोज पाल जी का धन्यवाद, आपने आज बहुत उपयोगी जानकारी दी। दोस्तों आप भी अपने गांव, अपने घर में इस पोषण माह को सफल बनाइए, स्वस्थ रहिए, पोषित रहिए। अगले कार्यक्रम में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं हूं आपका अपना RJ अदनान, जो कि कहता हूं जाने से पहले फिर हम शपथ लेंगे एक बार वापस से। तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का, सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे।
5: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे।
2: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को
5: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को
2: प्राथमिकता देंगे।
5: प्राथमिकता देंगे।
2: क्योंकि सेहत ही असली धन है।
5: क्योंकि सेहत ही असली धन है।
2: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं
5: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं
2: और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे।
5: और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे।
2: और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
5: और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
2: साफ सफाई और स्वच्छता का
5: साफ सफाई और स्वच्छता का
2: पालन करेंगे।
5: पालन करेंगे।
2: ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
5: ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
2: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे।
5: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे।
2: और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
5: और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
2: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे।
5: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे।
2: ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
5: ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
2: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का
5: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का
2: विशेष ध्यान रखेंगे।
5: विशेष ध्यान रखेंगे।
2: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा
5: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा
2: तभी भारत समृद्ध बनेगा।
5: तभी भारत समृद्ध बनेगा।
2: सेहत सही तो लाभ कई।
5: सेहत सही तो लाभ कई।
0: फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
6: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
0: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे बड़े बूढ़े सभी के लिए।
6: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
0: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत।
7: सुपरहिट गाने इस चैनल पर ही है सुनहरे गाने और कुछ यादें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 बजे से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
2: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
3: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
2: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
3: अधिक व्यायाम ना करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
2: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
3: सावधानी अपनाएंगे, हीट वेव को हराएंगे।
2: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
5: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

0: स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। तहे दिल से आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा शो सुन सहेली में। तो हाजिर हैं आज, और आज जैसा कि आप सभी को पता है कि दिन जो है वो बहुत प्यारा सा दिन है। इस प्यारे से दिन में आज कोई प्यारा सा हमारे साथ भी है, लेकिन कौन है वो,
1: कौन है वो, कौन है वो, कौन है वो,
0: बताओ कौन है वो?
1: किसी को मुझे नहीं लगता है मेरी हंसी के बाद में और मेरी आवाज
0: बताने की जरूरत
1: है, बताने की जरूरत है। जी हाँ, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा, और एज अ गेस्ट आज मैं आई हूँ आपके अपने स्पेशल वाले शो यानी के दोपहर के सबसे पसंदीदा आपके शो सुन सहेली में। और मेरे साथ में मेरी सहेली आरजे अंशिका, जैसे इन्होंने आपको अपना परिचय दे दिया है, वैसे सखी मैं आज आपसे एक सवाल करना चाहूंगी।
0: क्या है वो सवाल?
1: अच्छा, कभी कभी लगता नहीं है कि मतलब मौसम भी लोगों की तरह परिवर्तित होने लगा है, दो दो पल में, मतलब पल में तोला पल में माशा कितने रंग बदलती है, जो स्त्रियों को कहा जाता है, वैसे आजकल के मौसम को दे देना चाहिए टैग वर्ड।
0: दे भी देना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए ना, जैसे आपने अभी बताया ना कि रंग बदल रहा है, तो वाकई मौसम रंग बदल रहा है। मतलब मई जून में ये कहा जाता है कि बहुत तेज वाली गर्मियां होती हैं, बट फिलहाल तो हमें ये लग रहा है कि मई जून में हम अगस्त में पहुंच गए हैं।
1: अगस्त में
0: आई मीन बारिश के मौसम में।
1: अगस्त में नहीं, मुझे तो लगता है ना सुबह सुबह और रात में जब बारिश होती है और जब रजाइयों, मतलब आपको यकीन नहीं होगा मैं जून में रजाई ओढ़ना पसंद करती हूँ, मैं करती भी हूँ, आजकल भी वही कर रही हूँ मैं। जब मेरे को जरा सा भी ठंडी लगती है तो मेरी मम्मा ये कहती है कि ये ऐसी लड़की है, पहली विचित्र प्राणी है इस धरती की जो बरहों मास रजाई लेके लेटती। और सच में मेरे बेड पे आपको रजाई एक साइड में मिलेगी मिलेगी। हाँ, मैं कंबल चादर में नहीं अपनी रात गुजार पाती जब मुझे सर्दी लगती है। कारण ये है कि जब बारिश होती है या ऐसा कुछ सर्द मौसम होता है तो मैं आपको छत पे ही मिलूंगी। और कल तो मेरा भाई मुझे बोल भी रहा था, उसने मुझे को एक रील शेयर की जैसे सभी करते हैं, रात के 2:30 बजे, सोच लो मेरा भाई और मैं क्या कर रहे थे। उसने भेजा, उसमें था कि अगर आपकी बहन आपको चुड़ैल जैसी दिखती तो आपको हाँ हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। फिर वो हनुमान चालीसा का पाठ भी करता है उसमें, फिर उसकी बहन उसको वाकई में ऊपर छत के टाड़ पे नजर आती है चुड़ैल जैसी। मैंने कहा, फिर मेरे से कह रहे सो जाओ, तो हम क्या कैसे सोए, तुम्हें तो बोला मैं चुड़ैल हूँ, ही हूँ। हम लोग का रात में आधे घंटे और चला, मतलब सुबह के 3 हो गए। अब हम लोग को उठ के नहा के अपना दिनचर्या करना चाहिए या सोना चाहिए?
0: दिनचर्या करनी चाहिए,
1: है ना? लेकिन हमने क्या किया, एक दूसरे को डांट के भाग भाग भाग भाग करके सो गए। तो ये होता है बॉन्ड, ये होते हैं रिश्ते। और आज का जो दिन है यानी कि थर्सडे, हम उन रिश्तों पे बात करने वाले हैं जो कि है क्या, ये बताएंगी अंशिका जी।
0: तो आज है हमारा, जैसा कि आप सभी को पता है कि थर्सडे हमारे सीनियर सिटीजंस का दिन होता है, यानी कि हम बात करते हैं हमारे घर के बड़े बुजुर्गों को लेकर। और आप सभी को पता है कि हमने हमारा न्यू सेगमेंट भी स्टार्ट किया हुआ है सुन सहेली में, जो कि है कि एक प्यारी सी पोइट्री और उसके बाद में कुछ रियल लाइफ फैक्ट। तो भाई चलिए आज क्या कर, जैसे कि अभी आरजे आकांक्षा ने कही दिया कि वो हमारी गेस्ट हैं दोपहरिया में, तो शुरुआत आज हम गेस्ट से ही कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे गेस्ट के पास हमारे लिए क्या है।
1: क्या बात है भाई, भारत का जो कहीं ना कहीं एक संस्कार रहा है कि गेस्ट को सबसे पहले थोड़ा सा खास, थोड़ा सा खास वाला फील कराना, तो आपने मुझे पहले मतलब श्री गणेश करने का अवसर

0: तो फिर
1: अब इतना ज्यादा आप इमोशनल कर देंगी तो हम अपनी कविता की लाइन नहीं रोएंगे नहीं कविता की लाइन भूल जाएंगे।
0: नहीं नहीं,
1: और हो सकता है समटाइम्स बोलते बोलते फंबल भी हो जाए मेरे से।
0: नहीं नहीं, ओके ओके।
1: तो लेट्स स्टार्ट द पोयम। और पोयम बस यही इतना कहती है कि बुजुर्ग शान होते हैं घर की हमारी, बुजुर्ग शान होते हैं घर की हमारी, यही कहानी है हमारी और तुम्हारी। बुजुर्गों का जहां किया गया सम्मान, बुजुर्गों का जहां किया गया सम्मान, उस घर में रहता शांति और अभिमान। बुजुर्ग जो हमारे अपने होते हैं, बुजुर्ग जो हमारे अपने होते हैं, उनके दिल में भी सपने होते हैं। मिले संतानों का साथ, यही उनकी इच्छा, करे उनका सम्मान, धरा पर ही हमारी परीक्षा। शिकायतों का दौर खत्म तो करके देखो, बुजुर्गों का उचित मान सम्मान तो करके देखो। मिली उम्मीद तो वह चहक उठेंगे, मिली उम्मीद तो वे चहक उठेंगे, हमारे घर स्वर्ग जैसे महक उठेंगे। सम्मान उनका करना हमारी अभिलाषा, मिले खुशियों का सौगात, यही है आशा। और वाकई जब बुजुर्गों की बात होती है तो अगर इतने में से दो चार भी कृत्य हमने कर लिए तो हमारा जीवन स्वर्ग जैसा हो जाता है।
0: मिले संतानों का साथ, यही उनकी इच्छा, करे उनका सम्मान, धरा पर ही हमारी परीक्षा। शिकायतों का दौर खत्म तो करके देखें हम, उनकी ओर हाथ तो बढ़ा कर देखें हम, अपना कर तो देखें हम। मिली उम्मीद हमेशा पूरी नहीं होती, मिली हुई आपकी उम्मीद हमेशा पूरी नहीं होती, पर उनकी कुछ उम्मीदों को पूरा तो कर कर देखें हम। सपने उनकी आँखों में भी बहुत हैं, सपने उनकी आँखों में भी बहुत हैं, दिल में बस अपनापन पाने की ही एक इच्छा उनके दिल में होती है। दे उन्हें अपना वक्त, रखे हमेशा खुश, दे उन्हें अपना वक्त, रखे हमेशा खुश, क्योंकि ईश्वर हर जगह नहीं होते, इसलिए उन्होंने घर के बुजुर्गों को बनाया है। उनकी आंखों में देखो, वो ईश्वर दिखेगा तुम्हें। बस देखने वाली आंखें होनी चाहिए, बस देखने वाली आंखें होनी चाहिए।
1: और हाँ, उस पे चश्मा बिल्कुल नहीं। हाँ, क्या करूँ, थोड़ा सा आपने इमोशनल कर दिया था, तो अगर मैं मुस्कुराती नहीं तो मे भी शायद मैं थोड़ी सी अश्रु मेरे नज़र आ जाते आपको आंखों में। हाँ, मैं अपनी दादी को बहुत मिस करती, शी लव्स मी अलॉट और आई ऑल्सो लव।
0: अब आपने बात ही ऐसी कर दी, मतलब दादी की का टॉपिक

0: बिल्कुल। तो लिसनर्स, आज हमारा जो आपको ये प्यारी सी पोएट्री बताने का जो एक मीन निकल करके आता है, जो हम आपको बताना चाहते हैं, वो इतना ही है कि जैसे था ना कि इच्छाएं जो होती हैं उनकी, वो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं, वो सिर्फ आपका वक्त चाहते हैं, आपका प्यार चाहते हैं। सो अगर आपके घर में, आपके घरों में जो बड़े बुजुर्ग हैं, उन्हें थोड़ा सा टाइम देने की, थोड़ा सा हील करने की कोशिश करिए कि आप उन्हें प्यार दे सकें।
1: और मैं अगर अपनी पर्सनल तजुर्बात से बात करूं तो यही कहूंगी कि चाहे वो मेरी दादी थी, चाहे वो मेरी नानी थी, दोनों को मैंने देखा कि वो क्या था उनको, कि वो चाहती थी कि शाम के वक्त में, और विशेष करके शाम के वक्त में, जब सारे बच्चे, मतलब सभी लोग अपने अपने काम काज से आते हैं और चाय पे बैठते हैं, उस टाइम पे वो बातें करना पसंद करती थी, वो अपनी तजुर्बों को मतलब साझा करती थी। और ये मेरी दादी का था। और मेरी नानी का अगर मैं कहूँ तो उनके इतने सारे नाती पोते थे कि मतलब आज भी हैं, और वो तो नहीं है फिलहाल हमारे बीच में, तो उनसे सभी पूछते थे कि मतलब अम्मा बताओ मतलब क्या किया जाए, उनसे ज़रूर सलाह लेने जाते थे। तो ये जो सलाह वाला पार्ट है, और उनको अच्छा भी लगता, बस उनको यही इतना चाहिए कि हमारी जो, जैसे कोई भी इंसान है, आप भी कभी बुजुर्ग होंगे, हम भी कभी बुजुर्ग होंगे, तो हम भी यही चाहेंगे कि हमारी जो लाइफ का हमने इतना सब कुछ ज्ञान अर्जित किया है, उसका क्या करूँ, मुझसे कोई पूछे तो मैं उसको बता सकूँ, ताकि उसकी लाइफ आसान हो जाए, ईजी हो जाए। और हम सबसे पहले अपनी चीज़ों को किसको देना चाहते हैं, कोई हमारा अपना हो उसको देना पसंद करते हैं। तो बस इतना ही बुजुर्ग हमसे चाहते हैं, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहते। पूरे दिन भर में आप जब चाय के टाइम पे बैठे हो, रात में तो जाहिर सी बात है उनके आराम करने का वक्त हो, तो वैसे तो बुजुर्गों को नींद नहीं आती, काफ़ी देर से आती है, थोड़ा सा ही वो सोते हैं और फिर सुबह जल्दी से उठ जाते हैं, और इसीलिए शायद कहीं ना कहीं हम चिड़चिड़े भी हो जाते हैं कि सुबह सुबह उठ जाते हो और कोई काम नहीं, आराम किया करो यार, क्यों ऐसे वैसे, ये सारी चीज़ें। बट उनको नींद नहीं होती है, उनके पास में ज़िंदगी का इतना तजुर्बा होता है कि वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। लेकिन यकीन मानिए, जिस दिन वो आपसे खुल के बात करेंगे, उस दिन बहुत प्यारी नींद लेंगे। तो अगर ऐसा कुछ आपके पास में है, लाइफ का इतना बड़ा, इतना कॉस्टली पार्ट, जो आप आज के टाइम में अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे या किसी वेल विशर से भी अगर कोई चीज़ पूछेंगे, तो बदले में वो आपसे कुछ ना कुछ चाहेगा। लेकिन ये वो धन है, ये वो संपत्ति, ये वो खजाना है जो ईश्वर ने आपको दिया है, जो बदले में आपसे सिवाय प्यार के, आपकी खुशियों के, प्यार भी होनी चाहेंगे आपकी खुशियों के, वो कुछ भी नहीं चाहते हैं।
0: मतलब बहुत ही एक, क्या कहूँ, इमोशनल कहूँ या ये कहूँ कि बहुत ही अच्छे वे में आपने समझा दिया कि वो क्या चाहते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें समझना चाहिए। देखिए, कहते हैं ना कि कई बार आप, जब हम किसी इंसान की जगह खुद को रखकर उस सिचुएशन में सोचेंगे, तो शायद अच्छे से समझ पाएंगे कि वो इंसान क्या फील कर रहा है।
1: अब इस जगह पे मैं अपनी क्या ही तारीफ़ करूँ, लेकिन कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा पसंद है खुद की तारीफ़ खुद के मुँह से करना। और वो ये है कि जब मेरे पिताजी बहुत बीमार हुए थे, तो उस टाइम पे उनका जब इलाज चल रहा था, तो आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी हॉस्पिटल में, तो आप एज अ केयर टेकर जाएंगे अपने पेशेंट के।
0: जी।
1: तो वहाँ पे क्या था कि जब मैं उनको कोई भी दवा या कुछ भी देती थी, तो भले ही बाकी लोग चिड़चिड़े हो जाते थे, फैमिली मेम्बर्स, मैडम करते करते एक टाइम पे इंसान बोल जाता है, जाहिर सी बात है। तो उनके साथ में तो बहुत क्रिटिकल मतलब चीज़ें थी।
0: जी, जी।
1: तो फिफ्थ स्टेज था उनके कैंसर का, और हाँ, डॉक्टर का कहना था कि ये चमत्कार, एक मिरेकल है, ये मैजिक है, ये क्या है, वो भी नहीं यकीन मानते थे, क्योंकि फिफ्थ स्टेज का मतलब होता है डेथ। तो मैं अपने आप को पापा की जगह पे रखती थी, और उनकी चीज़ों को खुद पे पहले अप्लाई करती थी, फिर मैं पापा पे करती थी। ये चीज़ है, और ये चीज़ हमें हमारे हर एक रिश्ते में अप्लाई करना चाहिए, हर एक वक्त। आप ये जब सोचते हैं ना कि आप तो प्रायोरिटी हैं, ये तो ठीक है, लेकिन आप सामने वाले से क्या बिहेव कर रहे हैं, ये अगर आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख के करेंगे, तो आप उसके लिए बेस्ट हो जाएंगे, आप उसके मतलब प्रियतम टाइप्स हो जाएंगे, ये समझ लीजिए। हाँ, क्योंकि आप उसके मन का कर रहे होंगे।
0: जी,
1: उसमें थोड़ा सा अपना एडजस्ट करके।
0: बिल्कुल। तो लिसनर्स, आपने अभी सुना कि हम जो आपको समझाना चाहते थे पोएम के माध्यम से, वो बहुत ही अच्छे से आर्जे आकांक्षा ने आपको समझा दिया कि हमेशा जब भी किसी भी सिचुएशन को आपको समझना हो, तो एक बार खुद पर उसे अप्लाई करके ज़रूर देखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ज्ञान जो है वो हमने आपको काफी दे दिया है। चलिए एक प्यारा सा सॉन्ग सुन लेते हैं, और इस सॉन्ग के उस पार आएंगे रियल लाइफ फैक्ट्स को लेकर, और देखेंगे कि हमारे आज के रियल लाइफ फैक्ट में निकला क्या है, मतलब क्या है हमारा आज का वो एक, जो कहते हैं ना कि जिंदगी से चुराया हुआ सच, तो क्या है वो हम जानेंगे, लेकिन इस प्यारे से सॉन्ग के उस पार। तो सुनिए और इंजॉय कीजिए हमारे साथ आपका अपना फेवरेट वाला शो सुन सहेली।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840 3395 84 88 40 35 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक। आप सभी का एक बार पुनः से स्वागत है आपके पसंदीदा शो यानी कि सुन सहेली में। और मैं आज तो भाई अपनी सहेली की बहुत सारी बातें सुन रही हूँ, ऑन एयर आप सुन रहे हैं और ऑफ एयर मैं सुन रही हूँ। और वैसे भी वो सीक्रेट टॉक होता है, वो ऊपर से अगर गर्ल्स टॉक हो तो मोर सीक्रेट, यू नो।
5: आई होप कि मेरी बातें आपको अच्छी लग रही
4: है। यार रियली, अगर मेरे को बातें देखिए जिसकी पसंद नहीं आती है, मैं कोई ना कोई बहाना मार के कल्टी मार लेती हूँ। मैं भाई सीधा साधा फंडा है, मैं अपने टाइम को, अपने दिमाग को, अपने जहन को जाया नहीं करना पसंद करती।
5: यानी कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी।
4: बेशक, अभी आप समझदार हो गई, मैंने आपको इशारों में समझाया और आप समझ गई।
5: संगत का असर हो रहा है।
4: ओहो, संगत का असर हो रहा है, नाइस, गुड।
5: चलिए हम आते हैं हमारे आज के रियल लाइफ फैक्ट्स पे, जो कि आज का रियल लाइफ फैक्ट हमारा पहला क्या है ये जान लेते हैं।
4: पहला प्यार है,
5: पहली बार है।
4: क्या बात है भाई, हमने गाना भी सिखा दिया है हमारी अंशिका जी को। आगे की लाइन गा सकती हैं?
5: जान के भी अनजाना ऐसा मेरा यार है।
4: चलिए, थोड़ी बहुत कमियां हैं लेकिन वो हम बाद में सुधारेंगे। फिलहाल हम सुधारते हैं उस समस्या को जो हमारे, आपके और हम सभी के लाइफ में चलती रहती है, और उसका समाधान लेके हाजिर है आपकी अपनी आरजे अंशिका जी।
5: तो आज हमारा पहला पॉइंट जो हमारे रियल लाइफ फैक्ट में है वो ये है कि अगर इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार करता है तो ये उसके पर्सनालिटी को डेवलप करने में बहुत हेल्प करती है। अगर आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने की बजाय हमेशा इस बात पर लगे रहते हैं कि नहीं मुझ में कोई कमी नहीं है, नहीं मुझ में कोई कमी नहीं है, तो ये आपको मेंटल स्ट्रेस देता है।
4: अच्छा।
5: सच में
4: भाई, फिर मेरे को लगता है मुझे या तो मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा देना चाहिए या तो फिर मुझे सातवां अजूबा, नहीं आठवां अजूबा घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि मैं तो खुद की तारीफ करना बहुत पसंद करती हूँ और मैं ये मानती भी हूँ कि आई एम द बेस्ट।
5: मानना बहुत अच्छी बात होती है आर्जा, सभी कहीं ना कहीं अपने में बेस्ट होते हैं। लेकिन कई बार हमारे अंदर होता है ना कि हमारी कोई गलती है और हम जानते हैं कि वो गलती है, हम गलत कर रहे हैं, बट फिर भी जब कोई हमारी गलती हमें बताता है कि आप ये गलत कर रहे हो और आपको भी अंदर से पता है कि हाँ आप गलत कर रहे हो, लेकिन फिर भी हम उस चीज को बार बार ये करते हैं, अरे नहीं वो मेरी कमी नहीं है, वो मेरी मुझ में कोई कमी नहीं है, वो गलत है।
4: ओ, ये वाला गलत।
5: आप बेस्ट हैं ऑफ कोर्स, मतलब सभी होते हैं, और खुद के अंदर एक ये वाली फीलिंग भी होनी चाहिए कि मैं बेस्ट हूँ।
4: बिल्कुल सही बात है भाई, मजाक से हटके अब आते हैं पॉइंट पे, और ये बिल्कुल सही सुझाया आपने कि हर जगह पे ये तो मानना बेस्ट है कि हम बेस्ट हैं, और वाकई होते हैं, क्योंकि ईश्वर की बनाई हुई कोई भी अलंकृति कभी भी खराब हो ही नहीं सकती। अगर वो कबाड़ भी है ना तो उसका भी एक स्थान है, उसका भी एक काम है। अगर मान लीजिए वो कबाड़ है और सर्दियों के दिन में मान लीजिए कोई कुर्सी खराब हो गई है, अगर आपको मतलब बहुत ठंडी लग रही है और आपको आग सेकना है तो क्या आप उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हो? फिर वो आपका कबाड़ नहीं है ना, उसको आपने यूटिलाइज किया। तो वही भगवान ने जब बनाया, किसी को भी बनाया, जैसा भी बनाया, अपने अपने स्थान पे उचित तरीके से भेजा और जिम्मेवारी के साथ में भेजा, तो ये चीज़ है। दूसरी बात ये कि जब हमारी लाइफ में कोई भी गलत चीज़ होती है और हमें मालूम है तो हमें वही स्वीकार लेना चाहिए, और स्वीकारने से ये होता है कि पहली बात तो हमें ये भान होता है कि हम गलत कहें, दूसरी बात हमें अपनी गलतियों को ढूंढने में आसानी होती है। जब इंसान गलतियों को ढूंढने पर आ जाता है तो फिर वो अपनी अच्छाइयों को तब्दीली ला सकता है।
5: बिल्कुल, कहीं ना कहीं ऐसा कहते हैं ना कि जब गलती, देखिए गलती होना बड़ी बात नहीं होती क्योंकि हम इंसान हैं, हो सकती है हमसे गलतियां, लेकिन अपनी गलतियों पर बिल्कुल वो हो जाना कि नहीं नहीं नहीं मुझसे नहीं हुआ है और मैंने जानबूझ के नहीं किया है, बस हो गया है, तो ये वाला एक जो एटीट्यूड होता है ये आपको मेंटली बहुत डिस्टर्ब करता है। ऐसा माना जाता है कि जब हम हमारी गलतियों को स्वीकार नहीं करते तो वो धीरे धीरे हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक गिल्ट कह लें हम, या कह लें कि कुंठा जो एक होती है वो बहुत ज्यादा इंसान के अंदर हो जाती है। और ऐसे ही इंसान जो अपने आप को एक ये समझने लगते हैं कि नहीं मुझ में कोई कमी नहीं है या मैं गलत नहीं हूँ, उनमें डिप्रेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं
4: और वो अपनी ही बातों में उलझ कर रह जाते हैं।
5: उलझ जाते हैं।
4: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सटीक बात आपने कही आर्जे अंशिका जी, और इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि भाई आप बहुत बड़ी महान वाली विचारक है और आपसे बातें करना मुझे काफी पसंद आता है, और जब भी मैं आपके साथ में शो में होती हूँ मेरे पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी का डोज होता है बिकॉज ऑफ योर ऑरा। थैंक यू सो मच।
5: ओके थैंक यू। तो हमारी ये थैंक यू वाली जो प्रथा है वो तो चलती रहेगी, क्योंकि भाई देखिए दो सहेलियां जब मिलेंगी तो बहुत सारी बातें होंगी और बहुत सारी बातों में कुछ बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें भी आएंगी निकल करके, जो स्पेशली हमारे लिसनर्स सुनेंगे और उन्हें बहुत ज्यादा काम आएगी। तो अब चलते हैं हमारे इस प्यारे से रियल लाइफ फैक्ट के साथ होते हुए दूसरे पॉइंट पर।
4: और दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी क्योंकि ये मेरी लाइफ का रियलिटी मानी मेरी, क्या मुझे लगता है आप में से भी ऐसे कई सारे लोग होंगे जो इसको मेरी तरह लेते होंगे, यानी कि गुस्सा। जब हम गुस्सा करते हैं तो क्या होता है कि हम या तो बहुत ज़्यादा अपनी, एक तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है, हम अपनी चीज़ों को हार्म करते हैं, हर्ट करते हैं, बट हमारे जैसे भी कुछ लोग होते हैं जिनको जब गुस्सा आता है तो वो दो पल का आता है, एक पीक लेवल होता है गुस्से का। और मैं तो आपको बता रही हूँ कि मेरे साथ में कोई बुरा करता जाए मैं माफ करती जाऊंगी, करती जाऊंगी। हाँ, 4-5 दफा उसको बताऊंगी भी, अलर्ट भी करूंगी उसको, वार्निंग भी दूंगी कि ये तुम कर रहे हो या कर रही हो, सुधर जाओ, संभल जाओ। अगर वो नहीं कर रहा है, नहीं सुधार ला रहा है अपनी चीजों में, तो फिर मैं क्या करती हूँ, अपनी चीज को बूस्ट करती हूँ और उससे थोड़ी थोड़ी थोड़ी दूरी बनाती हूँ। और फिर सफाई तो मैं देना ही मैंने छोड़ दिया है, कुछ और चीज ऐसे घटना हुई मेरी लाइफ में तो मैंने लोगों को सफाई देना ही खत्म कर दिया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सफाई हर किसी को देना चाहिए जब वो आपको समझ नहीं रहा सामने से। तो इससे क्या हुआ कि जब हमारा गुस्सा हम पे आता है तो हम कई सारे लोग होते हैं जो उससे पुश करते हैं अपने आप को, अपनी चीज़ों को इनक्रीज करने में, हील करने में, या फिर अपनी स्ट्रेंथ को और स्ट्रांग करने में। तो क्या होता है कि गुस्सा अगर सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए तो वही इंसान को आगे बढ़ने की ताकत भी देता है और ताकत बन सकता है, जैसा कि मेरे साथ होता है। हर बार गुस्सा बुरा नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी ये हमें अपनी सीमाएं तोड़ने और खुद को साबित करने के लिए भी आग देता है। समझ रही ना, आग भड़का रहे हैं लेकिन हम दूसरे पे नहीं भड़का रहे हैं, हम अपने अच्छी चीजों के लिए भड़का रहे हैं। इसलिए कहते हैं ना, आग लगाओ लेकिन दूसरों में नहीं, खुद के अंदर आग लगाओ, जो आपको बूस्ट करे, जो आपको हील करे, जो आपकी स्किल्स को डेवलप करे और आपको निखार के एक अच्छा पॉजिटिव वे प्रदान करे। और जब पॉजिटिव वे में गुस्सा हमें इस तरह से पुश करता है, जब कोई हमें कमजोर समझता है तो गुस्सा हमें मेहनत करने की प्रेरणा देता है। असफलता पर आया हुआ गुस्सा इंसान को दोबारा उठकर और मजबूत बनने की ताकत देता है। और अगर कोई आपके साथ में धोखा कर रहा है या कोई अन्याय कर रहा है, ठीक है, उस टाइम पर अन्याय देखकर आया हुआ जो गुस्सा आता है आप में, वो बदलाव लाने की हिम्मत देता है।
5: ओके,
4: होता है कि नहीं होता है, जब आपके साथ में अन्याय होता है तो आप जब उसके खिलाफ खड़े होते हो तो आपकी लाइफ में बदलाव होता है कि नहीं होता है?
5: बिल्कुल होता है।
4: ये हुआ, इसके बाद में जब खुद की गलतियों पर गुस्सा आता है तो उससे क्या होता है, आप बताएंगी?
5: खुद की गलतियों पे,
4: हाँ, जब
5: खुद की गलतियों पे हमें गुस्सा आता है तो कहीं ना कहीं हमें हमारी उन गलतियों को, मुझे लगता है कि ओवरकम करके खुद को बेहतर बनाने में एक हेल्प मिलती है।
4: वेरी ट्रू। हाँ, तो वो हमारे आत्म सुधार का कारण बनता है। और इसके बाद में अगर मैं कुछ कहूँ तो यही कहूंगी कि गुस्सा तब तक ताकत है जब तक वो आपको मेहनत करने पर मजबूर करे, ना कि रिश्तों को तोड़ने पर। या फिर ये भी आप मान सकते हैं कि जिस गुस्से को लोग बर्बादी समझते हैं, उसी गुस्से को अगर धैर्य और मेहनत में बदल दो तो वही सफलता की सबसे बड़ी चिंगारी हो सकती है।
5: ओके, यानी कि कहीं ना कहीं हमारी जो सक्सेस होती है वो हमारे गुस्से से जुड़ी हुई होती है, अगर हम उसे सही जगह यूटिलाइज करें।
4: बेशक।
5: तो लिसनर्स, और उसी पे मैं चैट रूम में जाना चाहूंगी, बड़ा एक अच्छा सा मैसेज आया है के गुप्ता जी का, तिरंगा कॉम्प्लेक्स है लिखते हैं, लेकिन आरजे आकांक्षा जी को तो कभी गुस्सा आता ही नहीं है।
4: हाँ ये बात तो सत्य है, क्योंकि मैंने अभी बोला ना कि मैं कई दफ़ा इंसान को मौका देती हूँ और उसको ये फील भी नहीं होने देती हूँ कि मैं नाराज़ थी, बस थोड़ी थोड़ी थोड़ी करके दूरी बना लेती हूँ, अपनी चीज़ों को मैं फिर संवारने लगती हूँ और फिर एकदम से ख़त्म भी हो सकता है समटाइम्स पे। मैं गुस्सा करना पसंद नहीं करती, इसलिए मैं दूरी बना लेती हूँ चीज़ों से, क्योंकि गुस्सा देखिए ना हमारे को फ़ायदा देगा ना सामने वाले के लिए वो बेटर है। मैं क्या, कोई भी अगर गुस्सा करेगा तो वो कहाँ जाएगा, रिश्तों पे जाएगा, तो उससे अभी जो मैंने आपको बताया जिस हिसाब से, तो उससे बेहतर है कि आप रिश्तों को बिगाड़ने से बेहतर है कि आप अपनी चीज़ों को सुधार लो, आप अपनी चीज़ को सुधार लो, खुद को सुधार लो और खुद की चीज़ों में, खुद की दुनिया में इन्वॉल्व हो जाओ। अगर सामने वाला नहीं सुधर रहा है तो फिर वो उसकी प्रॉब्लम है, नॉट योर।
5: बिल्कुल, कहीं ना कहीं हमारे गुस्से को, हमारी जो एक होती है ना बातें, अपनी बातें होती हैं, कभी भी खुद को आप हमेशा हील करने की तरफ जाइए, खुद की कमियों को दूर करने की तरफ जाइए। कोई आपको नहीं समझ रहा है या कोई आपको, या कई बार होता है ना कि हमें वैसे रिस्पॉन्ड नहीं मिलते हैं जैसा हम चाहते हैं किसी इंसान से या किसी भी चीज से, तो बस आपको ये सोचना है कि ठीक है नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा खुद को बेटर करने की तरफ काम करें,
4: क्योंकि हर इंसान अपनी दुनिया सबसे पहले है।
5: बिल्कुल, आप अपनी दुनिया है, अपने अपनों की दुनिया है, इसलिए खुद को सहेज कर रखें। और चलिए इस प्यारे से थॉट के साथ में हम जाएंगे और वापस आएंगे बस एक बहुत ही छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। आज का हमारा जो टॉपिक है उसे हम शुरू करेंगे और आज हमारा टॉपिक भी बहुत ही अच्छा सा है, यूनिक है। लेकिन क्या
4: मैं
5: है?
4: ये कहूंगी कि टॉपिक शुरू करने से पहले मुझे लगता है कि हमें एक दफा चैट बॉक्स में झांक लेना होगा, लेकिन पहले एक शॉर्ट सा म्यूजिकल ब्रेक बनता है।
5: ओके ओके, तो चलिए सॉन्ग सुनेंगे और वापस आएंगे, सीधा चैट बॉक्स में चलेंगे।
4: चलेंगे, कॉफी मतलब चाय पानी लेके चलना पड़ेगा या खाली हाथ जाना है?
5: हो सकता है लिसनर्स ही दे दें कुछ चाय पानी।
4: है क्या बात है, भुखड़ों की सेना में लिसनर्स का सहारा है, क्या बात है, यही तो जिंदगी और जिंदगानी हमारा है।
5: वाह, देखा लिसनर्स, ये मतलब चलिए सॉन्ग सुन लेते हैं।
4: हाँ अब ज्यादा हो जाएगा। स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।

0: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
0: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
0: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: हाँ जी, तो एक बार पुनः से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं यानी कि आपकी आरजे आकांक्षा, और मेरे साथ में है आपकी आरजे अंशिका, और शो आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा सुन सहेली। और जब सहेलियों की बात होती है तो भाई सहेलियों के पास में बहुत सारे गॉसिप भी होते हैं, है ना?
1: बिल्कुल, और हमारे पास तो बहुत सारी है।
0: हाँ, और हमारे अलावा हमारे पास में जो हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स मौजूद हैं, यानी कि जो चैट बॉक्स में हाजिर हैं, और काफ़ी देर से काफ़ी भागा दौड़ी दिख रही है चैट बॉक्स में। भागा दौड़ी का मतलब ये नहीं कि मतलब भाग रहे हैं, उन कोई किसी बात को लेकर के बात कर रहा है, कोई किसी बात को लेकर के, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है,
1: हार्ट्स भेज रहा है।
0: हाँ, तो वही बात है ना कि सब भागा दौड़ी है, जैसे हम अपनी लाइफ में नहीं देखते हैं डेली वाले कि कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मुझे जस्ट वैसा वाला फील हो रहा है कि मैं मार्केट में उतरी हूँ और बस कुछ खरीदने जा रही थी, लेकिन मुझे चलते फिरते लोग दिखे और उसमें बहुत सारी चीज़ें दिखी, तो जस्ट ऐसे कुछ फील हो रहा है। तो कृपया करके आप मुझे बताएं कि हमारे चैट बॉक्स की जो हलचल है वो किस तरह की है।
1: हलचल इस तरह की है कि अगर हम देखें तो सबसे पहले तो सब में बहुत सारी बातें हो रही हैं, हमारी टॉपिक्स को लेकर बात हो रही है, और थोड़ी हंसी मस्ती भी हो रही है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हमारे लिसनर्स कौन कौन से आ चुके हैं। तो यहाँ मैं देख रही हूँ सबसे पहले जो कि आ चुकी हैं अनुष्का जी, हमारी अनुष्का जी, और लिख रही है गुड आफ्टरनून मैम दोनों मैम को।
0: ओके, गुड आफ्टरनून टू यू डियर।
1: दीपांशी तिवारी जी आ चुकी हैं, लिखती हैं गुड आफ्टरनून मैम, कैसे हो आप?
0: बिल्कुल चंगा से, और मुझे लगता है कि आप भी बहुत भली चंगी होंगी।
1: और यस मैम भी लिख रही हैं, लगता है इन्हें हमारी कोई बात अच्छी लगी है।
0: यस मैम, यस मैम, पसंद आई मुझे बात, समझ आई मुझे बात, यस मैम, यस।
1: ओके,
0: हाँ आगे बढ़ते हैं। मुझे आपको हंसाना बड़ा अच्छा लगता है, और एक्चुअली पता है ना लिसनर्स, मैं आपको बता दूं, ये बड़ी गंभीर हमारी मित्राणी है, ये जब मैं इनके साथ होती हूँ तभी हंसती हूँ, मुझे देखती है तो मैं बस पसंद करती हूँ उनको हंसते हुए देखना।
1: ओके, थैंक यू। के गुप्ता जी आ चुके हैं जो कि हमें तिरंगा कॉम्प्लेक्स से सुनते हैं, लिख रहे हैं आरजे आकांक्षा एंड आरजे अंशिका जी नमस्कार, कैसे हैं आप दोनों?
0: कैसे हैं आप बताइए, हमने तो बता दिया अपना वाला।
1: मैं तो बहुत अच्छी हूँ, हंस रही हूँ फिलहाल। और ये भी लिखा है कि हमको भी नींद नहीं लगती है, अच्छा नहीं आती है, लगता है मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ।
0: अरे ऐसा बताएंगे, हम भी उसी कैटेगरी में आते हैं, तो मतलब हम दोनों लोग बूढ़े हो चुके हैं, और भी कोई हो अगर तो वो भी बता सकता है कि कौन कौन हो गया है जवानी में ही बूढ़ा। हाँ, एहसास हो रहा है, ये होता है ना, एक तरह से भ्रम होता है इंसान को। हाँ, वो फीलिंग आ रही है, क्योंकि भाई सर्दी, कहीं ना कहीं गर्मियों के मौसम में सर्दियों का आपको जब एहसास होता है तो आपको नींद बड़ी तगड़ी आती है, लेकिन हमारी नींद उड़ी हुई है क्योंकि हम लोग हैं उस मौसम को फील करने वालों में से, तो जाहिर सी बात है।
1: और इसी के साथ के गुप्ता जी ने बहुत सारे फ्लावर्स हमारे लिए भेजे हैं, थैंक यू सो मच। और इसके बाद में मनी शर्मा जी भी आ चुके हैं जो कि ब्यूटीफुल सॉन्ग लिख रहे हैं, और साथ ही साथ में ओके स्टार्स भेजे हैं उन्होंने बहुत सारे, और केक भेजा है, बहुत सारे हार्ट्स भेजे हैं। और दीपांशी जी अगेन लिख रही हैं वाओ वेरी नाइस मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
0: सब तो समझ आए, केक कौन खुशी भेजी, नहीं याद तक नहीं हम जान पाए, हमें पूछे के हमने मनी शर्मा जी से, तो तनी आप प्लीज बताओ जाए हमका कि आपने किस खुशी में हमको केक भेजा है, कहीं आपका बर्थडे है, हमारा बर्थडे है, अंशिका जी का बर्थडे है, आपको पता कैसे चला, किन सूत्रों से आपको पता चला कि केक आपको भेजना चाहिए?
1: अज्ञात सूत्रों से। ओके, और रामकृष्ण नंदन जी भी आ चुके हैं, लिखते हैं गुड आफ्टरनून डियर आरजे आकांक्षा मैम
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: सबलू सावन जी आ चुके हैं जो कि हमें बोरीवली बम्बई से सुनते हैं, और लिख रहे हैं
0: बम्बई से सुनते हैं, कहाँ से सुनते हैं?
1: बम्बई।
0: ओके, बम्बई से सुनते हैं, हमें लगा मुंबई बोलेंगे आप, तो हमें दोनों का मिश्रण हमने कर दिया और हमने बोल दिया बम्बई से सुनते हैं।
1: तो चलिए लिखते हैं शुभ दोपहर आरजे आकांक्षा जी एंड अंशिका जी, शुभ दोपहर आपको भी। ओके, तो हमारे लिसनर्स और बहुत सारी बातें भी कर रहे हैं, तो बातें थोड़ी सी कम करिए,
0: आपने किसी को मिस कर दिया है, आपको दिख नहीं।
1: प्रीति शुक्ला जी भी आ चुकी हैं जो कि हमें बहराइच से सुनते हैं।
0: ओके, और क्या बोला है?
1: और साथ में उन्होंने सबसे पहले बोला है आरजेस को शुभ दोपहरिया।
0: हाँ, तो ये कौन बोलेगा?
1: अब क्या मिस किया मैंने?
0: शुभ दोपहरिया भाई, सुन सहेली का फ्रेम वाला वर्ड।
1: ओ हाँ, देखिए आपकी बातों में मैं ऐसा घूमी हूँ कि मैं भूल गई।
0: गुम है किसी के प्यार में,
1: गलत, गुम है किसी की बातों में। खैर चलिए, देर आज दुरुस्त आए, तो बोल देते हैं शुभ दोपहरिया। तो एक साथ एक ही फ्रेम में हम दोनों बोल देते हैं शुभ दोपहरिया। शुभ दोपहरिया लिसनर्स, और प्रीति जी आपको भी, और लिख रही हैं मैम मेरा कोई तो बहुत ही क्या बहुत ही नींद, अच्छा मेरे को भी बहुत ही नींद आती है, बताओ मैं क्या करूं। चलिए आरजे आकांक्षा जी बताइए कि इन्हें बहुत नींद आती है तो ये क्या करें?
0: गाना लगाइए और उस पर डांस करिए, गाना होगा चम्मा चम्मा बाजे रे मेरी पैजनिया, क्योंकि भाई शादियों का सीजन चल रहा है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करिए, और कभी भी आप बुलाई जा सकती है, किसी की बुआ हो सकती है, किसी की दीदी हो सकती है, किसी की मामी हो सकती हैं, और हमारी तो आप क्या ही बोले,
1: मित्राणी है ही। हाँ, ऐसा ही कुछ बोलना चाहती थी आप?
0: नहीं, मैं बताना चाह रही थी ना, मित्राणियों पे ज्यादा बिल फटता है फिर।
1: चलिए अब आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हमारा दिन हमारे सीनियर सिटीजन का, यानी घर के बड़े बुजुर्गों का होता है। और एक जो थॉट कह लें या सीख कह लें, घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि खाली दिमाग यानी कि शैतान का घर।
0: तो फिलहाल मैं भी आज बुजुर्गों में शामिल हो चुकी हूँ, क्योंकि गुप्ता जी भी शामिल हो चुके हैं और हमारे प्रीति शुक्ला जी भी शामिल हो चुकी हैं। नहीं नहीं, आप अभी नहीं शामिल हुई हैं। अच्छा, आप बची हुई हैं। या, या, और आपके अलावा हमारी दीपांशी जी हो गई, मनी शर्मा जी हो गए, अनुष्का जी हो गई, ये लोग भी नहीं अभी शामिल हुए। और बाकी जो हमारे लिसनर सुन रहे हैं, हमें लग रहा है वो भी नहीं शामिल हुए होंगे। बस तीन चार ही यहाँ पे, क्या बोलेंगे, गांधी नहीं, नहीं ज्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मन कर रहा बोल देते हैं, गांधी जी के तीन बंदर, उनमें है केके गुप्ता जी, एक मैं खुद और एक हमारी प्रीति जी। भाई आप, मैं ज्यादा बोलती हूँ, मुझे मालूम है, माफ करिएगा, मैं ऐसी ही हूँ। तो चलते हैं, फिलहाल जान लेते हैं कि क्या खास है जो हमें सीखना है।
1: वो ये है कि देखिए क्या होता है ना, कि घर के बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनके पास ज्यादा काम नहीं होता है। हम हमेशा उनसे ये कहते रहते हैं ना कि अरे आप खाली हो तो कोई बात नहीं, आप आराम करो। लेकिन कोई कितना सोएगा, कितना आराम करेगा? तो कहीं ना कहीं अकेलेपन के साथ जो ये दिमाग का खालीपन होता है ना, यानी कि कोई काम ना होना, ये धीरे धीरे उनके अंदर एक गैप को मेंटेन कर देता है। कहीं ना कहीं उनकी मेंटल हेल्थ जो होती है वो इससे बहुत ज्यादा बिगड़ती है, क्योंकि धीरे धीरे उन्हें ये फील होने लगता है कि अरे मैं तो बेकार हूँ, मैं तो कोई काम नहीं कर सकता हूँ, अब तो मेरे पास लाइफ में कुछ करने के लिए है ही नहीं। तो आज हम आपको कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसी टेक्निक्स बताना चाहते हैं जिनसे कि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग न सिर्फ खुद को बिजी रख सकते हैं बल्कि खुश भी हो सकते हैं, और इससे उनकी मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी।
0: मुझे जानना है मेंटल हेल्थ कैसे सुधारते हैं, जल्दी बताइए।
1: आपको जानना है कि मेंटल हेल्थ कैसे सुधारते
0: हैं? बिल्कुल, मैं भी खलिया रहूं।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: चलिए तो बता ही देते हैं।
0: हाँ, मैं, पता है, मैं अपने मोहल्ले की बुआ जी से शांति से गई थी काम मांगने
1: जी।
0: हाँ, लेकिन उन्होंने कहा मेरे घर में अशांति हो जाएगी अगर तुम आ जाओगी। मुझे भगा दिया।
1: ये तो गलत किया
0: है ना। हाँ? तो आप बता दो फिर मुझे क्या करना चाहिए।
1: ओके, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास जो है वो ये है कि उन्हें घर की छोटी छोटी चीजों में अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई काम कर रहा है, जैसे बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, अपने कामों को खुद करना, यानी कि अपने बिस्तर को आप ठीक कर लीजिए, अपने पीने के पानी को आप रख लीजिए, या अपने कपड़े अगर आप वॉशिंग मशीन में साफ कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है उससे, कोई हेल्थ इशू नहीं हो रहा है, या आप थक नहीं रहे हैं, तो आप कर लीजिए। और दूसरी बात है कि किचन के छोटे मोटे कामों में हाथ बटा दीजिए, मतलब वो काम जो करने में आपको कोई फिजिकली पेन या कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो।
0: थैंक गॉड आपने क्लियर कर दिया, वरना फिर मैं तो सोच रही थी घर की छोटी छोटी चीजों में खुद को बिजी रखना है, मतलब अजवाइन के डिब्बे को उठा के उसके सारे दानों को गिनना है, ऐसे मेथी के दानों को गिनना है, उन सभी छोटी छोटी चीजों में खुद को बिजी रखना है।
1: ये सिर्फ आप समझ सकती हैं। मतलब देखा आपने लिस्टनर्स, इसको कहते हैं कि दिमाग जो है वो कहाँ से कहाँ जा सकता है, और इस तरह इसका ये अर्थ सिर्फ आरजे आकांक्षा निकाल सकती
0: है। थैंक यू सो मच। वैसे मैंने जब निकाला तो मैंने कहा मैं खुद ही क्यों निकालू, मैं आप सबको भी बता ही देती हूँ।
1: जी
0: जी, चलते हैं आगे बढ़ते हैं अंशिका जी के साथ।
1: जी बिल्कुल, कहने का मतलब ये है कि देखिए छोटे छोटे काम, इन द सेंस कि कई बार हम किचन में सब्जी काट सकते हैं, मटर छील, कहने का मतलब ये है कि खुद को बिजी रखने के लिए इस तरीके के छोटे छोटे काम हमें करने चाहिए।
0: किचन में ही सब्जी क्यों काटूं, मैं तो ड्राइंग रूम में बैठ के काटूंगी।
1: अरे कहीं भी काटे, मेरा मीन था कि सब्जी, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ।
0: okay.
1: कि इस तरीके के छोटे छोटे काम आप कर सकते हैं।
0: हाँ, वरना मैं मम्मी अगर मेरे से कहती कि किचन में नहीं आपको यहाँ काटना है, मतलब आंगन में या बरामदे में कहीं भी, तो मैं तो कहती आरजी अंशिका ने मुझसे यही बोला था।
1: और एक बहुत ही अच्छा सा फनी वाला तरीका बताते हैं अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए, जो कि होते हैं कि आप लूडो खेल सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सुटको खेल सकते हैं, जो कि पेपर में आती है ना पहेली टाइप की।
0: ओके, सुटको मतलब सुटक जाना है। सुटको बोलते हैं उसको, सुटको नहीं बोलेंगे वरना हम सुटक जाएंगे।
1: वाह, मैं वही बोलना चाहती
0: नहीं, आप बोली सही थी, मैंने आपको फिर से घुमाया है।
1: आप घुमाएं और हम घूमे और लिसनर्स आप भी हमारे साथ घूमे, क्योंकि घूम के बहुत मजा आ रहा है।
0: घूमर रे घूमर। चलिए आप तो क्या नहीं छेड़ूंगी मैं, बहुत हो गया।
1: नहीं नहीं आप छेड़ सकती हैं, मुझे अच्छा लगता है।
0: ओके,
1: कहने का मतलब ये था कि देखिए जो पहेलियां सॉल्व करना होता है वो सिर्फ इस बात से नहीं जुड़ा होता है कि हम एंटरटेन होते हैं, उससे हमारा जो मेंटल एक बैलेंस होता है वो ठीक होता है। और ये माना जाता है कि अगर आप इसे अच्छे से खेल सकते हैं, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उन्हें सॉल्व करने में, तो इससे आप डिमेंशिया से बहुत दूर रहते हैं।
0: ये डिमेंशिया क्या है? वैसे तो मेरे जीवन की पहेली है मेरी सहेली, लेकिन ये डिमेंशिया उसके साथ में आई हुई है तो मैं जानना चाहूंगी।
1: डिमेंशिया एक ऐसी कंडीशन होती है साइकोलॉजी में जिसमें कि इंसान चीजों को भूलने लगता है।
0: ओहो, ये तो मेरे साथ में बहुत दफा होता है। इसका मतलब मुझे अगर ये रोग को करना है दफा तो मुझे खेलनी होगी पहेली।
1: यस
0: ओके।
1: तो कहने का सेंस ये है कि डिमेंशिया का जोखिम जो होता है स्पेशली ये बड़े बुजुर्गों में ज्यादा होता है तो वो कम हो जाता है।
0: क्या बात है, मैं बुजुर्गियत में आ चुकी हूँ। बधाई हो आरजे आकांक्षा, तुम बुजुर्गियत में प्रवेश कर चुकी हो।
1: ओके, और इसी के साथ दरक्षा अंसारी जी आ चुके हैं, लिखते हैं गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून दरक्षा जी। और दूसरा हम बताना चाहते हैं कि कुछ ऐसे सोशल तरीके भी हैं। सोशल तरीकों का मतलब है कि कई बार आप अपने किसी फ्रेंड से मिलने जाइए या अपना एक रूटीन बनाइए कि हम शाम को पार्क घूमने जाएंगे, फिर मंदिर जाएंगे। देखिए ये सिर्फ इसलिए नहीं है, बहुत लोग कहते हैं कि अरे बुजुर्ग हो गए तो क्या मंदिर और सत्संग ही, वो मतलब नहीं है। लेकिन इस एज में जब आप सीनियर सिटीजन की एज में होते हैं वहाँ मेंटल एक पीस की जरूरत होती है, और मुझे लगता है कि मेंटल पीस अगर आपको चाहिए तो अध्यात्म से बेहतर कुछ भी नहीं होता है एक मेंटल पीस के लिए। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि मंदिर जाना, सत्संग में बैठना, ये सब करना चाहिए। इससे एक पॉजिटिव आपकी हेल्थ पे इफेक्ट जो पड़ता है वो पॉजिटिव पड़ता है। और मैं आपको बताऊं कि आजकल मैंने ये देखा है कि यंगस्टर्स बहुत पार्ट लेते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, ऐसी सत्संग वगैरह में जाते हैं, क्योंकि मेंटल पीस की जरूरत कहीं ना कहीं सभी को।
0: तो मैं खुद को किस कैटेगरी में रखूं पहले तो मुझे ये क्लियर करो भाई, मैं समझ नहीं पा रही हूं। मैं
1: आप सभी कैटेगरीज में आती
0: हैं। हैं
1: हैं,
0: इसका मतलब मैं आठवां अजूबा हूं?
1: डेफिनेटली।
0: ओके थैंक यू, पर मैं कुछ भी कर
1: सकती। 7 अजूबे इस दुनिया में और 8वां हमारे पास है।
0: हाँ जी, आरजे आकांक्षा है।
1: आई होप आप बुरा नहीं मानेंगे।
0: बिल्कुल नहीं भाई, मैं ऐसी चीजों को पसंद करती हूँ। आपको पता है लोगों को ना जो चीजें बुरी लगती हैं सुनने में कि मतलब ये मेरे को क्या कह दिया इसने ये, और मैं उस चीज को मतलब झोली फैला के लेती हूँ, मुझे अच्छी लगती है पता नहीं क्यों, और शायद मेरी खुश रहने का कारण भी यही है।
1: ओके, तो इस प्यारी सी बात के साथ मैंने आपको काफी तरीके बता दिए। एक तरीका और बताना चाहूंगी जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में जरूर रखना चाहिए, और वो होता है हल्का फुल्का योगा और व्यायाम करना।
0: ओह माय गॉड, मेरे ध्यान में जस्ट यही चल भी रहा था, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट। यकीन मानो अभी तुम योगा नहीं कहती हो, मैं सोची कि मैं बीच में टोकूं या रहने दूं।
1: चलिए इसे टेलीपैथी कहते हैं कि दो लोगों के दिमाग में एक ही जैसी बातें चल रही थी।
0: हाँ ये बढ़िया है।
1: आते हैं सेकेंड चीज़ों पे कि अगर आप अपने आप को अच्छा रखना चाहते हैं, अच्छा इट मींस कि खुश रखना चाहते हैं, तो आप कोशिश करिए कि आपके घर में गार्डनिंग करने की आई थिंक सभी को आदत होती है, और सभी के घर में कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं बट थोड़े बहुत तो हम पेड़ पौधे लगाते ही हैं, गार्डनिंग करते ही हैं। तो स्पेशली मैं सीनियर सिटीजन्स के लिए बताना चाहूँगी कि आपके जब भी टाइम मिले तो आप गार्डनिंग करिए, घास में नंगे पैर चलिए और थोड़ा सा नेचर के साथ टाइम ज़रूर बिताइए।
0: और तुम्हें मैं बता दूं मतलब अंशिका जी,
1: जी।
0: के हमारे एक मित्र आए थे हाल फिलहाल में, ठीक है, अपनी बेगम साहिबा के साथ में। तो हुआ यूं कि जब वो हमारे दरवाजे पर आए तो उस वक्त तो भाई हम ड्यूटी पे होते थे, और उस दिन भी टाइमली मतलब मैं ड्यूटी पर ही थी
1: जी।
0: तो उन्होंने जब मेरे को ये सूचना दी कि मैं तुम्हारे घर आया था, लेकिन मैंने देखा कि तुम्हारे जो वो फ्लोर है तुम्हारे घर का ऊपर का बालकनी है जो, उसमें तो मुझे पूरा का पूरा खेत नजर आया, क्या वही तुम्हारा घर था? हमने कहा बहुत सही पहचाने हो, वो जो खेत हम जो खेती करते हैं वो बस कहीं ना कहीं तुम लोग के संगत का असर हो, और अगर तुम्हारे संगत में ऐसी चीज़ें नहीं है तो आके मेरे घर सीख लो। क्योंकि ये बहुत काम की चीज़। और मैं बताऊँ मैंने उसको ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वो मेरी लाइफ का वो फ्लावर है जिसको मैं मैरी गोल्ड कह सकती हूँ, साथ में रोज भी।
1: ओके
0: पता है उसने मुझे, आप मेरे अंदर जो कॉमेडी देखते हो ना वो उसका पार्ट है। और कभी भी आप उससे मतलब, एक चीज़ और मैंने सीखी है और आप लोगों को भी सीखना चाहिए, आपकी भी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके मतलब आपको अपनी समस्याओं को बताते हैं या बहुत ज़्यादा कष्ट में होते हैं तो आप ही के पास आते हैं, उस टाइम पे उनसे आपको उनकी समस्या नहीं पूछनी है, आपको खाली हंसाते जाना है, उस टॉपिक को छेड़ना ही नहीं है, उसको हील करना है। हील करने का कारण ये कि अगर आप जो गम उसका चल रहा है उसको और खुरीदोगे तो दर्द तो होगा ही ना, तो उस दर्द को हटाने के लिए उसको एकदम ख़त्म ही कर देना, उसे पूछना ही नहीं है, और वो मुझे बखूबी जान रहा होता है हर दफ़ा, मेरी सिसकियाँ भी सुन चुका है कई दफ़ा, और उसने कभी मुझसे ये नहीं पूछा कि क्यों रो रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, क्यों दुखी हो, बस खाली हंसाने का काम किया। और घंटों घंटों मैं उससे बात कर सकती हूँ, और वो कभी फ़ोन भी नहीं उठाते हैं जनाब, लेकिन हाँ जब मैं दुखी होती या कोई प्रॉब्लम में होती हूँ तो वो अपने बहुत बिजी शेड्यूल से अपना सबसे कीमती वक्त मुझे निकाल के देते हैं।
1: ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और हर किसी की लाइफ में ऐसे इंसान होने भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें जरूरत भी पड़ती है।
0: इंसान से ज्यादा जरूरी बात यह है कि ये वाला जो पार्ट है अगर आप लोग भी अपनाएंगे तो आपके जितने भी लोग हैं वो काफी मतलब एक कामगर चीज है, कि जिस दर्द में जो इंसान है उससे वो दर्द का कारण कभी मत पूछिएगा, कभी भी नहीं पूछिएगा, वो खुद ब खुद हील होगा, क्योंकि इंसान खुद ही हील होता है, आप कितना भी ज्ञान दे लो। वो खाली आपसे कहना चाहता है या आपको सुनना आया आपके पास में, वो चाहते कि उस चीज से या तो एकदम अलग हो जाए और या तो आप उस चीज को सुन लो। अगर वो आपको सुनाना चाहेगा तो आप सुन लो फिर भी, लेकिन आप उस चीज को बस खाली सुन लो, उस पर कभी कोई सवाल ना करो।
1: यानी कि समटाइम्स हमें सुनना चाहिए, कहते हैं ना कि सुनने की एक जो हैबिट इंसान के अंदर होती है उसमें बहुत पावर होती है।
0: सुनना चाहिए, लेकिन साथ में अपनी तरफ से कुछ भी नहीं रखना, अगर रखना भी है तो केवल हंसी हंसी हंसी खुशी, उसको हंसाने की पूरी कोशिश करिए। कितना भी गहरा आपका मतलब ये समझ लीजिए आपका रिश्ता टूटने वाला होगा, एकदम ये होगा कि आज हम जाएंगे और बस लड़ाई करके खत्म कर देंगे इस रिश्ते को, अगर आपने उसको हंसा लिया आप समझ लीजिए आपने जीत लिया आधी जादी बाजी, बाकी तो अपने आप ही हो जाना है।
1: ओके ये तो बहुत ही अच्छा वाला, मतलब हम हर बार हर डे में कहते हैं ना लिसनर्स टिप ऑफ द डे, तो आज इसे आप हमारा टिप ऑफ द डे समझ सकते हैं,
0: और ये पूरी जिंदगी का की होगा आपके लिए, मास्टर की होगा, आप किसी भी रिश्ते में अप्लाई करिएगा आप बहुत खुश पाएंगे खुद को।
1: ओके सो लिसनर्स आप भी जरूर ट्राई करिए जो भी अभी आर्जे आकांक्षा ने कहा, और मैं भी जरूर ट्राई करूंगी। तो चलिए फिलहाल चलते हैं, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग हम सुनेंगे, एंजॉय करेंगे, और इस सॉन्ग के उस पार आएंगे और भी कुछ ले करके, लेकिन वो क्या है ये हम आपको बताएंगे नहीं,
0: खिलाएंगे सीधे,
1: खिलाएंगे कैसे, खिलाते तो मंडे को हैं, हमारा खाना खजाना तो मंडे को होता है,
0: तो सुनाएंगी
1: बताएंगी।
0: ओके ठीक है,
1: क्या बताएंगे और क्यों बताएंगे ये भी बताएंगे, लेकिन इस ब्रेक के उस पार मैं बता दूं कि जो मैं बताने वाली हूँ ना वो आज आकांक्षा का फेवरेट होने वाला है।
0: अरे बाप रे दैया रे दैया,
1: क्या होने वाला है चलिए वो भी बताते हैं, लेकिन थोड़ा सा इंतजार
0: नहीं, नहीं इंतजार इंतजार बनता है, बहुत सस्पेंस के बाद जो मजा है वो कहीं नहीं है।
1: तो फिलहाल ये सॉन्ग सुनते हैं।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती है आपकी अपनी आज आकांक्षा, और हमारे साथ में हमारी सहेली, मित्राणी और दोस्त यार और नातेदार, रिश्तेदार, पट्टीदार, जो भी समझ लीजिए, यानी कि हमारी आरजे अंशिका जी। और आपने ट्यून करके रखा हुआ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गुना शहर की धड़कन पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम, जिसका नाम है सुन सहेली।
4: बिल्कुल, सुन सहेली, और सहेलियां हाजिर है फिर से बातें करने के लिए। और अब जो हम सेशन लेकर के आए हैं वो बहुत ही प्यारा सा है, क्योंकि ये रिलेट करता है हमारी जो कि बहुत ही प्यारी सी और क्यूट सी हैं,
3: हाँ,
4: उनकी पसंद को।
3: हाई कौन पहले? हाई बताओ।
4: इतना कह दिया फिर भी नहीं समझी?
3: मेरे को समझना नहीं, मैं एक्चुअली चैट बॉक्स में देख रही थी, हमारे कोई नए वाले लिसनर आए हुए थे और आपने वेलकम करना, मतलब थोड़ा सा आप मेरी तरफ चली गई, तो मैंने कहा मैं खुद ही अपने मेहमान का भगत कर लेती हूँ।
4: बिल्कुल,
3: हाँ, जरा स्क्रॉल करिए।
4: ओके,
3: ताकि आपको भी दिख जाए कि कौन आए हुए हैं। नहीं दिख रहे हैं, ऊपर जाए। हाँ, अभी कोई दिख रहा है? नाइस सॉन्ग।
4: हाँ, ओके, शैलेंद्र जी आ गए हैं जी। मैसेजेस थोड़े स्क्रॉल हो गए थे तो इसलिए मैंने
3: और नहीं देखा। उसके
4: अलावा शैलेंद्र जी के अलावा नेहा जी आ चुकी हैं, जो कि हमें बहराइच से सुनती हैं और लिख रही हैं, नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून आपको भी नेहा जी, कैसी हैं आप? और शैलेंद्र जी, आप भी बताएं कि आप कैसे हैं।
3: दोनों ही बहुत मस्त हैं, भले हैं, चंगे हैं, मैं बता रही हूँ। अब बताओ, वो जो है बहुत क्यूट, और उसको क्या पसंद है?
4: किसी को गार्डनिंग बहुत पसंद है, पौधे बहुत पसंद है, यानी नेचर से बहुत प्यार है।
3: जी हाँ, वो कोई और नहीं, मैं ही हूँ, और मेरी बात हो रही है। मैं
4: बिल्कुल पता है, आप समझ गए।
3: मुझे मुझे मुझे पता है, शुक्र नहीं है, गुरु है आज।
4: मैं भूल गई थी, माय मिस्टेक।
3: ओके, चलते हैं भाई। और गार्डनिंग की बात जब आती है और जब नेचर की बात आती है, तो मैं हमेशा से कहती हूँ कि मैं अपने, मतलब जिन्होंने मुझे पैदा किया, मेरी माता जी, उनसे भी ऊपर रखती हूँ अपनी मदर नेचर को। कारण यही है कि वो आपको इतना हील करती हैं कि आप कभी सोच और समझ भी नहीं पाते। और आपको बता दूँ, जब डॉक्टर्स चीज़ों से थक हार जाते हैं, तब वो भी यही कहते हैं कि इनको नेचर के बीच में लेके जाएं।
4: ओके, और इसी के साथ हमारी बहुत ही प्यारी सी लिसनर जो कि गीतू जी, गीता जी हमारी, वो भी आ गई है, लिखते हैं शुभ दोपहरिया दोनों आरजे मैम को, शुभ दोपहरिया आपको भी गीता जी।
3: अच्छा, मुझे जब आपने गीतू जी कहा, सॉरी बुरा मत मानिएगा गीता जी, मुझे एक जो वो होता है क्या बोलते हैं गेम, वो याद आ गया, कबड्डी में। सोचो हम लेडीज होते और एक साथ में अगर कोई गेम होता, उसमें कबड्डी होता, तो कैसे लगते? और भी खास करके अगर साड़ी पहन के हमको खेलना पड़ता।
4: अच्छा, मुझे एक सवाल है।
3: हाँ, बिल्कुल।
4: आरजे आकांक्षा जी, कैसी लगती साड़ी में कबड्डी खेलते हुए?
3: मैं तो भाई बहुत अच्छी लगती, मैं क्यों कहूँ मैं बुरी लगती?
4: अरे तो मैंने कब कहा कि आप बुरी लगती?
3: हाँ तो मुझे मालूम है,
4: क्वेश्चन रखा था।
3: नहीं, क्वेश्चन आपने रखा तो मुझे मालूम है आप मुझे बुरी कहेंगे भी नहीं, बस मैं आपके मुंह से अपनी तारीफ खुद ही, आपके सवालों का जवाब आप ही के मुंह से निकलवाना चाहती थी।
4: आप क्या ना निकलवा लीजिए,
3: मैंने फिलहाल आपके बैंक अकाउंट का पासवर्ड
4: और
3: अकाउंट नंबर नहीं निकलवाया,
4: वो तो छोड़ दीजिए। चलिए
3: फिलहाल भाई चलते, बहुत खिंचाई कर ली है मैंने आज आरजे अंशिका जी की, और अब जानते हैं कि वो क्या खास है जो बताने वाली है।
4: आज मैं आपको ये बताऊंगी कि अमूमन हम सभी के घरों में एलोवेरा का पौधा तो होता ही होता है, वो तो आप लगाते ही हैं अपने घर में। उसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं, स्पेशली गर्मियों में, क्योंकि वो हमारी स्किन, जिन्हें भी सनबर्न की प्रॉब्लम हो जाती है या लाल दाने वगैरह हो जाते हैं, या फिर जिनकी स्किन आपने देखी होगी बहुत खिंची खिंची होती है, वो एलोवेरा का यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारी रेमेडीज में भी यूज़ होता है। तो आज हम कुछ ऐसी टिप्स आपको देंगे जिससे कि आपका एलोवेरा का

0: तभी डालें जब आपको लगे कि मिट्टी जो है वो पूरी तरीके से सूख गई है, तभी पानी डालिए, हमेशा नहीं।
1: ऐसा क्या?
0: ऐसा ही।
1: और मैं तो पूरे 24 घंटे में एक ही दफा पानी देती हूँ, इसीलिए।
0: हाँ, एक दफा दे सकते हैं, दो दफा भी दे सकते हैं, मतलब जब आपको ये लगे कि मिट्टी पूरी तरह से सूख चुकी है फिर ही आपको पानी देना है।
1: नहीं, अब तो जब तक उसकी शक्ल मुरझा नहीं जाएगी तब तक नहीं दूंगी।
0: हाँ, जब मुरझा जाए फिर ही उसको दीजिएगा। तो चलिए अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, जो कि ये है कि रोजाना चार से पाँच घंटे उसे धूप की जरूरत होती है, और गर्मियों में दोपहर की जो धूप होती है वो बहुत तेज होती है, इसलिए उसमें ना रखें, वरना उसकी जो पत्तियां होंगी ना वो जल जाएंगी। एक सुबह की जो धूप होती है ना, भीनी भीनी सी, हल्की हल्की सी, उसमें रखिए आप, और 10 बजे के बाद आप उसको हटा दीजिए। क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत पीक पे धूप हो जाती है, कहते हैं ना सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 3-4 बजे तक बहुत पीक पे हो जाती है, तो उसमें नहीं रखना है, उससे उसकी जो पत्तियां हैं वो जल सकती हैं। अब आते हैं कि एलोवेरा के पौधे जो होते हैं ना, उनको हमेशा उनकी जो मतलब मिट्टी जो है उसे बदलते रहना चाहिए, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे करते रहिए, उसका ध्यान रखिए, क्योंकि मिट्टियाँ जब जैसे मिट्टी जो होती है जब वो पुरानी हो जाती है तो उसकी वजह से भी पौधे खराब हो सकते हैं। अब हम आरजे आकांक्षा को बोलने देते हैं, क्योंकि काफ़ी देर से मेरी तरफ देख रही हैं। जी
1: नहीं, मैं बस देखना चाह रही थी कि आप कितने प्यारे से गार्डनिंग कर लेती हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ, क्योंकि पता है जो लोग नेचर से प्यार करना जानते हैं वो फिर सभी से प्यार करते हैं। बिकॉज प्रकृति वो है जिन्होंने हमें जीवन दिया, और अगर हम उनसे प्रेम करते हैं तो हमारे अंदर एक सेल्फ केयर, मतलब एक केयर की जो भावना है वो सेल्फ डेवलप हो जाती है, वो टेंडेंसी, और फिर हम सभी से प्यार से बिहेव करते हैं। मेरा तो यही मानना है, आपका क्या मानना है?
0: हाँ, तो बिल्कुल, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि इंसान के अंदर अगर प्यार है, जैसे ये कहा जाता है ना कि अगर आप एक आप कुछ हो या ना हो, बट एक अच्छे इंसान होना बहुत ज़रूरी है, और एक अच्छा इंसान तब होता है जब उसको हर चीज़ से प्यार होता है। हर चीज़ से प्यार, इन द सेंस कि हम अपने घर में अगर पेट्स भी रखते हैं तो उनसे भी हमें लगाव हो जाता है। हम किसी अच्छा एक इस तरीके से लेते हैं कि डेली आप जिन बेजान चीज़ों को यूज़ करते हैं, कई बार हम उनसे भी बातें करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी हमारी डेली रूटीन में हो जाता है। मतलब मैं सबके लिए नहीं कहूँगी, सबको नहीं होता होगा, बट मुझे है कि मैं डेली जिन चीज़ों को यूज़ करती हूँ मुझे उनसे भी बड़ा लगाव है। अगर कोई मेरी वो चीज़ें भी इधर उधर कर देता है तो मुझे नहीं अच्छा लगता है।
1: आप ये बताइए, अब आपने ये छेड़ ही दिया है तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी अंशिका जी, कि आपकी लास्ट ऐसी कौन सी चीज़ थी, और मतलब कितने दिन तक लास्टली कितना मतलब एक्सटेंड की आपके साथ में
0: चीज़?
1: हाँ, कोई चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा
0: मेरे मतलब एक मेरी गुड़िया थी, वो मेरी बचपन की थी, तो उसने मेरे साथ बहुत लॉन्ग टाइम एक्सटेंड किया था। मतलब मैंने बचपन इन द सेंस कि मैंने कम से कम उसको 15-16 साल संभाल के रखा हुआ था, क्योंकि उससे मेरी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई थी बचपन की। मतलब एक कनेक्शन था बहुत प्यारा सा, लेकिन सम इंसिडेंट हुआ कि वो बाद में छूट गया।
1: अब यहीं से क्लियर होता है, जो लोग ऐसे होते हैं दोस्तों, वो लोग अपने रिश्तों को बहुत अच्छे से संभालना जानते हैं, अपने सामानों को बहुत अच्छे से संभालना जानते हैं, अपने घर के हर एक चीज़ को, मतलब उनकी लाइफ में संभालने वाला जो पार्ट है वो काफ़ी अच्छा होता है। हाँ,
0: क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे संभालना पसंद है, फिर चाहे वो आपके रिश्ते हो, चीजें हो या कुछ भी हो, मैं कोशिश करती हूं कि मेरी साइड से वो बहुत जल्दी खराब ना हो, बट अगर सामने वाला एफर्ट नहीं देता है तो हाँ, चीजें खराब हो सकती हैं।
1: बिल्कुल, और जो चीज है ना वो छोड़ने वाली, उसे समय रहते छोड़ना भी आना चाहिए इंसान।
0: बिल्कुल, ये तो बहुत ही एक अच्छा पार्ट है, जैसे कि आरजे आकांक्षा ने कही दिया, तो मुझे लगता है गिव अप करना आना चाहिए।
1: बिल्कुल, ठहराव में चीजें सही नहीं होती हैं।
0: बिल्कुल,
1: मतलब ठहराव खुद के लिए जरूरी होता है, लेकिन रिश्तों में अगर आप जबरदस्ती वाला ठहराव मांगेंगे तो
0: वो नहीं हो पाएगा,
1: हो ही नहीं सकता है।
0: मुझे लगता है किसी साइड से नहीं हो पाता है।
1: नहीं,
0: हम हमेशा कहते हैं ना कि रिश्ते लॉन्ग, एक होती है ना लाइन कि अरे आपके रिश्ते हमेशा लंबे चलने चाहिए, लेकिन मुझे लगता है रिश्ते लंबे नहीं, प्यारे होने चाहिए। हो सकता है किसी का साथ थोड़े समय के लिए हो, लेकिन आपने उससे प्यार से तो रहे। आप पूरी जिंदगी किसी के साथ रह रहे हैं लेकिन आप खुश नहीं है, तो उसके कोई मायने नहीं।
1: और एक बात और बता दूं, प्यार का एक पार्ट ये भी है कि वो आपको आज़ाद छोड़ता है, और वो सबसे सही वाला पार्ट है। और अगर वो आपको आज़ाद नहीं छोड़ता है तो फिर वो प्यार हो ही नहीं सकता है। अगर आपकी वो ग्रोथ नहीं देख पा रहा है, आपको खुश नहीं देख पा रहा है, आपको आपके हाल पे छोड़ना उसे नहीं आता है, आपकी खुशियों के साथ उसे छोड़ना नहीं आता है, तो फिर आपने कभी प्यार किया ही नहीं किसी से।
0: और एक बहुत ही प्यारा सा मतलब मैसेज है, वो मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगी, कि आरजे आकांक्षा जी, आपसे एक शिकायत है, आप आरजे अंशिका जी की इतनी खिंचाई ना करें। आरजे अंशिका जी को बोलने से पहले बहुत सोच सोच कर बोलना पड़ता है। आप देखिए, इस पर मैं बहुत प्यारा सा जवाब दूँ कि सोच सोच कर बोलना पड़ता है, ये तो आपने सही

0: रामकृष्ण जी, लेकिन खिंचाई जैसे कोई बहुत अपना होता है ना, वही खिंचाई करता है। और मैं एक बात बताऊँ, मुझे इनका खिंचाई करना बहुत पसंद भी है। तो कोई बात नहीं, अगर कोई सोच में डालेगा फिर तो हम सोच के जवाब देंगे, और होता है अगर मैं सोच के जवाब दूँ तो मैं अच्छे जवाब दूँ।
1: और ये बात भी है कि मैं जब भी आती हूँ सुन सहेली में, तो मैं क्या ही बोलूँ, मैं ज़्यादा बोल जाऊँगी तो हो सकता है कोई मुझे सुन रहा हो तो मुझे डांट भी पड़ जाए। हाँ, तो मैं वो नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन हाँ वो जो बोलना है वो बोलूँगी ज़रूर कि मुझे इनका साथ काफ़ी पसंद आता है।
0: ओके, थैंक यू। वैसे आपने जो नहीं बोला वो भी हम समझ गए।
1: हाँ, वो समझदारी यही तो होती है मित्राणियों में, गहराई वाली।
0: बिल्कुल। और देखिए, समझ समझ कर समझ सके, जो ना समझे वो ना समझ। और हम फिलहाल ये समझ गए कि हमारा समय हो चुका है, यानी कि 2:56, और हमने आपसे इतनी सारी बातें की कि समय भी चला गया। तो फिलहाल के लिए इतना ही कहूँगी कि लिसनर्स, आप सभी फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, हमारी नुकझोंक के साथ, थोड़ी सी खिंचाई के साथ, और बहुत सारे मुझे लगता है ज्ञान के साथ भी, जो कि आज के लिए हमने दे दिया। 257 हो रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। और जाते जाते हमारे लिसनर आ चुके हैं, जो कि है राम विलास मौर्या जी। तो उनको हम कहेंगे, उन्होंने लिखा है गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून आपको भी, कैसे हैं आप? और मैं यही कहूँगी कि थोड़ा जाते जाते मत आइएगा, आप कल से आते आते आइएगा, इट मीन्स थोड़ा सा जल्दी आइएगा। कुछ कहना है
1: आप दोनों का प्यार साथ यूं ही बना रहे? नहीं, हम दोनों का तो बना रहेगा। हम आपको बताना चाहेंगे शैलेंद्र जी, हम आपसे भी चाहेंगे कि आपका भी प्यार हमारे साथ बना रहे, आप सभी का प्यार बना रहे। क्योंकि जब जो एक बार रिश्ता बन जाए ना, उसमें मेन पार्ट यही होता है कि जब बुरे समय में हम चीज़ों को संभाल ले गए तो फिर वो लाइफ लॉन्ग चले। और कोई रिश्ता ना, अगर आपका, पहले तो आप उसको कम से कम 2 साल दीजिए, फिर वहाँ पे 2 साल के बाद डेफिनेटली है कि वहाँ पे आपके तगड़े वाले मतलब बवाल होने हैं, ये पक्का है। तीसरे, जब कुछ भी होता है ना तीसरी बार में, तो वो गड़बड़ होना ही होता है। वहाँ अगर आपने संभाल लिया तो फिर वो थोड़ा सा आप सोच सकते हैं उस रिश्ते को लेकर। फिर जब आपका 5वां साल लगेगा, उस साल को अगर आपने क्रॉस कर लिया तो समझ लीजिए फिर वो आपके लाइफ टाइम के लिए
0: चलता रहेगा।
1: हाँ, चलता रहेगा।
0: तो अपने रिश्तों को बेहद खूबसूरत बनाएं, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, खुश रहें, अपने अपनों के पास रहें, अपना ख्याल रखें और पानी पीते रहें। वैसे तो मौसम गर्मी वाला नहीं है, बट फिर भी पानी पीते रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।
1: हाँ, इनका बोतल मैं चुरा के लेके जाने वाली हूँ, थैंक यू बताने के लिए।
0: तो चलिए, इस प्यारे से सॉन्ग के साथ आपको छोड़े चलते हैं।
1: छोड़े चलते हैं घर तक।
2: अच्छा? तो हम चलते हैं।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला, यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88-40-33-95-84। अब बारी है आपकी।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
4: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
5: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
6: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
7: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
8: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
9: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
10: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
11: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
10: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
12: अरे सुना?
13: क्या?
12: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
13: वाओ!
12: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
14: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
15: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
14: और जेंट्स के लिए?
15: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
14: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा। और हमारा दूसरा पता
0: पड़ता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
15: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
13: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
16: मतलब?
13: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
15: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
17: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

हाँ जी श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी का पुनः से स्वागत और अभिनंदन करती है आपके अपनी आरजी आकांक्षा। वक्त हो चला है आपके फोन इन्फॉर्मेशन कार्यक्रम में आने की, कॉलर ट्यून गोंडा का, और मैं हूँ आपके होस्ट एंड दोस्त आरजी आकांक्षा। बखूबी आप हमसे भी रूबरू हैं और हमारी आवाज से भी रूबरू हैं, और आपको ये भी पता है कि आपका शो चल रहा है। लेकिन जो हमारे नए वाले लिसनर्स हैं, हो सकता है उनको नंबर ना पता हो, पर मैं बता दूं आज की जो डिमांड्स आई है ना, एक से बढ़ के एक है भाई। और लगातार 3 दिन से हम पंजाबी सॉन्ग से ही ओपनिंग कर रहे हैं शो की, और आज भी कुछ ऐसा ही है। वो क्या है वो जरूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बता देती हूँ वो नंबर जिस पे आप कॉल करते हैं और अपने सॉन्ग्स को ट्यून करवाते हैं, डेडिकेशन में सॉन्ग भेजते हैं, या फिर किसी के जन्मदिन पर सॉन्ग भेजते हैं, या फिर आप अपने थोड़े से मेंटल पीस को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए अपनी डिमांड करते हैं। और डिमांड करना है आपको आपके स्टूडियो वाले नंबर पे, जो कि है 6393316429, यानी कि 6393316429। तो आप लगातार कॉल कर भी रहे हैं और आपकी डिमांड हम तक पहुंच भी रही है। पर आज है दिन गुरुवार, और गुरुवार में करेंगे क्या भाई, मौज करेंगे हर दिन की तरह, आपके गानों से, आपके नगमों से, आपके सदाबहार जिंदगानी से, थोड़े से जो खास वाले लम्हात है ना, जो आप गानों के माध्यम से हम तक पहुंचाते हैं, उन लम्हों को चुराने की कोशिश करेंगे और सब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चलिए फिलहाल सबसे पहले डिमांड ले लेते हैं, जो कि आई हुई है हमारे पास में मनीष शर्मा जी की। और मनीष शर्मा जी भैया सुनना चाहते हैं आज एक वैसा वाला सॉन्ग, ऐसा वाला सॉन्ग, कैसा वाला सॉन्ग, जो कि कभी ना कभी किसी हमारे प्यारे लिसनर यानी कि हमारे कुमार साहब की, जो मैं एमपी रीवा से सुनते हैं, उनका भी, उनकी प्लेलिस्ट का सॉन्ग, और आप सभी की लिस्ट का भी होगा, प्लेलिस्ट का। और अगर नहीं होगा ना, तो आज से ऐड कर लीजिएगा भैया। ये गाना तो भाई आप सुन के झूमने वाले हैं सेम मेरी तरह, और हो सकता है कि बीट सुन के आपको एहसास भी हो गया हो। आइए एंजॉय करते इस ट्रैक को। This is for the-

0: clock is 28 and 47 wait.
1: तड़का लगा दिया है आपने आते ही, क्या पंजाबी तड़का लगाया है मनी से, मजा मजा मजा आ गया है भाई टेस्ट करके। अपन तो बड़ा खुश है और मुझे लगता है आप सब भी खुश हो गए होंगे इस गाने को सुनने के बाद में। फिलहाल बढ़ेंगे हम आज आप लोगों से थोड़ी सी चर्चा कम करेंगे क्योंकि डिमांड बहुत सारी और सारी ही प्यारी है। अगर आपने एक भी सॉन्ग मिस किया ना तो आपको मैं बता दूं आप खुद ब खुद सैड हो जाने हैं। और चलिए फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड है हमारी प्यारी दरक्षा अंसारी जी की, सीतापुर से आई हुई है। तो चलिए फिर ट्यून कर देते हैं इस नगमे को, लेकिन उससे पहले मैंने देख लिया है कि मैंने किसी को मिस कर दिया है, डांट पड़े उससे बेहतर है कि मैं बजा देती हूँ अपने सबलू सावंत जी की डिमांड को, क्योंकि इनका इनके सॉन्ग के बाद में है हमारी प्यारी दरक्षा जी का सॉन्ग। फिर होंगे हमारे अमित कुमार जी, प्रबल जी, रिजो जी, सभी हाजी, अपनी अपनी बारी का इंतजार करते रहिए। उसके बाद भी बहुत सारे सॉन्ग हैं और बहुत प्यारे प्यारे सॉन्ग हैं, कहीं जाइएगा नहीं। 3 से 4 के सफर में मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा, आपने ट्यून कर रखे हुआ है 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन को। और थोड़ा सा जी हाँ न्यू मोड वाला सॉन्ग सुनते हैं, मतलब AI वर्जन वाला सॉन्ग सुनते हैं भाई अपने सबलू जी की डिमांड पे। मुझे तो लगता है इसका ओरिजिनल ज्यादा बेस्ट होता, लेकिन चलिए सुन ही लेते हैं।

चल रहा है और सबलू जी को याद आ गई है वो हरे दुपट्टे वाली, लाल दुपट्टे वाली, पीली दुपट्टे वाली, सफेद दुपट्टे वाली। वैसे भी ये हमारे सांवरे बलम जी हैं और इनको प्यार से सांवरे बलम जी बुलाते हैं। कारण है कि कन्हैया जैसे कुछ गुण है, बड़े ही गहराई वाली बातें करते हैं जब ये करते हैं। और देख रहे हैं ना क्या गाना ढूंढना है शादियों के सीजन में, ऐसा गाना कौन मिस करना चाहेगा। फिलहाल एंजॉय करिए इस ट्रैक को आपके अपने पसंदीदा शो यानी के फोनी फरमाइशी कार्यक्रम कॉलर ट्यून गुंडा और आरजे आकांक्षा के साथ।

वैसे दोस्तों दाने तो चिड़ियों को डाले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कुड़ियों को दाने डाले जा रहे हैं। ऐसा कहना हमारा नहीं है, हमारे सबलू सावन जी का भी नहीं है, भाई लिरिसिस्ट का जिसने लिखा है। काहे को हम किसी को ऐवें ही दोष देंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड के साथ में। बहुत ही प्यारा सा सूदी सा सॉन्ग है और आप अगर मोहब्बत में नहीं है ना तो इस गाने को सुनने के बाद में डेफिनेटली पढ़ने वाले हैं। धुरंधर मूवी से ये सॉन्ग आपके पेश खिदमत करती हूँ मैं, हम अपनी प्यारी दरक्षा अंसारी जी सीतापुर वाली के डिमांड पे। बने रहिए 3 से 4 के सफर में आपके अपने शो कॉलर ट्यून गुंडा के साथ।

हाँ जी दोस्तों, और मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर बारिश का मौसम हो और किसी की यादें आपके पास में हो तो इस नगमे को ट्यून करके उन यादों में डूब जाइएगा। इस अगली लाइन को

0: कर मेरी।
1: हाँ जी श्रोताओं, तो मैंने कहा था ना कि अगर आपको प्यार नहीं हुआ किसी से तो ये गाना सुनने के बाद में उसका एहसास जरूर हो जाएगा, अगर आपने किसी से प्यारी सी मुलाकात कभी किसी से की होगी। हाँ जी, फिलहाल बढ़ेंगे उस डिमांड की ओर जो कि नेक्स्ट डिमांड है हमारे पास में, और वो है हमारे अमित कुमार जी की। और इनका कहना, भैया प्यार की बातें तो कर रही हैं आप, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि मिलन अभी कहां तक पहुंचा। तो चलिए सुन लेते हैं इस गाने के माध्यम से विवाह मूवी से वो वाला रोमांटिक सॉन्ग जो हर एक शादी में कहीं ना कहीं आपने प्ले जरूर किया होगा, अपने अपनों के लिए, अपने लिए, फिर किसी और के लिए। अभी

जी श्रोताओं, आज जितने ही हमारे पास में डिमांड्स आए हैं, मतलब एकदम झड़ी सी लगी हुई है, उतने ही ढेर सारे आप सभी के मैसेजेस भी आए, उस और भी चलेंगे। लेकिन उससे पहले भाई, इतने प्यारे प्यारे नगमे हैं ना कि मैं सच बताऊं, मैं क्या ही बताऊं। आप सुन भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, आपको खुद ही इस बात का मतलब भान हो रहा होगा, अनुभूति हो रही होगी कि वाकई कितने सुंदर सुंदर गाने आज ट्यून हो रहे हैं। प्लेलिस्ट आपने काफी अच्छी से बनवा दी है हमारी, यानी आपके शो को हिट कराने में आप ही का तो हाथ होता है। फिलहाल ये गाना सुनते हैं अमित जी की डिमांड पे।

बात है भाई, बहुत ही प्यारी सी डिमांड थी अमित कुमार जी, और इनकी डिमांड हमेशा ऐसी होती है। कभी कभार ये भी पता नहीं क्यों, मतलब हो सकता है इंसान ही है, और सैड सैड सॉन्ग सुनना ये भी कभी कभार पसंद कर लेते हैं। फिलहाल हम बढ़ेंगे उस ओर जिस ओर हमको दिख रहे हैं आप सभी के ढेर सारे वाले मैसेजेस, और जब बात हम मैसेजेस की करते हैं तो चलते हैं हम किधर, हाँ जी उधरी, जो है आपके पैगामातों का पिटारा और ठिकाना यानी कि चैट बॉक्स की ओर। और आज हम भाई मैसेज लेंगे नीचे से, यानी कि उल्टी दिशा से बढ़ेंगे, और आरोही के बजाय अवरोही क्रम में हम आपके मैसेजेस लेना शुरू करते हैं। कॉल्स भी आ रही हैं भाई, तो थोड़ी देर के लिए कॉल्स को साइड में रख देते हैं ताकि आप लोग से मुलाकात हो पाए। तो भाई हमारे बीच में बनी हुई है दीपांशी तिवारी जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ मैं। और साथ साथ में हमारी चंगू मंगू जी की जोड़ी आज साथ साथ में आई, बड़ी टाइमली आई है। लेट कमर के मतलब क्या बोलेंगे हम, लेट कमर्स के आप पद से थोड़ा सा विरक्त हो गई हैं, मतलब आज आप टाइमली आई हैं, यानी हमारी नेहा जी और नीना जी। इसके अलावा रामकृष्ण नंदन जी हमारे बीच में मौजूद हैं, अल्लाहाबाद से लिखते हैं। आरजे कांक्षा मैडम गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून आपको भी, और वेरी नाइस सॉन्ग आपने फीडबैक दिया है दीपांशु जी ने, मनी जी ने, और आप सभी ने बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और हमारे बीच में मौजूद है भाई द ग्रेट सेन साहब, जो हमें सुनते हैं राजस्थान और MP के बॉर्डर से। क्या बात है, अच्छा सोचिए दोनों राज्यों का स्वाद जिसको मिल रहा हो, कभी आप खा रहे हो तीखा तीखा दाल बाटी चूरमा, और कभी आप खा रहे हो हल्का हल्का सा खट्टा मीठा वाला पोहा। क्या बात है, क्या बात है, ऐसे ही रहना चाहिए भाई, बॉर्डर पे रहने का यही फायदा होता है। फिलहाल इन्होंने कुछ अर्ज किया है, लिखा है, और लिखा क्या है अपनी कलम से पढ़ देते हैं। लिखते हैं, ऐ दिल जरा धीरे से धड़कना, कहीं चोट ना लग जाए उसे जो इस दिल में रहता। ओह माय गॉड, व्हाट अ किलर लाइन यार, क्या बोलूं मैं, आपने तो मेरा दिन बना दिया। मैं तो ऐसी लाइन को ऐसी कॉपी पेस्ट करके कट करके किसी को भी गिफ्ट कर सकती हूँ। वेरी वेरी वेरी ब्यूटीफुल लाइन, एक बार फिर से पढ़ना चाहूंगी, आप भी सुनिए। ऐ दिल जरा धीरे से धड़कना, कहीं चोट ना लग जाए उसे जो इस दिल में रहता है। ओह माय गॉड, वेरी वेरी वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो कमल नैन जी हैं हमारे साथ में, अब्दुल मुजीम जी भी हमारे साथ में बने हुए हैं, और लिखते हैं, इश्क वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए, इश्क वो है जो दिल में छुपाया जाए। नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए, इश्क वो है जो दिल में छुपाया जाए। बिल्कुल सच्ची बात कह दी है जनाब, क्योंकि बोलते हैं जो एक तरफा लव होता है ना वो सबसे बेहतरीन होता है, क्योंकि वो कभी मुकम्मल ही नहीं होता, और उसमें उस प्यार की कभी कमी ही नहीं आती क्योंकि वो मुकम्मल नहीं हो पाता है ना, इसलिए। और ये मेरा कहना नहीं है, हमारे इंग्लिश राइटर जॉन कीट्स का कहना है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले मैसेज की ओर। तो अगर हम नेक्स्ट मैसेज की बात करें तो हमारे साथ में बनी हुई है दरक्षा अंसारी जी, रेजो जी हैं, और इनको गहरा हुआ सॉन्ग काफ़ी पसंद है, मुझे पता है आपको पसंद आएगा, सूदी सॉन्ग्स का प्रेमी जो ठहरे। और कमल नैन जी का कहना है, 4 दिन की जिंदगी है मजे से जी लो, अगर कोई परेशानी है तो चाय बनाकर पी लो। वाह वाह वाह वाह, हम गन्ने का जूस पियेंगे, हम चाय क्यों पिए आप बताइए, हमें चाय नहीं पसंद है। फिलहाल आप ये बताते रहिएगा, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मैसेज की ओर। और दीपांशी जी ने बड़े ठहाके लगाए हैं, और हंसते हुए खिलखिलाते हुए चेहरे बड़े पसंद आए हैं, मैंने क्या मजाक किया था मुझे खुद नहीं पता चल रहा, और मनी जी भी मुस्कुरा रहे हैं, हो सकता है कुछ ऐसा बोलो या आपस में ही आप लोगों की, लेकिन आपस की तो चैट नहीं लगती मुझे ये। और अब्दुल मुजीम जी फिर से लिखते हैं, मेरी सांसों की डोर बस दो ही ख्वाहिशों पर टिकी है, सांस चले तो तुम साथ हो, सांस रुके तो तुम पास हो। ओ हो, वेरी नाइस। और आगे बढ़ते हैं, 12-13 साल पहले ये सॉन्ग बहुत सुनता था। 12-13 साल पहले क्या, कुछ सॉन्ग्स ऐसे ही होते हैं जो हमेशा चलते रहते हैं, उसको बोला जाता है एवरग्रीन सॉन्ग, जो हमेशा चलते हैं, सदाबहार नगमों को हम कहते हैं एवरग्रीन सॉन्ग्स। और प्रबल मिश्रा जी को भी भाई काफ़ी पसंद आया है सॉन्ग, और इनका भी हम स्वागत और इस्तकबाल करेंगे। साथ ही साथ में धर्मेंद्र मोहन भारती जी भी बने हुए हमारे साथ में आवाज़ बिकॉज कॉलोनी गोंडा से, आवाज़ बिकॉज कॉलोनी गोंडा से सुनने वाले सभी लिसनर्स का हम स्वागत करेंगे। और इन्होंने लिखा है, गुड आफ्टरनून आपको भी, सबलू सावन जी मुंबई बोरीवली से लिखते हैं, जिंदगी में हमेशा सबकी जरूरत रखो पर कभी किसी की कमी नहीं, क्योंकि जरूरत कोई भी पूरा कर सकता है पर किसी की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। सही बात है, 100% सच है। और इसके बाद शैलेंद्र रिझारिया जी हमारे बीच में बने हुए हैं, ओके हमको भाई एक और टैग नेम मिला है, थैंक यू सो मच।

आपकी तरफ से, और इन्होंने कहा है चुलबुली आकांक्षा मैम को नमस्कार। नमस्कार आपको भी, और मुस्तफा जी भी हमारे बीच में मौजूद है सऊदी अरेबिया से, हमारे इंटरनेशनल लिसनर। थैंक यू सो मच एंड वेलकम, आपका भी हम करेंगे। और अब हम बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर। मुझे लगता है मैंने सभी के मैसेजेस को पढ़ लिया है, कोई हमसे बचा नहीं। नहीं नहीं, हाँ हमारे बीच में रामविलास मौर्य जी भी हैं, और बिल्कुल आपने खेत खलिहान के लिए फीडबैक दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और बेशक जब तक हम रहेंगे तब तक तो कभी नहीं बंद होगा, और हमारा और आपका साथ रहा तो ये आगे ही बढ़ता रहेगा, फलता फूलता रहेगा। थैंक यू सो मच। और अभी बढ़ते हैं उस सॉन्ग की ओर जो की है क्या, किसकी डिमांड आइए बताते हैं। तो ये है डिमांड हमारे प्रवल मिश्रा जी पंडित जी की, तो चलिए सुनते हैं कि ये आज क्या लेके आए हैं हमारे महफिल में सजाने के लिए। चलिए इनके जज्बातों को भी सुनते हैं और बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। 3 से 4 के सफर में मैं हूं आपके होस्ट एंड दोस्त आज आकांक्षा। आपने ट्यून करके रखा हुआ है 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, और ये सॉन्ग हमारे चीची जी पर फिल्माया गया, और साथ में तब्बू जी की जोड़ी है, और आवाज विनोद राठौर जी की और कविता कृष्ण मूर्ति जी की। और गाना तो आप सुन के बिल्कुल पसंद करेंगे भाई, हमारे पसंदीदा प्लेलिस्ट में से एक है, क्योंकि जिस गाने में चीची जी हो और रणवीर कपूर हो ऑटोमेटिक वो खूबसूरत हो जाता है। एंजॉय द ट्रैक।

बीच में हमारे दो लिसनर हैं यानी रिजो जी और प्रबल जी, इन दोनों का रोज का ये रूटीन होता है, कहते हैं भाई आज आप बाजी मार गए और अगले कहते हैं भाई आज आपने बाजी मार ली है। तो भाई आज की तो बाजी मारी है प्रबल जी ने और कल मारी थी हमारे रिजो जी ने, और फिर देखेंगे नेक्स्ट टाइम में यानी कि कल के शो में, हम तो होंगे नहीं लेकिन जो होगा वो देखना पसंद करेगा यानी कि आपकी आरजे उन्नति जी कि भाई किसकी डिमांड पहले आती है। फिलहाल ये गाना बड़ा ही खूबसूरत है।

बात है भाई, बहुत ही खूबसूरत सी डिमांड रही। और दुपट्टा तो सभी संभाल के ही रखते हैं, हम हो, नीना जी हो, नेहा जी हो, या फिर हमारी दीपांशी जी हो, दरक्षा अंसारी जी हो, कोई भी हो, दुपट्टा चीज ही ऐसी होती है कि उसको संभालना ही पड़ जाता है कई दफा, क्योंकि अगर किसी के चेहरे पे चलते चलते लग गई और कोई बाइक चला रहा है तो हो जाना है उसका एक्सीडेंट। और कई दफा होता है कि अगर कहीं गलती से उलझ गया जैसे पेड़ पौधों में, तो वो उसको जाना है फट। तो इसलिए हमें अपने दुपट्टे को संभाल के ही चलना पड़ता है। फिलहाल बढ़ेंगे हम संभाल के वक्त को और आगे की डिमांड की ओर, जो कि हमारे मुंबई के गोरे छोरे यानी कि रिजु जी की डिमांड। आइए सुनते हैं आखिर में ये क्या सुनना चाहते हैं। बड़ी प्यारी सी डिमांड ये भी है, आपको पसंद नहीं है तो आज आप सुन के इसको अपने प्लेलिस्ट में ऐड कर लीजिएगा। हाँ, क्या ट्यून है, ट्यून ट्यून ट्यून ट्यून ट्यून, ट्यून।

की बारी अब हमारी है और ये हम ऐसे निभाएंगे कि हमसे बताया गया मनी जी के द्वारा कि भाई इनके गांव में इनके कक्का जी का है आज बर्थडे। हमने नाम पूछा तो उन्होंने नाम तो नहीं बताया, लेकिन कोई बात नहीं, आप जो भी हैं जनाब, आपकी उम्र काफी लंबी हो और आप हस्त पुष्ट रहे, खिलते मुस्कुराते रहे। इसी शुभकामना के साथ में मैं आगे बढ़ूंगी नेक्स्ट मैसेज की ओर और इसमें द ग्रेट सेंस साहब जी ने हमसे कहा, भैया मैम अब जा तो रहे हूँ हम, लेकिन हम आपको सुन रहे हूँ, इसलिए आप हमें किसी भी गाने में घसीट लेना। भाई घसीट लेना क्या होता है, आप घसीट आराम जी हैं क्या, कोई बात नहीं, हमारी तरह आप भी मस्त मौला इंसान है, इतना हमें अच्छे से पता है। इसलिए अब हम आपको ऐड करना चाहेंगे इस वाले नगमे में, जो कि डिमांड है हमारी प्यारी सभी हाजी की, और सभी हाजी के साथ में हम इसको ऐड करते हैं अपने प्यारे द ग्रेट सिंह साहब जी को।

जी हमारे साथ में बने हुए हैं, मोहम्मद तौफिल जी, और ये हमें सुनते हैं बाराबंकी रामपुर भवानी से। और इन्होंने फरमाइश की है, बट सर मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था प्लीज़ एक कॉल इन शो है, ये फ़ोन इन फरमाइशी कार्यक्रम है, आपको कॉल करना पड़ेगा, तो आपको कॉल तो करना पड़ेगा डेफिनेटली। उस दिन आपका पहला दिन था इसलिए मैंने ट्यून कर दिया था। अभी मैं आपको नंबर भिजवाती हूँ ऑपरेटर साहब से, और आप प्लीज़ कॉल करिए, देन मैं आपके सॉन्ग को प्ले कर पाऊँगी।

की बहुत ही खूबसूरत सनम सॉन्ग अभी आपने सुना और हमारे दीपांशु जी ने भाई लीजिए ऑपरेटरी वाला काम पूरा कर दिया है और नंबर मेंशन कर दिया है 6393316429 यानी के और एक जीरो इन्होंने बढ़ा दिया है भाई, एक्स्ट्रा नंबर मत दीजिए दीपांशु जी, कोई बात नहीं मुझे मालूम है जल्दी जल्दी में टाइप हो गया है। और के गुप्ता जी तिरंगा कॉम्प्लेक्स से हमारे साथ में जुड़ गए हैं, प्यारी प्यारी सी आकांक्षा जी को एक बार फिर से नमस्कार आपको भी, और आपको भी हम ऐड कर देते किसी ओल्ड सॉन्ग में, कोई बात नहीं फिलहाल बढ़ते हैं हम अपने

धर्मेंद्र मोहन भारती जी के सॉन्ग की ओर और फिर लेके आएंगे नेक्स्ट वाली डिमांड और उसी में ऐड करेंगे अपने के गुप्ता जी को। बने रहिए 3 से 4 के सफर में। मैं हूं आपके होस्ट एंड दोस्त आज आकांक्षा, आपने ट्यून करके रखा हुआ 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

भाई और 3:40 पूरे हो चुके हैं और 20 मिनट यूं बीत जाएंगे कि मुझे पता भी नहीं चलेगा, आपको भी पता नहीं चलेगा और कुछ फरमाइशें भी रह जाएंगी। ये वक्त इतना जल्दी क्यों बीत जाता है भाई, थोड़ा तो थम जाया करो यार। अपन को बजाने होते इतने सारे गाने और वक्त का कोई पता ही नहीं होता। फिलहाल बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर जो कि हमारे मुस्तफा जी की है और ये गाना हम बिल्कुल से डेडिकेट करने वाले हैं अपनी चंगू मंगू जी की जोड़ी को और साथ में दीपांशु जी को बहुत देर से ही आ रही हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारे साथ आप ये गाना सुनिए और फिर ही आइए, हम भी ही आते हैं आपके साथ में। हम तो बकायदा हमेशा ही आते रहते हैं और ही आना अच्छा होता है सेहत के लिए, इसलिए ही आ लेते हैं। तो चलिए तीनों लोग मिलकर ही आते हैं इस गाने के साथ में जिसकी डिमांड की गई है मुस्तफा जी के द्वारा। फिर आएंगे हम नेक्स्ट वाले डिमांड की ओर। हमको हमारा नहीं मिला, क्या नहीं मिला जरा सुनिएगा।

खाना सेहत के लिए जरूरी होता है, आप भी अपनाइए रामबाण इलाज, जीवन आपका सरल और सुगम बनाएगा। कैसे? फलाली खाना।

हंसते हुए मैं गा भी नहीं पाती हूँ, और ये सच है कि भाई मुझे मेरा सजना अभी तक नहीं मिला है, और जब सजना मिलेगा तो फिर बजेगा बाजा। आपको अच्छे से पता है किसकी शादी की सहनाइयों का और किसका ज्यादा मैं सोचिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड किसी और की नहीं है, ये डिमांड है हमारे प्यारे लिसनर रमेश कुमार जी की, जो हमें सुनते हैं महाराष्ट्र से, और इसमें हम चस्पा करेंगे अपने प्यारे प्यारे प्यारे लिसनर के गुप्ता जी को। चलिए चपकाते हैं इनको ये वाला गाना, और आप बने रहिए, कहीं जाइएगा नहीं, गाने बड़े ही प्यारे प्यारे, वाकई सुन ही रहे ना आप। हाँ जी।

सविता जी भी अछूती नहीं रह पाई और हमारी चुलबुली सविता जी भी चैट बॉक्स में आ चुकी हैं और इन्होंने ठुमके लगाए हैं पटने वाले सॉन्ग पे। फिलहाल पटेगा कोई नहीं, आगे बढ़ते रहिएगा अपनी लाइफ में पटने का नहीं, केवल और केवल बिल बनके किसी ना किसी पे फटने का। फिलहाल बम बनके भी फट सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये गाना जरूर सुनिएगा। ये गाना भाई हमारे प्रबल जी के पसंदीदा सॉन्ग्स में से एक है।

सही बात है भाई। और आज तो जो जज्बात उमड़ के आ रहे हैं भाई, मैं पढ़ना चाहूंगी। मैं दो मिनट का वक्त लूंगी आप सभी से। सविता जी ने लिखा, हमें तो गोंडा में मिले हैं सजना। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया। और नीना जी का कहना है सारे गाने में बिल्कुल सही कहा। और रिजु जी का कहना है आकांक्षा जी पे फिट बैठता है, बेशक आपने सही फरमाया। और दीपांशु जी का तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती, थैंक यू। और चलिए फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर। ये डिमांड है हमारे राजेश जी की, जो कि हमें बैंगलोर से सुन रहे हैं। और कल भी इनकी सेम डिमांड थी और आज वक्त रहते हमको मिल गई है। तो चलिए बजा देते हैं और सुना देते हैं, हम और आप मिलकर सुनते हैं और मुस्कुराते हैं उसी तरह जैसे हमारी दीपांशु जी मुस्कुरा रही हैं। थैंक यू वंस अगेन। हाई बीट, एंजॉय द ट्रैक।

मुजीम जी का कहना है मेरी पसंद खो गया, मेरा आपका पसंद खो नहीं गया, आपका पसंद आपको मिल गया है, मैं ये कहूंगी। और आप सभी काफी एंजॉय कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग के फीडबैक लगातार मुझे मिलते जा रहे हैं। और आखिर में अब हम आगे बढ़ेंगे, वाकई में कोई पागल हो गया है, वो है आकांक्षा। हाँ जी, मैं हूँ पागल, मैंने कब कहा कि मैं नहीं पागल हूँ। फिलहाल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की होर, और ये हमारे देव प्रसाद जी की, इंडिया वाले देव प्रसाद जी की डिमांड है। बड़े दिनों बाद इन्होंने ढंग का सॉन्ग भेजा है। भाई इनका सैड सॉन्ग मैं प्ले करना पसंद नहीं करती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमेशा सैड सैड सैड रहे। फिलहाल आप भी सुनिए इन्होंने क्या ही भेजा है, और दिल बहलता है किसके आ जाने से, ये तो हमें पता है, आप सभी के आने से, आप लोग के गाने से, और एक घंटा हमारी और आपकी मुलाकात से। फिलहाल वक्त हो गया है 3:49, शेष 11 मिनट, और पूरा करने की कोशिश करेंगे हम ज्यादा से ज्यादा डिमांड्स। एंजॉय द ट्रैक।

है देव प्रसाद जी बताने के लिए कि आपका दिल बहलता है हमारे आने से, और हमारा तो काम यही है कि आप लोग का दिल बहलाए रहे और आप लोग के दिल को संभाल के रखे। भाई दिल बहुत कीमती चीज है, ऐसे कोई जिम्मेदारी अपने दिल की नहीं देता किसी को, इसका मतलब हम जिम्मेदार प्राणी में गिने जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, वक्त की कमी के कारण आगे फटाफट बढ़ते हैं अपनी चंगू मंगू की जोड़ी को लेकर।

क्या पूछ रही है मुझे समझ नहीं आ रहा दीपांशी जी, लेकिन अगर आप सवाल को क्लियर करें तो मैं हो सकता है कि कोशिश करूँ बताने की। और साथ ही साथ में मैं ये बता दूं कि अगर बिना मिले जमाना देख रहा है अपना प्यार, तो मिलने के बाद वाकई क्या होगा, मैं भी सोच में पड़ गई हूँ थोड़ा सा चंगू मंगू जी। फिलहाल ये गाना आप सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट शो यानी कॉलर ट्यून गुंडा के।

बरकरार रखिएगा, हम भी मिलना चाहेंगे आपसे। पूना भाई वो व्हाइट रसगुल्ला हम एक बार फिर से देखना चाहेंगे। और आगे बढ़ते नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, और ये डिमांड किसी और की नहीं है, हमारे कमल नैन जी की डिमांड है। फिर आते हैं नेक्स्ट और लास्ट डिमांड लेकर।

से माफीनामा फिर से आज जारी करना चाहेंगे और उस लिस्ट में सबसे पहला नाम है हमारे अब्दुल मुजीम जी का, जो हमें अहमदाबाद से सुनते हैं। और इसके बाद में नेक्स्ट लिसनर होंगे हमारे निब्बर जी, फिर होंगे हमारी शक्ति जी और राम नरेश जी होंगे, जो कि बिल्कुल दिल से वो भी हमें सुनते हैं, यानी गुंडा से सुनते हैं। काजल जी हमारी बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी लिसनर है। रीत लाल जी तो पता नहीं क्यों अलाहाबाद से हमें सुनते हैं और लगातार इनका 3 से 4 दिन हो गया कि गाना नहीं प्ले हुआ है, मुझे मालूम है। और कल आपका पूरा 2 घंटे का शो होगा जो स्पेशली लेके आएंगी आरजी उन्नति जी, प्लीज़ वहाँ पे आप आइएगा और कॉल करिएगा और आपके सॉन्ग्स को प्ले ज़रूर किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि 2 घंटे में तो ज़रूर ही कंप्लीट हो जाएगा। और राजू जी यानी हमारे रॉबिन हुड जी जो हमें सुनते हैं आवाज़ बिकॉज कॉलोनी गोंडा से, सुरेश कुमार जी चौक गोंडा से, और साथ ही साथ में हमारे प्यारे लिसनर हैं जो हमें सुनते हैं बाराबंकी रामपुर भवानीपुर से, मोहम्मद तौफीक जी। तो इन सभी की डिमांड्स आज रह जाएंगी और अभी भी हमको कॉल आ रही है, तो खैर कोई बात नहीं, अभी हम सुनते हैं इसी गाने को जो हमारे कमल नाथ जी की डिमांड है।

हाँ, जब प्यार की बात होती है ना तो इंसान बड़े ही शौक से कुर्बान होता है उस पे। और क्या ही कहूँ मैं इस बारे में, किसी और दिन चर्चा करेंगे जब वक्त होगा। वक्त हमारे पास कभी होता ही नहीं है और हम कभी चर्चा करेंगे भी नहीं। फिलहाल बढ़ेंगे आज की लास्ट डिमांड की, जो कि हमारे सुरेंद्र यादव जी की है गौरा चौकी से। और इसी के साथ अब मैं लेती हूँ आपसे इजाजत एवरग्रीन हिट्स में से एक धड़कन मूवी से। ये सॉन्ग हर शादी सीजन में कहीं ना कहीं सुना जाने वाला। फिलहाल अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं शाम के शो यानी खेत खलिहान के साथ में। आइएगा जरूर अपने सवालातों के साथ में और अपने खेती किसानी के हालात जरूर हमसे साझा करिएगा ताकि हम आपकी समस्याओं का निदान कर सकें। बाय-बाय, टेक केयर। हंसते खेलते खाते गाते मुस्कुराते हुए ये सफर आज भी पूरा हुआ और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जो जहां कहीं से भी हमें सुन रहे थे। सभी खुश रहें, सर्वे भवन्तु सुखिना। बाय-बाय।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े ही बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: अरे सुना?
3: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
4: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
3: मतलब?
4: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता।

0: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
1: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
0: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
1: अधिक व्यायाम ना करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
0: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
1: सावधानी अपनाएंगे हीट वेव को हराएंगे।
0: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

ही आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा। अब लेती हूँ आपसे इजाजत, उम्मीद है कि आपकी फसलें लहराएंगी और आपके जीवन को सुखद और सुखमय बनाएंगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में अब हमें इजाजत दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और खास लेके, कुछ और जी हाँ गो ग्रीन वाले मूड को एनहेंस करते हुए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुनते रहिए रेडियो 89.6 FM गुना शहर की धड़कन। बाय बाय, टेक केयर और नमस्कार।

देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन

0: तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसल मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
3: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
4: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंक। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
5: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
6: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
7: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
8: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
7: और जेंट्स के लिए?
8: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
7: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
8: संपर्क करें 9125707093 और 9696674006। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
9: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
10: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
11: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
12: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
11: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
13: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
14: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
13: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
14: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
13: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
14: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
15: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
16: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज, 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
15: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
17: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
18: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
19: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
20: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
19: सच में? क्या खास है वहाँ?
20: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
19: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
20: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
19: और फोटोग्राफी वगैरह?
20: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
19: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
20: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
19: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
21: अरे सुना?
22: क्या?
21: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
22: वाओ!
21: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88403395 84 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

जैसन कि आप सभी का पता है कि दुई दिन से बदरवा कुछ परेशान तो करत रहा, लेकिन आज के दिन बदरवा लुका छुपी कई के कहूँ गोवेंट गॉन हो गवा। तो बदरवा से अब ये कहे के समय बिल्कुल नहीं है कि बदरवा बरस मत इतना, पर बदरवा से ये कहे के तो बिल्कुल ज़रूरत है कि ये बदरवा जोन है ये कोनो मेर से भी हमारे सबके जो कहते ना कि तापमान का होका बनाए रखे। तो सभी के स्वागत है भोजपुरिया शाम में। और जैसे कि आप सबन का पता है कि आज के मौसम जो है वो तनी बदला बा, लेकिन सवेरे देख के तो लगत रहा कि कहूँ बर्फ़ गिरे वाली है, लेकिन बर्फ़ का देख के तो हर केहू के मन थोड़ा डराए गए कि मतलब जैसे कहा था ना मौसम विपरीत होत है तो कोनो गलत आशंका जतावत है कि मौसम के बदलब प्रकृति के कोनो बड़ा इशारा हो सकत है, लेकिन वो इशारा का हमरे सबका समझे के समय आ चुका है। कहे कि अब ना सिर्फ प्रदूषण बल्कि हमरे सबके अर्थ यानी कि पृथ्वी पर जो जीव जंतु हैं उनका सबका भी जागे के समय है। और अगर वे सब ना जगें तो आए वाले समय में जो पृथ्वी है वो चली जाए। तो ये सब बात तो हुआ करी, पहले तो सभी लोगों के स्वागत है। धर्मेंद्र मोहन जी, शुभ संध्या का हाल है, और राम राम सभन के। और भोजपुरिया शाम माँ आप सभी के इस्तकबाल आरजबीना के तरफ से, जिसन की पता है आज है बृहस्पतिवार, और क्यों बीफ है कहात है, और गुरुवार क्यों कहात है, जेका जोन जैसे मजा आवे वो है माने, बाकी दिन तो बदले वाला बिल्कुल नहीं है। हाँ, दिल अच्छा दिन के बात अगर हो तो वो तो बिल्कुल हर दिन अच्छा होना चाहिए, लेकिन जो कहा जाता है ना कि दिन के जोन है वो आज बीफ है, तो हमारे सबके यूपी बिहार में बृहस्पतिवार और गुरुवार और बीफ है ये सब है कहा जाता है। वैसे आप बताइए आपके यहाँ क्या कहा जाता है। आज जैसे इनकी आज तारीख हो चुकी है 7 मई। अब एक बार के बात है कि एक जने हमारे श्रोता रहे, उनके बकरी के बड़ा तगड़ा काम रहा, लेकिन उनके एक दिन पता चला कि उनके घरे में वो बकरी है जो उन सबके जो उन मतलब कहा था ना कि भविष्यवाणी बतावत है, तो वह बाज़ार में लेके चला गए बेचे के लिए। फिलहाल वह तो अप्रैल फूल बनावत रहे, लेकिन कुछ लोग ऐसन है जो जन्मजात अप्रैल फूल होते हैं। वैसे ने एक जने आए कहीं कि ये भविष्य बतावत है बकरी, कहीं हाँ, कहीं अच्छा हम पूछा चाहिए थे एक सवाल, कहीं नहीं नहीं आप ना पूछो, पहले हम पूछिए, हमें परिचय है ना, हमारा क्वेश्चन के आंसर जल्दी दी। तब भाई जनाब प्रश्न कहीं कि अप्रैल के बाद कौन महीना आवत है, तो कहीं मैं तो कहीं कि कोने महीना में बुध पूर्णिमा मनावा जात है, तो फिर कहीं मैं तो ऐसे ऐसे कह के दो चार क्वेश्चन मैं वाला पूछ लीस, तो मैं कह के उत्तर दे दीस, तो वह भलमानुष जाने कि मतलब ये बकरिया जोन है ये बिल्कुल सही फुर बतावत है और मतलब भविष्यवाणी एकदम सही करते। तो यह देख के जनाब बकरी खरीद लें वो 1 लाख रुपया में। भाई कोई बकरी 1 लाख रुपया में खरीदी, लेकिन कहा था ना कि जब इंसान का सोचे होते ना कि कुछ हमें गड़बड़ करेगा तो गड़बड़ अपने आप माँ ही हो जाते है। तो फिलहाल आप सबन के स्वागत है, और जैसन कि आज आप सबन का बतावा चाहिए थे कि मौसम के मिजाज जैसन बदला है वैसे आप सबके किस्मत भी बदलने वाली है। आज कुछ हम आप सबका पंचांग के बारे में बताई, और जैसन कि आज आप सबका पता है कि आज वर्ल्ड पासवर्ड डे है। हर जिंदगी में केहू ना केहू के कोनो ना कोनो पासवर्ड होते है। पहले के ज़माने में पासवर्ड खाली ATM के होता रहा, अब तो मोबाइल के पासवर्ड और गर्लफ्रेंड से बात करे के पासवर्ड, हर चीज़ के पासवर्ड है। ये बताएं कि आपके सबसे पसंदीदा पासवर्ड का है। बहुत सारे लोग अपने जन्मतिथि का पासवर्ड लगावत हैं, मोबाइल नंबर का पासवर्ड लगावत हैं, मतलब अलग अलग चीज़ के, लेकिन सबसे ख़तरनाक पासवर्ड का हो सकत है। हमारे एक जाने पहचाने वाले एक वो लिसनर रहे कि उनके मोबाइल का मतलब पासवर्ड नहीं पता रहा केहू का, और उनकर तबीयत ख़राब होगा भी होश होगी भैया उस होश ना आए उनने आवे, और सब सोचें कि इनकर पासवर्ड कहाँ है, जहाँ गिरिन वहाँ सब सोचे लागिन कि लाओ मोबाइल खोला जाए और कोई परिचय वाले का कॉल किया जाए, पर कैसे संभव हो ये चीज़। तो एक उनके पहचान वाले रहे तो वे बताएं कि जानत हो कि हमें सबका ना पासवर्ड के तौर पे
एगो गाली ट्राई करे के चाहिए। तो यूपी बिहार के एगो फेमस गाली है ओका जैसे पासवर्ड में डालिन तैसे मोबाइल खुल गवा। तो हमरे सबके यहाँ जन्मतिथि, केहू के नाम, केहू के बैंक अकाउंट, केहू मोबाइल नंबर, इसे पासवर्ड होत है। लेकिन यूपी बिहार में एगो गाली भी पासवर्ड हो सके थी। फिलहाल आगे पासवर्ड के बात करब। आज वर्ल्ड पासवर्ड डे है, आप सब बताएं कि सबसे अच्छा पासवर्ड का हो सकत है। और जैसे गूगल बतावत है ना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, हम तो कई बार सोचें कि स्ट्रॉन्ग बनाई, लेकिन हमें तो कभी कोनो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मिला नहीं। जब भी जीमेल अकाउंट बनाए थे तो हमसे पासवर्ड नहीं बनते, तो ये जद्दोजहद हमसे नहीं हो पावत। प्रभात सोनी शुभ संध्या, आपके स्वागत है भैया, और आप सबन का राम राम फिर से। और जे जहाँ जैसन होए जल्दी से जाग जाए और एक कप चाय बनाए के लेके चला आवे। अगर बनावे के ना दम होए तो आस पास जो भी आदमी दिखत होए ओका गोहराई के बताए दे कि भैया चाय पिए के मन है। तो चला सुना जाए भोजपुरिया शाम के एगो सुपर डुपर हिट गाना, जेका सुने के बाद आप सब हुई जइबो दीवाना।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88 40 33 95 84। 88 40 33 95 84। 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
1: जहां लेडीज के लिए मिलती है लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियाँ, सूट, कुर्तियाँ और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
0: और जेंट्स के लिए,
1: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
0: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
1: संपर्क करें 9125707093 और 9696674406। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
2: डिलीशियस
3: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
2: और क्या क्या है खास?
3: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
2: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: यार, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
2: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
1: सच में? क्या खास है वहाँ?
2: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
1: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
2: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
1: और फोटोग्राफी वगैरह?
2: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
1: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
2: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
1: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
3: अरे सुना?
4: क्या?
3: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
4: वाओ!
3: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545853546। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88404095 84। अब सपने होंगे साकार।

0: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
1: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियाँ, सूट, कुर्तियाँ और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
0: और जेंट्स के लिए,
1: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
0: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
1: संपर्क करें 9125707093 और 9696674006। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
2: डिलीशियस
3: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
2: और क्या क्या है खास?
3: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
2: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक, पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड गोंडा, कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।

तो भाई सबका बदरवा के जो उनका था ना कि अंदाज पसंद आई गवा। और आप सुबिन का बताए दी कि आज आरजे बीना के पास आप सुबिन के लिए कुछ बिंदास है और कुछ धमाकेदार है। जैसन कि आप सबका पता है, हो सके तो माए सॉन्ग प्ले कर देना, नहीं तो बात नहीं, गाना है मानो हमारे भैया बिहार के हनुमान। तो धर्मेंद्र जी आपका हम बताए दी कि आप सबके आज 7 बजे से भोजपुरी फरमाइश लग जाती, तो बिल्कुल भी आज परेशान होए के ज़रूरत नहीं है। काहे की अगर आप परेशान हुई हैं तो अपने पसंद के गाना कब सुनी है, तो बिल्कुल आपके भोजपुरिया फरमाइश सुनावे के लिए आरजे बीना के पास है बड़ी सी प्लेलिस्ट, और जिकर जिकर जोन जोन फरमाइश है वो हम आप सबका सुनाए देवे। लेकिन उससे पहले हमें आप सबसे एक बात करे है कि बात ये है कि दरअसल एक हमारे सबके गोंडा शहर में एगो चौराहा है। हाँ, जिकर चौराहा के नाम आप सबके मन में आएगा। जे चौराहा है, भरत मिलाप चौराहा, गुड्डूमल चौराहा। जी हाँ, हम गुड्डूमल चौराहा के बात करी थे। ये गुड्डूमल चौराहा के नाम गुड्डूमल का है पड़ा, हम नहीं जाने। मतलब गुड्डूमल कपड़ा धोत रहे गुड्डूमल, अभी तक नहीं समझे। कि मत करी मोहब्बत तोहरा बस की बात नहीं बा, कि मत करी मोहब्बत तोहरा बस के बात नहीं बा, दिल करे मोहब्बत वो दिल तोहरे पास नहीं बा। बिल्कुल सही है। अगर रही थम मोहब्बत के बादशाह तो कानून बना देती, दिल तोड़े वाला के सजा सीधे मौत सुना देती। अरे अभी ना कहा सबलू जी, कह के जन का आप मौत के सजा सुनाई है। कामयाबी के मंजिल के रास्ता बड़का हो सकेला, बाकी हिम्मत ना हार हर कदम के गिनती होखेला। प्यार के जुड़ल धागा के टूटे में देर ना लागेला, बस समझदारी से ओके बने के जरूरत होखेला। और विपत्तिया चाहे कितनों बड़का होखे, माँ बाबूजी के आशीर्वाद से हर संकट हट जाला। रिश्ता के मिठास रखे के हो ता दिल के दरवाज़ा प्यार से खोल के देख लें। क्या बात है। और भाई दिल के दरवाज़ा जब खोले के बारी आवत है ना, तो मन कहत है कि एक बार हमरे सब ना एको दरवाज़ा का खुला छोड़ दिन जाए। जिसे आज के कई साल पहले हमारे सबके गांव में हमारे सबके बाबूजी लोग गांव के दरवाज़ा खोल के रात में सोत रहे, बेसुध होई के, बेफिक्र होई के। लेकिन कहा थे ना कि कबो कबो भाग्य जोन है ना वो अलगे एगो कहते ना किस्मत लिखे रहा थे, और वही किस्मत लेके हमरे सब कहूँ ना कहूँ चला जाई थे। ई बदलता जमाना और ई बढ़त दूरी, ई हमरे सबके अंदर जोन प्यार रहा ओकर गला दबोच दीस है। कोई भी इंसान अपने घर वाले अपने परिवार पे भी भरोसा नहीं करे के चाहते। ई भरोसा नाम के चिड़िया कहाँ उड़ गई है, एका पकड़ के लावे के मन कहत है, और फिर से वह गांव बसावे के मन कहत है। एगो कविता हमका याद आवत थी

लिखे वाले जो उन कवि हैं उन सब में बड़े बड़े नाम जुड़ा हैं। अब चाहे भिखारी ठाकुर के नाम हुए, चाहे महेंद्र मिश्रा के नाम हुए और चाहे रघुवीर नारायण के। अब भिखारी ठाकुर के अगर कहा जाए तो भिखारी ठाकुर का कहा थे कि ये भोजपुरी के शेक्सपियर हुए। हाँ, भिखारी ठाकुर का भोजपुरी के शेक्सपियर कहा जाता है। और आज इनके बारे में हम बहुत कुछ लेके आए हैं जो ना आप सबको बतावा चाहिए थे। अब आप सोचो तो ये कि भिखारी ठाकुर के रहे भाई, नाम में भिखारी ही के रखा था भाई। देखिए, एक शायर जो है ना, ये अपने नाम के साथ है कोनो उपनाम लगाए के प्रसिद्ध हो सकत है। ठीक है, जैसे कि वो ओस लगा लिए थे, कि वो आंसू लगा लिए थे, कि वो दर्द लगा लिए थे, कि वो ठाकुर लगा लिए थे, वैसे भोजपुरी के महाकवि नाटककार और समाज सुधारक रहे भोजपुरी के शेक्सपियर जगह कहा जाता रहा भिखारी ठाकुर। बिहार के छपरा में जन्म भय रहा इनके। उन्हें जब लिखे के बारी आए तो वे देश दुनिया के बारे में नहीं, हर चीज़ के बारे में, जोन जोन कुरीति चलत रही समाज में उस सब के बारे में लिखें। जैसे कि विदेशिया के बारे में लिखें, गबर घिचोर के बारे में लिखें, बेटी बेचवा जैसन अमर रचना उनकर जोन है वो पूरे दुनिया का छू ले इस दिल से। ठीक है, एक अलावा वह लोकनाट यानी कि नाच के बारे में भी लिखत रहे। ऐसे ऐसे कई के उनके जीवन में ऐसे ऐसन चीज़ आए जैसे वह उतार चढ़ाव करत करत भोजपुरी के शेक्सपियर बन गए। अब आप सबका इनके बारे में और बहुत कुछ बतावा चाहिए थे, बहुत कम लोग इनके बारे में जानत हैं कि ये कलाकार कैसे आखिर दुनिया में आए। एक बार के बात है कि किशोरावस्था के समय रहा भाई। किशोरावस्था तो कहते हैं ना, तनाव ओकर अवस्था, कौन अवस्था, हाँ हाँ भाई वह अवस्था जोने माँ सब लोग चाह के भी कुछ करा चाहते हैं तो कहीं ना ही पावत हैं। हाँ, तनाव व तूफान के अवस्था में रहे अपने, जेका किशोरावस्था कहा जाता है। और वह अवस्था में उनके ब्याह मथुराना के साथ हुई गवा। लुक छिप के वह नाच देखे जाए लगे और बहुत सारी जो नाचे गावे वाली मंडली होती ना उनसे सबसे मिले लगे। ठीक है, और जो नाचे गावे वाली मंडली रहा थी उनके सबके अदा इन्हें बहुत अच्छी लागत रही, लेकिन माही बाप के इनके ये आदत बिल्कुल नहीं पसंद रही। एक रोज गांव से भाग के वे खड़गपुर पहुंच गए, इधर उधर का एक काम करे लागे और मेदिनीपुर जिले के रामलीला और जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा देख देख के इनके भीतर के अंदर जो न भीतर में जो न वो कलाकार सोत रहा वो उठेगा एकदम, जिसे कहते ना कि चोर देख के जो न कुकुर लोग रहा थे उनके सबके कान एकदम खड़ा हो जाते, वैसे ने इनके अंदर के जो सोवा हुआ जो नुराना कहा जाता कि कलाकार वो उठेगा। भिखारी ठाकुर जब गांव लौटे तो उनके अंदर एगो कलात्मक प्रतिभा और धार्मिक भावना जो रही ना वो पूरी भरी गई। कहे कि जगन्नाथपुरी के जो रथ यात्रा देखी तो मन उनका बड़ा व्यवहार बना कि मतलब भगवान से सबके इतना तगड़ा नाता है, हमारा तो नहीं है, तो उन्होंने अंदर मतलब भाव आई गवा। फिर परिवार से विरोध कही के वह नृत्य मंडली का गठन कीन और उही से शोहरत कमावे के लगे और लोगन के बीच पहचान बनावे लगे। 30 वर्ष के उम्र में उनके जो है विदेशिया रचना सामने आए, फिर पीछे मुड़ के वह नए देखें, जैसे विदेशिया आए वैसे वह दुनिया भर में फेमस हो गए। जन जन के जुबान बस एक ही नाम गुजे लग, भिखारी ठाकुर, भिखारी ठाकुर। और अगर उनके बारे में बताई तो उनका जन्म जोन है वो छपरा शहर से 10 किलोमीटर पूरब चिरान नामक के स्थान में कुतुबपुर गाँव के पैदाइश हुए। जन्म भैरा उनके पूस मास में शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि रही और साल रहा 1944। ठीक है, और अगर देखा जाए तो दोपहर के 12 बजे शिकली देवी दल सिंगार ठाकुर के घर इनके जन्माइश है। बड़ी लंबी कहानी है और एक जान जान के आप सब जब जनी हैं तब समझिए कि ऐसा बड़ा बड़ा कवि हमारे सबके बीच में आया जिसके बारे में हमें सबका पता नहीं। ठीक है, अब छपरा में पैदा भए रहे तो हुआ के तो भाई कल्चर भी अच्छा खासा है, हुआ के जो रीति

रिवाज है वो बड़ा अच्छा लंबा चौड़ा है, सीखे लागो तो 2-4 साल लग जाए वहाँ के रीति रिवाज सीखे। माँ बाप जो रहे वह अपने ज्येष्ठ संतान अपने सबके यहाँ ना, जैसे यूपी बिहार में ज्येष्ठ बोला था बड़ा लड़का, जो जो बड़ा बिटिया या बड़ा लड़का उनका जेठ लड़का या जेठ लड़की कहते हैं। तो ज्येष्ठ संतान जो भिखारी ठाकुर रहे उन्हें 9 साल के अवस्था तक पढ़ाई शुरू कराएं, ठीक है, काहे कि बहुत दुलारू रहे, जब बड़ा लड़का रहा था ना तो वह बहुत दुलारा माना जाता है, वैसे बड़ा दुलारा रहे 9 साल के भय तब पढ़ावे शुरू किए। 1 वर्ष तक वह कुछ भी नहीं सीखें, कहीं ना अरे यार पढ़ाई लिखाई कैसे हुई। साथ ही साथ छोटा भाई रहा बहो ठाकुर वो पढ़ेला, बाद में गुरु भगवान से उन्हें ककहरा सीखे के मौका मिला और स्कूली शिक्षा के अक्षर ज्ञान सीख लें कोनो मेर, बस कोनो मेर रामचरित मानस पढ़े लागे और उन्हें वहीं से जाना जाए लग कि वह पढ़ा लिखा है। कैथी लिपि में लिखे के वह सबसे पहले शुरुआत की, लेकिन जो कहा था ना मौलिक प्रतिभा जो रही उनके अंदर जन्म जात रही, उनके अंदर मौलिकता बड़ी रही, मतलब जैसे विचार उच्च विचार कोई कुप्रथा है होकर जुटे कटाक्ष करे कि ई तो नहीं होएगा चाहिए, ई उनके अंदर रहा। एक तरह से वह शिक्षा के मामले में कबीर दास के निहायत रहे। साल 1938 और 1962 के बीच 3 दर्जन उनके पुस्तक छपी, भिखारी ठाकुर लगभग 3 दर्जन पुस्तक छापिन।

अगर जो किताब रही वो दूधनाथ प्रेस सलकिया हावड़ा में छपी रही और कचौड़ी गली बनारसी वाराणसी में प्रकाशित भय। कचौड़ी गली तो नवा सुना जाए ना कि कचौड़ी गली सुन कई लो बलमा, अबे सुनाई बे गाना बिल्कुल परेशान नहीं। नाटकन के बात करी तो बहुत सारा नाटक लिए जैसे विदसिया है, कलयुग प्रेम है, गंगा स्नान, बेटी वियोग, भाई विरोध, पुत्र वधु, विधवा विलाप, राधे श्याम बहार, नंद भौजाई, गबर घिचोर, ये सब मुख्य किताब रही। पढ़े के बाद में बड़ा मजा आई। अगर आपका मौका मिले कुछ अच्छा पढ़े के तो आप ज़रूर पढ़ सकते हो, और आपका अवधी और भोजपुरी में पकड़ अच्छी है तो बिल्कुल। अब बात की जाए तो इनके जन कवि बने के जो संबोधन रहा वो ने समालोचक जो है महेश्वराचार्य से मिला, और यही तरह उनके जो कहा था ना कि सूत्राधार जो कहा जाता है उपन्यास के रचना भय सूत्रधार, ठीक है। और मजे कही के ये सबके पसंदीदा हो गए। धोती कुर्ता, मिर्जई, सिर का साफा, पैर में जूता पहने के शौकीन भिखारी ठाकुर गुड़ खाए के बहुत शौकीन रहे। एक साथ ही साथ 10 जुलाई 1971 शनिवार का 84 वर्ष के उम्र में उनका निधन हो गया। महापंडित राहुल संकृतायन के भिखारी का भोजपुरी के शेक्सपियर के नाम देहिन और उनके ऊपर बहुत कुछ लिखें। तो अब बारी है एको गाना सुने के, चला सुन लिया जाए और उसके बाद माँ आप सबसे बात हुई। और गाना है कचौड़ी गली सुन कैलो बनमा, तो सुन के बताएं कैसा नहीं गाना। गाना देखो हमका भोजपुरी के साथ साथ बंगाली गावे के भी मतलब हो लाएगा, कहे कि बंगाली में र का ड कहा जाता है, जाना था कि नहीं आप सब। तो चला सुना जाए गाना कचौड़ी गली सुन कैलो बलमा, बहुत प्यारा गाना है, सुन के बताएं। अनिल वर्मा जी शुभ संध्या और के जनक भी इन्हें, हाँ लौंडा नाच भी यही लिखे हुई हैं, बिल्कुल सही कहा जाता है। तो ये सब नाटक, ये सब नाट, ये सब लिखे माँ वह इनके सबके प्रसिद्धि रही। तो चला सुना जाए प्रिया मलिक की आवाज़ माँ कचौड़ी गली आप सब इनके साथ है।

भाई अब देखते देखत समय हो चुका है, आप सबके भोजपुरी फरमाइश बजाए गए, लेकिन धर्मेंद्र मोहन जी आवाज़ विकास से आपके जो फरमाइश के गाना है ये गाना हमका मिला नहीं, और हम आपसे निवेदन करना चाहिए थे कि आप एगो दूसर गाना के प्लीज़ फरमाइश कर लें और ज़रूर हम आपके गाना प्ले कर देवे। ठीक है, तो आपसे निवेदन है कि दूसर गाना मानो हमार भैया बिहार के हनुमान ये गाना हमारे पास प्लेलिस्ट बनाई है, इसके लिए हम माफ़ी चाहिए थे, और आप चाहें तो दूसर गाना के फरमाइश कह सकते हैं। और अभी अनिल जी हमारे सबके साथ हैं, लिखते हैं कि बेटी बचाओ नाटक माँ एक पिता के अपने पत्नी अपनी कम उम्र के बेटी के विवाह वृद्ध व्यक्ति के साथ ही कही देते हैं, और वह तब वह लड़की वर करुण पुकार करती है कि रुपया गिनई लिहले पगहा धराई दिहले चेरिया के नइखे कौनो मोल बा, चिड़िया के कौनो नइखे बोल बा, ये आज भी लोगन का झकझोर रहे थे। बिल्कुल सही अनिल जी, और अगर आप पढ़े हैं तो आपका बिल्कुल जानकारी हुई उसके बारे में। तो चला सुना जाए सबलू सावंत जी के फरमाइश के सबसे पहला गाना, तो आप सबका बताए दी कि भोजपुरी फरमाइश के समय शुरू हो चुका है, और पहला गाना सुना जाए उठैले घूंघटा चांद देखले फिल्म के, और ये गाना भी टाइटल है, ट्रैक है, चला सुना जाए, बहुत प्यारा गाना है। और सबसे ख़ास बात है कि आवाज़ है उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल के, आपके बॉलीवुड में जेकर आवाज़ सुने के मिलती, अगर वही आवाज़ में आपका भोजपुरी गाना सुने का भी मिल जाए तो क्या बात है। तो चला सुना जाए ये गाना, और एक बाद एक हमार पसंदीदा गाना हम सुने श्रेया घोषाल माँ बॉलीवुड के, जे कि बड़ी दिग्गज सिंगर हैं, और वह भोजपुरी में जो गाना गाई हैं वो हमारे पसंदीदा है। अबे सुनाए लेकिन ये गाना के बाद है।

अभी गाना सुने के बाद बारी है धर्मेंद्र मोहन जी के फरमाइश के गाना सुने के, बड़ा प्यारा गाना के फरमाइश की नहीं। और जैसन की आप सबका बताई कि ये जो गाना है ये आप सबका बताई तो ये फिल्म माँ जो आर्टिस्ट हैं शत्रुघ्न सिन्हा हैं और लिरिक्स जोन है वो ब्रिज किशोर दुबे जी के है। बहुत ही प्यारा गाना है, टी सीरीज से रिलीज है 1985 में। तो चला सुना जाए ये गाना धर्मेंद्र जी की फरमाइश पे।

ओकरे पहले वाला गाना आप सभी सुने हो अपने अनुष्का के फरमाइश के, ओकरे बाद अभी आप सुना तो पूजा के फरमाइश के गाना, और ये गाना भी बड़ा प्यारा है और उनका स्पेशली गाना सुने करा अपने फेवरेट सिंगर के आवाज़ में जोने के नाम है स्वाति मिश्रा जी का आवाज़। तो भाई जब मंदिर बना रहा राम मंदिर तो खूब गूंजा रहा। एक बाद अमित सिंह जी मुंबई से आपके स्वागत है, शुभ संध्या अंबर जी। 1 2 3 का हाल है अंबर जी? पूरा का पूरा परिवार गायब हो गए, मतलब हमसे कोई गलती भाई अंबर जी, बादल जी एंड हमारे सुमित्रा जी। तो चला आगे सबके गाना प्ले हुआ करी और इसने सुना जाए। और हमारे साथ आरके जी हैं, शुभ संध्या आरके जी, भोजपुरिया शाम आपके भी स्वागत है। और यही के साथ चला ये गाना पूजा के फरमाइश के एंजॉय करा जाए और एक बाद आगे भी गाना सुने के तैयारी रखी है।

तो ये गाना सुने के बाद सबका अपन पसंदीदा फिल्म सलमान खान के याद आएगा भी। तो सोचो भोजपुरी गाना का पकड़ कहाँ कहाँ तक है, हिंदी बॉलीवुड फिल्म में भी आपका सुने का मिल जाता है भोजपुरी गाना। तो भाई भोजपुरी गाना के अलग मिजाज है। आपने होली का फोटो क्यों लगाया है, आपके यहाँ होली मनाई जा रही है क्या? ना ही देखा जाए आर के जी कि हम भी बताई कि जिंदगी में रंग कम नए हुए चाहिए, चाहे होली होए और चाहे ना हो, यही से हमार होली का फोटो आप सबका दिक्कत है। फिलहाल आप सब बताएं कि हम होली वाले फोटो में अच्छी लगी थी कि नहीं। तो चलो अगला गाना सुना जाए पवन सिंह के आवाज़ में, फरमाइश है चांदनी जी के। तो चलिए चांदनी जी के फरमाइश के गाना सुन के आप बताएं कि कैसा है गाना पवन सिंह की आवाज़ में।

अभी आप सब सुनत हो कमल नयन जी के फरमाइश के गाना। कमल जी कैसन है, का हाल है? और भाई आरके जी आप फरमाइश ना है कि वो का बात है। तो जुगल किशोर वर्मा जी मध्य प्रदेश से शुभ संध्या, का हाल है? और नीना शुभ संध्या, का हाल है? सब हंसी मजाक के साथ ऐसे जिंदगी जियो, और का चाहिए। सही गाना कमल जी के फरमाइश के सुने जाए आप सब, और एक बाद हमरे फरमाइश से और आप सबके फरमाइश से आगे भी गाने प्ले हुई हैं। एका सुने के बाद आप सुने अमर जी के फरमाइश के गाना।

पता चला अंबर गोयल जी की फरमाइश कही भोजपुरी गाना सुना जाए और बहुत ही प्यारा गाना है श्रेया घोषाल की आवाज़ में हम तोहरा बिन जी ना सकेले। और ये गाना सुने के बाद आप सबका हम सुनेबे गाना रेनू जी के फरमाइश के और सुनत रहा बजावत रहा आपन पसंद के शो गोंडा मैसेज मसाला आरजे बीना वाला अपने पसंदीदा फ्रिक्वेंसी गैन सिटी 9.6 FM पर ई हा गोंडा शहर के धड़कन।

अगला गाना चलो सुना जाए रेनू जी के फरमाइश के, और बहुत प्यारा फरमाइश, और एक बाद बारी है रेनू जी सुना चाहती कहीं नहीं कौन कसूर, चला सुना जाए बहुत प्यारा गाना रेनू जी के फरमाइश के। और नीना जी अगर आपके अपने फरमाइश के गाना सुनेंगे प्लीज़ फरमाइश करें।

अब चलत चलत आखिरी गाना चला सुना जाए, और गाना के फरमाइश है आरके जी के, जो उनकी सभी लड़कियन का डेडिकेट किया जाता है। जे जे हमारे सबके साथ है लाइव ही राजेश सिंह जी मालवीय नगर से, शुभ संध्या, आपके भी स्वागत है। आशु जी शुभ संध्या, रवि जी शुभ संध्या, और इनके साथ हमें दें इजाज़त। आप सुनत रहे हो भोजपुरी शो गोंडा मैसेज मसाला, आर जे बिना वाला, अपने पसंदीदा फ्रिक्वेंसी ज्ञान स्थली 89.6 FM पर।

श्रीकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को अभी तक नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और लगा दीजिए जितने चांद आप लगाना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत। शो आपका, जज्बात आपके, गीत आपके, नाम आपके, और ये आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा के लिए आपकी। सो एंजॉय कर लेते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की पहली फरमाइश, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, अनिल वर्मा जी सैदापुर से, आवाज विकास गोंडा से, रवि द ग्रेट सेन साहब सबलू सावंत बोरीवली मुंबई से, अनुष्का श्रावस्ती से, आरके श्रीवास्तव जी गोंडा से, आशु मिश्रा जी लखनऊ से, आवास विकास गोंडा से, रवि मालवीय नगर से, राजेश सिंह जी कमल नयन जी, मनीष शर्मा खुनासा गोंडा से, नीना अंबर गोयल जी आपका भी स्वागत है, तहे हुए दिल से स्वागत है और इस्तकबाल है, सुरेंद्र यादव जी गौरा चौकी से वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम, स्टे ट्यून्ड और इंजॉय करते हैं हमारी आज की पहली फरमाइश। पहली फरमाइश हमारे पास में है जुगल किशोर वर्मा जी की एमपी से, और जुगल किशोर वर्मा जी को एमपी से सुनना है गाना, तेरा नाम लिया तुझे याद किया और तुझे याद किया तेरा नाम लिया। सो एंजॉय करते हैं अनुराधा जी की आवाज में राम लखन का ये गाना, बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, हमारे जग्गू दादा की फरमाइश पर, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑलवेज रोमांटिक, स्टे ऑलवेज हेल्दी।

जी हाँ दोस्तों, तेरा नाम लिया तुझे याद किया, और तुझे याद किया तेरा नाम लिया। हमने इंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना अनुराधा जी की आवाज़ में, राम लखन का जग्गू दादा की फरमाइश पर, जुगल किशोर वर्मा जी की फरमाइश पर, जो कि है एमपी से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ, लेकिन उसके पहले नेहा बहराइच से आपका स्वागत है। नीना स्टे ट्यून्ड। मोहम्मद मुशीब जी बाराबंकी से आपका भी तहे हुए दिल से स्वागत है। सो एंजॉय कर लेते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की अगली फरमाइश। और अगली फरमाइश हमारे पास में है द ग्रेट सेन साहब की, और द ग्रेट सेन साहब को सुनना है गाना आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी। तो एंजॉय करते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा रोमांटिक वाला गाना, द ग्रेट ग्रेट ग्रेट सेन साहब की फरमाइश पर। Stay tuned.

आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी। हमने इंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा रोमांटिक रोमांटिक रोमांटिक वाला नगमा द ग्रेट सेन साहब की फरमाइश पर। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ दोस्तों, और अगली फरमाइश हमारे पास में है सबलू सावंत की बोरीवली मुंबई से, और सबलू सावंत को बोरीवली मुंबई से सुनना है गाना अंगूर वाले बगिया ना जईबो राजा। तो इंजॉय करते हैं सपना अवस्थी सिंह और पूर्णिमा जी की आवाज में माँ कसम मूवी का ये गाना सबलू सावंत जी की फरमाइश पर, जो कि है बोरीवली मुंबई से। स्टे ट्यून्ड।

बगिया ना जईबो राजा हमने एंजॉय किया है। सपना अवस्थी सिंह और पूर्णिमा जी की आवाज में ये गाना माँ कसम मूवी का सबलू सावंत जी की फरमाइश पर जो की है बोरीवली मुंबई से। चलिए चलते हैं ना, बढ़ते हैं ना हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अरे चलेंगे चलेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे हमारी अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले हमारे द ग्रेट सीन साहब ने कुछ अर्ज किया है, सो उसको तो आप सभी के खिदमत में जरूर पेश करना चाहेगी आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल। सो द ग्रेट सीन साहब ने अर्ज किया है, इरशाद इरशाद तो करिए ना। इनका कहना है कि हम नादान अच्छे हैं दुनिया के समझदार लोगों से, हम नादान अच्छे हैं दुनिया के समझदार लोगों से, हम अपने ख्वाब जरूर तोड़ते हैं पर किसी का दिल नहीं तोड़ते। आहा, तो बहुत ही उम्दा था, बहुत ही खूबसूरत सा था और इससे मैं बहुत रिलेट कर सकती थी, इसीलिए मैं बहुत ही ज़्यादा उछल उछल के मेरा दिल कह रहा था कि जल्दी से इसको पढ़ो ना सिंपल, जल्दी से इसको पढ़ो ना सिंपल। तो आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल ने आपकी खिदमत में ये पेश कर दिया है। इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है हमारी चुलबुली सी अनुष्का जी की फरमाइश पर जो कि है श्रावस्ती से, और अनुष्का जी को श्रावस्ती से सुनना है गाना नगाड़ा नगाड़ा नगाड़ा बजा। तो इंजॉय करते हैं जब वी मेट का ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, जावेद अली और सोनू निगम का गाना सिर्फ और सिर्फ अनुष्का जी की फरमाइश पर। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम, प्रबल मिश्रा फ्रॉम गोंडा, स्टे ट्यून्ड।

हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा सोनू निगम और जावेद अली जी की आवाज में, जब भी मिटता सिर्फ और सिर्फ अनुष्का की फरमाइश पर, जो की है श्रावस्ती से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और दोस्तों, अगली फरमाइश हमारे पास में है आशु मिश्रा जी की लखनऊ से। आशु मिश्रा जी को लखनऊ से सुनना है गाना तुम्हारी नजरों में हमने देखा। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा आशा जी और कुमार सानू की आवाज में। हाउ रोमांटिक वाला गाना लखनऊ से आशु मिश्रा जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

वाह। आशा जी की और कुमार सानू की आवाज में हमने एंजॉय किया है ये सदाबहार नगमा। इसको सदाबहार नगमा ना कहकर अगर मैं कहना चाहूं कि कुछ गाने वक्त के साथ पुराने हो जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मास्टरपीस है जो मोहब्बत की उस नज़ाकत को बयां करता है जहां शायद बातें कम और नज़रों की गुफ्तगू, नज़रों के इशारे ज़्यादा होते हैं। मुझे तो ये गाना बहुत पसंद है और मुझे पता है कि मेरे सभी लिसनर्स को ये गाना बहुत पसंद है, क्योंकि सबने ढेर सारे फूल गुलाब के और फिर उसके बाद में किसी ने फायर, किसी ने स्टार्स, किसी ने बहुत खूब सुपर डुपर हिट कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आशु मिश्रा जी लखनऊ से इस बहुत ही खूबसूरत से नज़ाकत भरे गाने को इस फरमाइशी प्लेलिस्ट में ऐड करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है आवाज विकास गोंडा से रवि की, और आवाज विकास गोंडा से रवि को सुनना है गाना हमको तुमसे, जब हमको तुमसे प्यार नहीं। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा अगम कुमार निगम का सिर्फ और सिर्फ रवि जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड। ओ ये गाना मैंने सुना है शायद, आप लोगों ने भी ना, चैट बॉक्स में जरूर बताना।

दोस्तों हमने एंजॉय किया है आवाज विकास गोंडा से रवि की फरमाइश पर, यह बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। दोस्तों बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम नागेश्वर धाकड़ जी, आपका स्वागत है और इस्तकबाल है। इनका कहना है कि मेरे पास ही था उसके तमाम जख्मों का मरहम, मेरे पास ही था उसके तमाम जख्मों का मरहम, मगर कहाँ दिखाई देती है बड़े शहर में छोटी दुकानें। वाह, बहुत ही खूब और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम मोहम्मद समीम जी, आपका स्वागत है। स्टे ट्यून्ड और एंजॉय कर लेते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश के पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी कि हमारे एक लिसनर ने कुछ और लिखा है। उनका कहना है कि समझने वाला तुम्हारी एक झूठी मुस्कुराहट से समझ जाएगा, समझने वाला तुम्हारी एक झूठी मुस्कुराहट से समझ जाएगा, और ना समझने वाला चाहे तुम उसके सामने रो भी दो ना, नहीं समझेगा। ये बहुत ही ज्ञान की बात है, इसको अपने भेजे में जरूर फिट कर लीजिएगा और एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। मालवे नगर से राजेश सिंह जी को सुनना है गाना मोहम्मद रफी जी की आवाज में, हम किसी से कम नहीं मूवी का, क्या हुआ तेरा वादा। आए हाय, ये वादे, जो वादों पे भरोसा कर लेते हैं वो मुझे मुझसे भी ज्यादा नादान लगते हैं दोस्तों।

रसम वो इरादा हमने एंजॉय किया। ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। तो क्या कह रही है पब्लिक, बढ़े हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, चलिए ना चलते हैं। सो अगली फरमाइश हमारे पास में है राजेश मीना की, और राजेश मीना को सुनना है गाना ऐसा जादू डाला रे। सो एंजॉय करते हैं खाकी का ये सुपर डुपर हिट नगमा राजेश मीना की फरमाइश पर, जो की है बेंगलुरु से। स्टे ट्यून्ड।

एंजॉय किया है खाकी मूवी का ये गाना, लारा दत्ता का गाना सिर्फ और सिर्फ राजेश मीना की फरमाइश पर, जो कि है बेंगलुरु से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है सुरेंद्र यादव जी की गौरा चौकी से। सुरेंद्र यादव जी को गौरा चौकी से सुनना है गाना दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। शायद यही वाला गाना लेकिन रिवाइव, सो एंजॉय करते हैं ये रिवाइव वाला 60s का 70s का हाउस सैड सैड सैड गाना सिर्फ और सिर्फ सुरेंद्र यादव की फरमाइश पर, जो की है गौरा चौकी से। स्टे ट्यून्ड। मजीद जी मालवीय नगर गोंडा से आपका तहेवे दिल से स्वागत है, न्यू तरंग टेलर। स्टे ट्यून्ड।

सो दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। सुरेंद्र यादव जी, आपके दिल के टुकड़े टुकड़े करके कौन मुस्कुरा के चल दिया है मुझसे बताना जरूर, मैं उसको समझाने की जरूर कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं लोगों को समझाने की अपनी पूरी कोशिश करती हूँ। वो बात अलग है कि लोग मेरी बातों को समझ ही नहीं पाते है ना। मैं कहना कुछ और चाहती हूँ, कह कुछ और देती हूँ, मतलब मैं कहती भी वही हूँ अपने तरफ से, लेकिन हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना दोस्तों। तो सिक्के का जो वाला पहलू मैं लोगों को समझाना चाहती हूँ वो पहलू लोग समझते ही नहीं है, और जो पहलू मेरे दिमाग में नहीं होता है वही पहलू लोगों के दिमाग में चला जाता है। सो इसीलिए मैं लोगों को बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेन करके समझाती हूँ, लेकिन तब भी लोग मेरी बातों को समझ नहीं पाते। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेंद्र मोहन की आवाज विकास से, उनको सुनना है गाना यारा तेरी यारी हमको जान से प्यारी। तो वक्त की दीवार का ये गाना एंजॉय करेंगे। इस गाने के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आप की अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहां गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपके अपनी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल के साथ में। स्टे ट्यून्ड, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन।

0: मुख्य समाचार। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों की वीरता और बलिदान को नमन किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन को आतंकवाद के खिलाफ भारत के अटूट संकल्प का निर्णायक प्रमाण बताया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने विधानसभा भंग की। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए बैठकों का सिलसिला जारी। रेलवे 40 वर्ष पुरानी प्रणाली के स्थान पर अगस्त से उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली लागू करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को उन्नयन को सुचारू बनाने के निर्देश दिए। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा उनका देश और भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर आज सशस्त्र बलों के साहस, प्रतिबद्धता और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। पिछले वर्ष इसी दिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के अंतर्गत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले कर 100 आतंकवादियों को मार गिराया था। ये पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम आतंकवादी हमले का भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब था। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के खिलाफ देश के अडिग रुख की ऐतिहासिक अभिव्यक्ति बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दोषियों को कड़ी सजा देने का संकल्प लिया था।
1: इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर।
2: टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता।
0: इस बीच नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
3: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
0: बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि देश में अवैध रूप से रह रहे किसी भी विदेशी नागरिक को देश के कानूनों, प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के अनुसार वापस भेजा जाना चाहिए।
3: जो लोग अवैध ढंग से हमारे यहाँ रह रहे हैं, इसमें हमको बांग्लादेश की सहयोग चाहिए ताकि वो उनको रिपेट्रिएट किया जाए अपने देश। पिछले कुछ सालों में 2860 से ऊपर ऐसे मसले हैं जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय सत्यापन के लिए बांग्लादेश को खबर किया है और ये सभी मामले उनके यहाँ लंबित हैं। हमारा ये नीति है कि जो भी विदेशी नागरिक हमारे यहाँ अवैध रूप से रह रहा है वो उनको अपने देश जाना पड़ेगा।
0: कनाडा में खालिस्तानी समूहों के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि चरमपंथी और अलगाववादियों का कनाडा की जमीन को सुरक्षित पनाहगाह के रूप में इस्तेमाल करना चिंता का विषय है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। ये सत्ता हस्तांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि राज्य शनिवार को शपथ ग्रहण के साथ अपनी अगली सरकार के गठन की ओर अग्रसर है। एक रिपोर्ट।
4: बंगाल में भारी बहुमत से जीत के बाद बीजेपी नए सरकार की शपथ ग्रहण समारोह को राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक कार्यक्रम का रूप देना चाहती है। अगले शनिवार रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में बंगाल की पहली बीजेपी सरकार की शपथ होगी। दो दिन पहले से ही ब्रिगेड में मंच और सुरक्षा तैयारियों का काम शुरू हो गया है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई केंद्रीय नेता मौजूद रहे सकते हैं। इसके साथ ही बीजेपी और एनडीए शासित विभिन्न राज्य की मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल कोलकाता पहुंचेंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसमें पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। इस बीच राज्य में भारतीय जनता पार्टी नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने सिलीगुड़ी के शिव मंदिर निवासी विलियम जोसेफ को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। आरोप है कि कल रात कोलकाता के मध्यम ग्राम में भाजपा नेता के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या करने वालों ने उनकी कार की नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था। 3 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें इस आश्वासन पर रिहा कर दिया कि वे आगे की जांच में सहयोग करेंगे। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलग वेत्रिकड़गम टीवीके पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। दिन भर राज्य की राजनीति में बहुमत का आंकड़ा प्राप्त करने के लिए जोरदार प्रयास

0: था। रेल मंत्रालय ने बताया कि यह ऐप यात्रियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ है। रेल वन ऐप में अब AI आधारित कन्फर्मेशन की संभावना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यह नई सुविधा इस साल की शुरुआत से ही लागू की गई है, जिसे लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। इस पर वेटिंग टिकट के कन्फर्म होने के अनुमान की सटीकता पहले के 53% से बढ़कर अब 94% तक हो गई है। अक्षत कुमार वेद्यान के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में आज भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया जाए। कार्यक्रम में 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए गए। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने फाइनल में पहुंचकर पहला पदक पक्का कर लिया है। सेमीफाइनल मुकाबले में आज भारत ने उलटफेर करते हुए वर्तमान विश्व विजेता दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। फाइनल में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहोत को टीम का सामना चीन से होगा। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला बारिश के कारण रुका हुआ है। मैच रुकने तक लखनऊ ने 9 ओवर में बिना किसी नुकसान के 95 रन बना लिए थे। इससे पहले बेंगलुरु ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायल सीमा में कल तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों की वीरता और बलिदान को नमन किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन को आतंकवाद के खिलाफ भारत के अटूट संकल्प का निर्णायक प्रमाण बताया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने विधानसभा भंग की। तमिलनाडु और केरलम में सरकार गठन के लिए बैठकों का सिलसिला जारी। रेलवे 40 वर्ष पुरानी प्रणाली के स्थान पर अगस्त से उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली लागू करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को उन्नयन को सुचारू बनाने के निर्देश दिए। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा उनका देश और भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

सो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में, और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सो कैसा लगा आप सभी को ये गाना? हाँ,

सो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो फरमाइशी विद आरजे सिंपल। दीपांशी तिवारी, आपका स्वागत है। मनीष शर्मा खुरासा गोंडा से आपका भी स्वागत है। और सुरेश कुमार जी चौक से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, और निब्बर जी रानी बाजार सोनार गली गोंडा से आप सभी का स्वागत है। और इंजॉय कर लेते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों, आपको पता है किसकी? अगली फरमाइश हमारे पास में है अंबर गोयल की, और अंबर गोयल को सुनना है गाना अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। अच्छा जी, तो इंजॉय करते हैं अंबर गोयल की फरमाइश पे ये वाला गाना श्रेया घोषाल की आवाज में, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, और तुम्हें पाकर जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम। उन्होंने इस गाने को डेडिकेट किया है आपकी बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही स्वीट सी और थोड़ी सी नटखट सी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल को, पता है क्या? सो एंजॉय करते हैं मेरे लिए ये वाला गाना। आहा,

अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। हमने इंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा श्रेया जी की बहुत ही सुरीली सी प्यारी सी रोमांटिक सी आवाज में, सिर्फ और सिर्फ अंबर गोयल की फरमाइश पर। और अंबर गोयल जी ने इस गाने को डेडिकेट किया था आपकी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल को। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। और अगली फरमाइश हमारे पास में है मोहम्मद मुशीब जी की बाराबंकी से। मोहम्मद मुशीब जी को बाराबंकी से सुनना है गाना दिल देना है तो दे दे। सो एंजॉय करते हैं अलका याग्निक जी की आवाज में ये वाला गाना मोहम्मद मुशीब जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड। कितना हक से दिल भी मांग रहे हैं ना कि दिल देना है तो दे दे, वरना हम चले।

वरना ये हम चले, हमने एंजॉय किया, ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा अलका याग्निक जी की आवाज में। और वैसे ऐसे ही करना ही चाहिए कि ऐसे चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, ऐसे बटरिंग नहीं करनी चाहिए, ऐसे साफ साफ स्पष्ट पूछ लेना चाहिए कि भाई अगर सच में दिल देना है तो हम रुकें, नहीं तो ऐसे ही खाली दिमाग का को फ्राई करना है, भेजा फ्राई करना है, दिमाग का दही करना है, तो प्लीज़ हम चलते हैं, है ना। ये वाला अगर उसी जनरेशन में चल गया होता तो आजकल के यूथ ना, इस जनरेशन के यूथ बैठ के रोते नहीं कि हाय मेरा दिल टूट गया, हाय मेरा ब्रेकअप हो गया, हाय उस लड़के ने मुझे छोड़ दिया, हाय उस लड़की ने मुझे छोड़ दिया, सनम बेवफा, ओ माय गॉड। सो एंजॉय कर लेते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है नीना की, और नीना को सुनना है दास्ताने ओम शांति ओम। सो एंजॉय करते हैं, स्टे ट्यून्ड।

अगली फरमाइश थी नीना की, बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। ओ माय गॉड, कितना हॉरर सा माहौल क्रिएट हो गया ना दोस्तों। सो बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन अगली फरमाइश की तरफ बढ़ने के पहले मेरे एक लिसनर का पूछना है कि आपके हिसाब से लड़के ज्यादा बेवफा होते हैं कि लड़कियां? भाई मैं इस टॉपिक पे ना निशब्द होना चाहती हूँ और मैं निशब्द रहूंगी इस टॉपिक पे, वही मेरे लिए एकदम फायदे में रहेगा और आप लोग के लिए भी एकदम फायदे में रहेगा, क्योंकि मैं सही बताऊं तो मुझे पता नहीं है कि ये आखिर इसकी शुरुआत की किसने, लड़कों ने कि लड़कियों ने। मेरे हिसाब से बेवफा सिर्फ एक चीज के, अगर आपको छोड़ के चला गया तो ही बेवफा नहीं है, आपके साथ रह के भी कई लोग बेवफा रहेंगे, आपके सामने वफा रहेगी लेकिन आपके पीठ पीछे वफा बिल्कुल भी नहीं रहेगी। सो मेरे हिसाब से ये जड़ तो पता नहीं किसने शुरू की है, लड़कों ने की है, लड़कियों ने की है, जिसने भी की है बहुत गलत की है, इसकी शुरुआत होनी नहीं चाहिए और शुरुआत को बढ़ावा भी तो हम दे रहे हैं ना। वेरी गुड, वेरी गुड। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में विशाल बेदर्दी की, उनको सुनना है गाना स्ट्रिंग्स। तो एंजॉय करते हैं दूर का ये गाना सिर्फ और सिर्फ विशाल बेदर्दी की फरमाइश पर, आई मीन दूर।

सो दोस्तों, ये फरमाइश थी विशाल बेदर्दी की। अगली फरमाइश हमारे पास में है न्यू तरंग टेलर से, मालवीय नगर गोंडा से, मजीद जी की। उनको सुनना है गाना हम किस गली जा रहे हैं। सो एंजॉय करते हैं ये गाना मजीद जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

फरमाइश थी न्यू तरंग टेलर्स से मजीद जी की मालवीय नगर गोंडा से। बढ़ते हमारी आज की अगली और आखिरी फरमाइश की तरफ, बढ़ेंगे हमारी आज की अगली और आखिरी फरमाइश की तरफ। लेकिन दोस्तों पता है क्या, मैं चाहती हूँ कि अपनी जुबान को थोड़ा बंद रखा करूं, लेकिन जहां बंद नहीं होनी चाहिए वहां मेरी जुबान बंद ही नहीं होती है। तो जाते जाते मेरे एक लिसनर का कहना है कि लड़कियां कभी रिश्ता निभाई नहीं सकती, लड़की हमेशा पैसों वालों के पीछे भागती है, पैसा खत्म तो उसका पीछा छोड़ देगी। ये कहना है हमारे एक लिसनर का। सो मैं उनको बस एक जवाब देना चाहूंगी, है ना, सबकी तरफ से। दौलत की चमक देखकर जो बदल जाए वो किरदार और होगा, दौलत की चमक देखकर जो बदल जाए वो किरदार और होगा, मगर हर कली को तुम बेवफा कहो ये हुनर बेकार होगा। दुनिया में बिकते होंगे कुछ रिश्ते कागज के टुकड़ों पर, दुनिया में बिकते होंगे कुछ रिश्ते कागज के टुकड़ों पर जो रूह से जुड़े हों उन्हें खरीदना दुश्वार होगा। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली और आखिरी फरमाइश। अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में है नागेश्वर धाकड़ की, और नागेश्वर धाकड़ को सुनना है गाना किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार। तो एंजॉय करते हैं ये गाना, इसी के साथ लेती हूँ अलविदा। सो दोस्तों अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, हमेशा गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइज हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है, और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता दोस्तों, क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। और मैं अपने कुछ दोस्तों से, इनफैक्ट सभी दोस्तों से, इनफैक्ट अपने आप से भी कहना चाहूंगी, सोच बदलो, दुनिया अपने आप बदलेगी। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े ही बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
5: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा, जहां लेडीज के लिए मिलती है लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन, और जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
6: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
5: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
7: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
8: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
9: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
10: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
11: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 94-50-944-999।
12: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
13: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
14: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
2: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
15: विजिट करें एल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें आप, आदाब आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। जी हाँ, और आज हमारी देखिए कितनी अच्छी कोशिश है कि विशाल बेदर्दी जी ने कहा है गुड इवनिंग मनु सर। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल क्या बात है। हमारे साथ नागेश्वर धाकर जी भी हैं भाई। गुड इवनिंग आरजे मनु सर। जी हाँ, शुभ संध्या आपको भी। और द ग्रेट सेन साहब, क्या बात है भाई, वास्तव में आप ग्रेट हैं। गुड इवनिंग डियर आरजे मनु सर। जी हाँ, आपको भी शुभ संध्या। द ग्रेट सेन साहब, दिल बहलाने के लिए ही गुफ्तगू कर लिया करो जनाब, मालूम तो मुझे भी है हम आपको अच्छे नहीं लगते। क्या बात है आपकी। इस बात पर मुझे एक बात याद आ गई कि मैंने सुना है कि तुम मुझे खराब समझते हो। मैंने सुना है कि तुम मुझे खराब समझते हो। किसी दिन अकेले में मिलना खराब का मतलब बताएंगे। तो कोई कहे कि अगर हम आपको खराब मानते हैं तो उससे कहिए, अरे कभी मिलिए अकेले में जनाब, महफिल हो, हम हो और आप हो, तो शायद समझ में आएगा। जी का चाहूँगा मैं तुझे सांस सवेरे, और अनिल शास्त्री जी मैं आपको ऐसे ही चाहूँगा। दीपांशी तिवारी जी हैं जी, गुड नाइट। अरे मतलब ये क्या कह दिया, अभी आए अभी बैठे अभी दामन संभाला है तुम्हारी, जाऊं जाऊं ने हमारा दम निकाला है। नहीं भाई, गुड नाइट कहने का हक सिर्फ और सिर्फ हमको है इस शो में, और ये हक हमने आपसे मांग के लिया है। अंबर गोयल जी हैं, शुभ संध्या जी मनु जी। जी हाँ अंबर जी, प्रणाम करते हैं आपको जी। बहुत ही भाई हमारे अच्छे व्यक्तित्व पोल मिश्रा जी हैं। तकलीफ ये नहीं कि किस्मत ने मुझे धोखा दिया, अफसोस तो ये है कि मेरा यकीन तुम पर था, किस्मत पर नहीं। क्या बात है। और इसको कुछ यूं भी कह सकते हैं कि ऐसा नहीं कि दिल में तेरी तस्वीर नहीं थी, हाथों में तेरे नाम की लकीर नहीं थी। और जो कुछ होता है साहब वो होता ही अच्छे के लिए है, बुरे होने के लिए कभी कुछ नहीं होता। अगर हम ऐसा मानते हैं तो शायद खुश रह सकते हैं। नीना जी हमारे साथ, नमस्कार मनु सर, आदाब नीना जी, आपको कैसी हैं आप? द ग्रेट सेन साहब, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, क्या बात है। और मनीष शर्मा जी हैं, गुड इवनिंग सर जी। मनीष शर्मा जी प्रणाम करते हैं आपको, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे जी। फिर माई भाई, फिर नेहा जी, क्या बात है भाई, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में कलम ने गीत सुना। नमस्कार मनु सर, आदाब, अल्लाह आपको हमेशा अपनी अमान में रखे भाई। और सर एक लाइन मस्त, जी हाँ, उस बेदर्दी ने पूछा भी नहीं हाल मेरे दिल का कभी, और हम थे कि हर दुआ में बस उसी का नाम लेते रहे। कोई बात नहीं साहब, आप अपने कर्तव्यों के मालिक हैं, दूसरों के कर्तव्यों के मालिक हम नहीं हैं। हम अपनी तरफ से बेहतर करेंगे, सामने वाला अपनी तरीके से सोचेगा। ओहो अभी आए अभी बैठे, क्या बात है। पवन मिश्रा जी हैं और सविता शास्त्री जी हैं भाई, क्या बात है। वो गजल हम भूल नहीं सकते कभी, ऐ मेरे दिले नादा तू गम से न घबराना, बहुत ही प्यारी गजल भाई। और हम ने जब सविता जी के मुंह से गजल सुनी थी तो बहुत सालों बाद सुनी थी ये गजल, और बहुत प्यारी लगी। और नीना जी कहती हैं आमीन जी, सुम्मा आमीन, और हम लोगों की जोड़ी ऐसी ही बनी रहे। क्योंकि ये भाई ये तो शाम गुजर गई होती है और रात का वक्त होता है, तो रात जख्मों को छुपाने के लिए आती है, रात जख्मों को छुपाने के लिए आती है, रात कुछ फूल खिलाने के लिए आती है, रात पिछड़ों को मिलाने के लिए आती है, रात होती नहीं मायूस ख्यालों के लिए, रात होती है फकत चाहने वालों के लिए। तो ये चाहने वालों की रात है, और इस चाहने वालों की रात में आपका खैर मकदम है, आपका इस्तकबाल है जी। और आज सोचता हूँ कि क्यों ना हम किसी ऐसे विषय पर बात करें जब शायर से बात न करके हम आज बात करते हैं याद पर। और मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं याद से जुड़ा होता है। तो आज हम किसी शायर या शायरा पर बात नहीं करेंगे, आज बात करेंगे यादों की। और अगर आपके पास भी अपनी यादों के लिए कुछ है तो ज़रूर उसको आप चैट बॉक्स में लिखें ताकि हम पढ़ सकें कि आपके पास यादों के लिए क्या है। चलिए फिलहाल आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी गज़ल यादों के ऊपर और फिर लौटते हैं संगीत में अंतराल के उस पार। आज गला कुछ कम साथ दे पा रहा है मेरा, तो उम्मीद करता हूँ कि आपका साथ भरपूर मिलेगा। फिलहाल सुनते रहिए रेडियो गणेश थ्लेट 9.6 एफएम, यह है गोंडा शहर की धड़कन। आप सुन रहे हैं रेडियो गणेश थ्लेट 9.6 एफएम, यह है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं मनु आप सभी के साथ ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। लेकिन फिलहाल ये प्यारी सी गजल याद के ऊपर आप सभी के लिए।
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।

0: भगवान, रेणु ने मुझसे और मैंने रेणु से वादा किया है कि जिएंगे तो साथ साथ, मरेंगे तो साथ साथ,
1: जिएंगे तो साथ साथ, मरेंगे तो साथ साथ।

जी हाँ, वो जब याद आए, बहुत याद आए। और याद सिर्फ महबूबा की नहीं होती दोस्तों, याद अपने बचपन की भी होती है, याद अपने पुराने दिनों की होती है। याद तब उन दिनों की होगी जब हो सकता है आपके पास पैसे कम रहे हों, लेकिन जिंदगी में सुकून बहुत रहा हो। आज हो सकता है आपके पास पैसे बहुत हों, लेकिन आप उस सुकून के लिए तरसते हों। याद कीजिए, कुछ वर्षों की बात है, मतलब अगर जिनकी उम्र इस समय 40 के आसपास है, वो अगर अपने 15-20 साल पहले की ओर झांकेंगे तो उनकी ज़िंदगी कैसी थी। जो मिडिल क्लास लोग, सुबह ही सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना, एक नल होता था, लाइन से लोग खड़े होते थे, गांव में कुआं होता था, वहां पर लोग पानी भरने के लिए खड़े होते थे, सुबह ही सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना, फिल्मी गीतों को धार के साथ गुनगुनाना, और हैंडपंप चल रहा है नगर पालिका वाला और आप गाते जा रहे हैं, पानी आता जा रहा है, उसी में पिताजी लोग बच्चों से कहते थे चलाओ हम नहा लें। क्या खुशी थी साहब उसमें, मतलब हम लोग नल चलाते थे और पिताजी नहाते थे, तो अब लगता है कितना पुण्य कमाया। आजकल की औलाद तो शायद वो टुल्लू पर आश्रित हो गई हैं, तो हैंडपंप से बहुत दूर हो चुकी होंगी, शायद वो नल चलाकर अपने पिताजी को शायद न नहला पाए, लेकिन खुशनसीब है वो लोग जिन्होंने ऐसा किया है। सुबह ही सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना, फिल्मी गीतों को धार के साथ गुनगुनाना, दफ्तर में बैठकर यही सोचते रह जाना, दफ्तर में बैठकर यही सोचते रह जाना कि शाम को उस घर में वापस न जाना पड़े जहां जहां माँ खांसती हुई मिलेगी मैं दवाई नहीं ला पाऊंगा, जहां माँ खांसती हुई मिलेगी मैं दवाई नहीं ला पाऊंगा, बच्चों के टूटे खिलौनों को कितनी बार जोड़ पाऊंगा, बीबी की फटी साड़ी में से झांकेंगे सपने, बीवी की फटी साड़ी में से झांकेंगे सपने, आखिर वही तो है अपने, अरे भले ही हर दिन बोझ है उधार है, अरे हर दिन भले ही बोझ है उधार है, लेकिन तू जैसी भी है जिंदगी, मुझे तुझसे प्यार है। उस जमाने में लोग सुसाइड की घटना बहुत कम होती थी, जितना लोगों के पास प्राप्त होता था उतना पर्याप्त होता था, और लोग कम में अपना काम चलाना जानते थे। मुझे याद है कि मेरी माताजी लिस्ट बनाकर देती थी और मेरे पिताजी वो सामान ला करके रख देते थे, इतना इतना आटा, इतना चावल, इतना ये हल्दी, उतना उससे ज्यादा ना उससे कम। आज के दिनों में आप मॉल में चले जाते हैं, बाजार आपके सामने रखा हुआ है, कभी महसूस कीजिएगा जिन चीजों की आवश्यकता नहीं होती है उसे भी आप खरीद लेते हैं, भले ही वो पड़ा रहे, बाजार सामने है। अब देखा कि बाजार भी में लोग कमा रहे हैं, तो बाजार आपकी मोबाइल में आ गया, वस्त्र आप देख रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, ऑनलाइन मंगा रहे हैं, वापस कर रहे हैं, है पर्याप्त है, लेकिन वो सुकून शायद नहीं है। जी हाँ, हमारे साथ भाई जुड़ चुके हैं द ग्रेट सेन साहब, उसके बाद लोग तो हमेशा साथ नहीं रहते, बस खूबसूरत यादें रह जाती हैं। जी हाँ सर जी, अच्छा हुआ आप याद पर बात किए, वरना याददाश्त तो खो गई थी सबकी, क्या बात है प्रवल मिश्रा जी, लेकिन हम आपको हमेशा याद किया करते हैं। और आज मिचेल मास ने मुझे, क्या बात है भाई, वो बहुत अच्छी बात है, नेहा जी आपको बहुत बहुत प्यार। जी हाँ भाई, ये देखिए उन्होंने कहा है, और कभी कभी किसी की इतनी याद आती है कि दिल करता है सब कुछ छोड़कर उसी के पास चले जाएं, पर मजबूरियाँ मुस्कुरा कर कह देती हैं
अभी सिर्फ यादों से ही काम चलाइए। क्या बात है भाई द ग्रेट शान साहब, क्या बात है, बहुत अच्छी पंक्तियाँ। दीपांशी लिखती हैं, कुछ बातों कुछ बताने के लिए किया था लेकिन आप तो अपने भाव में निकले। दुनिया भरी बेदर्द में जाएं, सब जैसे निकले, नहीं ऐसा नहीं है, सब अच्छे हैं, बुराई इस दुनिया में कोई है ही नहीं। जी हाँ, और हम भी अगर यथा दृष्टि तथा सृष्टि को अपनाएं तो जैसी हमारी नज़र होती है वैसा ही हमको सब दिखाई पड़ता है भाई। और कुछ लोग हीरे बेटे को छोड़कर कोयले को तलाश करते हैं और कोयले का ही 60वां समस्थानी हीरा भी होता है, क्या बात है। सर 80% गाना तो महबूब पर बना है, चलिए ठीक है हम आपको 20% वाला सुनवाएंगे जो दोस्ती पर बना हुआ, बिल्कुल सुनवाएंगे साहब। मेरे पास तो दोनों नहीं है, न पैसा न सुकून, क्या बात है, क्या बात है भाई। नहीं नहीं सब है, बस अगर हम ये मानते हैं कि हमारे पास, कुरान कहती है कि अल्लाह ने अगर आपको चटनी रोटी भी दी है तो दस्तरखान पर बैठिए तो उसका शुक्रिया अदा करते हुए बैठिए, आपको बरकत मिलेगी, जो मिला उसमें खुश, ये ज़िंदगी अच्छी होती है जहाँ तक मैं मानता हूँ। तो महबूबा पर तो गाने बने हैं लेकिन दोस्ती पर भी बने हैं, तो क्यों ना चलिए आपको सुनाते हैं दोस्ती पर एक गीत जो यादों के नाम है। और निसंदेह आप जब इस गीत को सुनेंगे तो अगर आप भी किसी के बहुत अच्छे दोस्त होंगे तो आपको रफ़ी की आवाज़ में ये गीत बेहद पसंद आने वाला है, लगभग लगभग इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ। फ़िलहाल आप सुनकर बताइए कि आपको कैसा लगा।

जी हाँ, याद याद याद बस याद रह जाती है, और यही याद तो है। एक हिंदी में हम लोग निबंध लिखते थे, विज्ञान अभिशाप या वरदान। मैंने विज्ञान एक अभिशाप है या वरदान है, तो दोनों पहलू लिखते थे कि यहाँ यहाँ पर अभिशाप है और यहाँ यहाँ पर वरदान है। अब कोई पूछता है कि याद क्या है, तो कभी कहते हैं कि बहुत अच्छा है, और कभी कभी लगता है कि ये यादें बहुत बुरी हैं। उनका दोनों का अलग अलग पहलू है। और अगर हम किसी की ज़िंदगी में आएँ तो ये ज़रूरी है कि अगर हम उनको याद आ रहे हैं तो वो भी हमें याद आएं, या हमारी ही अकेले की जिम्मेदारी नहीं उनको याद करते रहना, कहीं कहीं उनको भी याद करना चाहिए। जी, जो रंजिशें थी उन्हें बरकरार रहने दिया, जो रंजिशें थी उन्हें बरकरार रहने दिया, गले मिले भी तो दिल में गुबार रहने दिया। जो रंजिश थी वो बरकरार रही, गले मिले लेकिन मैलापन जो हृदय में उनके प्रति खट्टी भावनाएं थीं उनको नहीं मिटाया। जो रंजिशें थी उन्हें बरकरार रहने दिया, गले मिले भी तो दिल में गुबार रहने दिया, गली के मोड़ से आवाज दे के लौट आए, गली के मोड़ से आवाज दे के लौट आए, तमाम रात उसे बेकरार रहने दिया। न कोई ख्वाब दिखाया न गम दिया उसको, न कोई ख्वाब दिखाया न गम दिया उसको, बस उसकी आंखों में एक इंतजार रहने दिया, उसे भुला भी दिया याद भी रखा उसको, उसे भुला भी दिया याद भी रखा उसको, नशा उतार दिया और खुमार रहने दिया। जी हाँ, कभी कभी स्थिति ऐसी बन जाती है कि ठीक है हम तो याद करते रहेंगे लेकिन आप भी भूल नहीं पाएंगे। वो धड़कन फिल्म का डाला गया रहता है कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भुला दो ये मैं होने नहीं दूंगा। जी हाँ, हमारे साथ नीना जी हैं, दीपांशी जी हैं, प्रवल मिश्रा जी हैं। हम तो चाहेंगे हंसते हुए सभी चेहरों में आवाज़ में नहीं दूंगा। जी हाँ सर, बिल्कुल प्रवल जी, हंसी वह वरदान है जो विधाता ने केवल इंसान को दिया। इस दुनिया में 84 लाख प्रकार के जीव हैं लेकिन हंस केवल इंसान सकता है, रोज सब सकते हैं। आप गधे को हंसता हुआ नहीं देखेंगे, रोता हुआ देखेंगे। इस दुनिया का कोई भी प्राणी हंस नहीं सकता सिवाय इंसान के, सिर्फ एक है जो हंसता है। इसका मतलब वो ऊपर वाले की ये नेमत है कि उसने हमको हंसने का वरदान दिया है, इसका उपयोग करना चाहिए, बहुत अच्छी बात। जी मैं तो आवाज़ दूंगा सबको हंसने के लिए। जी हाँ बिल्कुल, मुस्तफा सऊदी जी ने लिखा है बहुत प्यारी, जी हाँ गज़ल लगी आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। कमल नैन भाई नहीं दिख रहे हैं और आपने आवाज़ दी, वो आ गए। इश्क और दोस्ती दोनों मेरे जहान हैं, इश्क मेरी रूह तो दोस्ती मेरा ईमान है, इश्क पर फिदा हूँ अपनी सारी ज़िंदगी, पर दोस्ती पर मेरा इश्क भी कुर्बान है। क्या बात है भाई, कमल नैन भी आ चुके हैं भाई, भाई नज़र आप सभी पर। जी हाँ बिल्कुल, कमल के समान नैन वाले भाई आप नज़र रखिए और बताइए कि मसरूफ़ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। दग्रेचन साहब फिर लिखते हैं, अच्छा प्यार केवल पुरुष ही करते हैं, तभी तो प्यार का भूत होता है, भूतनी नहीं। क्या बात है। और एक बात और बताऊँ आपको, इस दुनिया में जितने हार्ट अटैक होते हैं वो ज़्यादातर पुरुषों के होते हैं, महिलाओं को बहुत अपने कम सुना होगा हार्ट अटैक आता है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि महिलाओं के पास दिल नहीं होता, लेकिन हार्ट अटैक महिलाओं के अपेक्षा पुरुषों को अधिक आता है, ये साइंटिफिक तथ्य है। ऐसा क्यों है मैं नहीं जानता। जी हाँ, याद ही तो नहीं जाती। जी हाँ कमल लैन जी प्रणाम करते हैं आपको, और इतना दर्द लोग लेते हैं ज़िंदगी में, क्या बात है भाई, क्यों किस बात का दर्द, ये बात है भाई। कमल लैन जी हैं, दीपांशी जी हैं, आप लोगों की बात भी है। नीना जी भी हमारे साथ चैट बॉक्स में जुड़ी हुई हैं, मनीष शर्मा जी भी हैं, और भाई बहुत अच्छा लग रहा है
चलो हम ही अच्छे हैं, किसी की याद नहीं आते, कोई हमको भी झूठ कर याद कर लेता तो भाग लेता। नहीं नहीं साहब, आप बहुत याद आते हैं। आइए अब चलते चलते एक गीत आपको और सुनाते हैं, उस गीत के साथ लेते हैं आपसे अनुमति। जी हाँ, शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होठों पर से प्यारी सी मुस्कान आसमान बनने चाहा। तो शनिवार को आपसे पुनः मुलाकात होगी आपके ही कार्यक्रम बहादे गज़ल में। तब तक सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।

हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु, आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे, प्यार भरी कहानियों के साथ ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर्मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी बेशक इश्क। उस दिन सुबह चंदन ऑफिस आकर जब कैंटीन में चाय पीने गया तो कुछ अनएक्सपेक्टेड सा हुआ। एक लड़की पास से गुजरी, एकाएक लगा कहीं स्मिता तो नहीं। धड़कनें तेज हो गईं। वो उसे जाते देखता रहा। हेयर स्टाइल तो डिफरेंट है, शरीर भी कुछ भारी है। नहीं, स्मिता कैसे हो सकती है? चेहरा नहीं देख पाया। उसने खुद को समझाया, कहां वो कर्ली हेयर, मॉडर्न लुक, लहराती बलखाती चाल वाली दुबली पतली सी लड़की और कहां ये सधे कदमों से चली जा रही स्ट्रेट हेयर वाली भरी भरी टिपिकल सूट वाली लड़की। बस एक ही चीज कॉमन थी, उस परफ्यूम की स्मेल जिसको उसने 4 साल भरपूर अपने आसपास महसूस किया था। शायद इसीलिए वो पास से गुजरते हुए स्मिता का एहसास छोड़ गई। खैर जो भी हो, इसमें कोई शक नहीं कि धड़कनें जो बढ़ी थीं, वो अभी तक नॉर्मल नहीं हुई थीं। जाकर सीट पर बैठा तो काम में मन नहीं लगा। नजरों के आगे स्मिता के संग बिताए वो खूबसूरत 4 साल घूमने लगे। कॉलेज में वो दोनों साथ थे और प्यार में भी थे। उनकी सोच बिल्कुल अलग अलग पोल्स की तरह अलग अलग थी और फिर भी उनका रिलेशनशिप 4 साल तक चला और फिर वो अलग हो गए। उससे अलग होते हुए पहले पहल तो बुरा नहीं लगा, बल्कि एक तरह के रिलीफ का एहसास हुआ, जैसे कोई उलझाने वाला बंधन कटने पर होता है। मगर बाद में बहुत दुख हुआ, जैसे लगा शरीर का कोई अंग कट गया हो, आदत सी जो हो गई थी उसकी। चंदन सीट से उठ खड़ा हुआ और कैंपस में चहलकदमी करने लगा। पार्किंग, कैंटीन, गैलरी, दूसरे डिपार्टमेंट्स, नजरें दौड़ दौड़ कर उसी को खोज रही थीं। वो पीले सूट वाली एक बार दिख जाए तो तसल्ली कर लूं, तब जाके कहीं शांति पड़े। फाइनली अकाउंट्स डिपार्टमेंट में वो बैठी दिख ही गई। अरे शक सही निकला, वो स्मिता ही थी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है बेशक इश्क। अब तक आपने सुना, चंदन ने उस दिन ऑफिस में किसी को देखा जिसे वो देख तो नहीं पाया, बस उसके परफ्यूम की स्मेल ने उसे किसी बीती याद में खो दिया। वो महक जो पूरे 4 साल तक उसके साथ इश्क में रही थी, वो बेचैन होकर उसे पूरे ऑफिस में ढूंढने लगा और आखिरकार एक दूसरे डिपार्टमेंट में जब देखा तो उसका शक सही निकला। वो उसकी अस्मिता ही थी। अब आगे, चंदन एक टक उसे देखे जा रहा था। इतना कैसे बदल गई? मन किया दौड़कर उसके पास पहुंच जाए, हालचाल पूछे, ढेर सारी बातें करे। कभी पक जाता था उसकी बकबक से, मगर आज कान जैसे तरस रहे थे उसकी आवाज सुनने को। अगल बगल उसके कलीग्स बैठे हुए थे और उसने अगर उसका अचानक यूं सामने आना नॉर्मल रूप से नहीं लिया तो